हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। श्रोताओं, आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 23वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 14 जुलाई सन 2026। इस समय सवेरे के 5:58 हुए हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है FM 102 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू क्वॉक द्वीप पर में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG की पुनर्परीक्षा की OMR शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर अपनी OMR शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। यदि कोई उत्तर मेल नहीं खाता है तो

0: उम्मीदवार प्रश्न का चयन कर अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान कर चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। OMR चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब अगले कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई से।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार चिंतन। स्वामी विवेकानंद का कथन है कि दिन में एक बार खुद से बात जरूर करें, वरना आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से आप मिलने से चूक जाएंगे। यानी हमें समय निकालकर अपने मन की बात को सुनना चाहिए, अपने मन से बातें करना चाहिए। ये था आज का चिंतन। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का में ये भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिनभर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनेगा श्री रामचरित मानस गान भाग 249। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम सुनिएगा श्रृंखला सायंकालीन संधि प्रकाश राग। कलाकार हैं गायिका विदुषी आरती अंगलीकर। भाग दूसरा। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम 7:00 से 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी। 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर सुनिए आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार रोशन पर। सुबह 10:00 पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा। इसके अंतर्गत सुनेगा प्रोस्टेट और अन्य बीमारियां। इस विषय पर डॉक्टर उमेश ओझा से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग प्रस्तुत करता है सुबैर खान। ग्यारह बजे से रंग तरंग और 12:05 पर यादों की महफिल। 1:00 सुरीला सफर। 2:00 त्रिवेणी। 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3:00 सखी सहेली। इसके अंतर्गत सुनेगा डिजिटल होते रिश्ते मुहावरों की दुनिया। मुंह में राम बगल में छुरी। सखी विशेष के अंतर्गत उपासना टाकू फिनटेक कंपनी मोबीक्विक की सह संस्थापक और मुख्य वित्तीय अधिकारी से बातचीत और हल्की फुल्की बातें। सेहतमंद भोजन सुनिएगा। प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। शाम 4:00 पिटारा में सेल्यूलॉइड के सितारे। अभिनेता विपुल देश पांडे से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग सुनिएगा। प्रस्तुतकर्ता सुबैर खान। शाम 5:30 पर तारानी नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन। 6:45 शाम सुनेगा संगीत सरिता कार्यक्रम। आपको फिर से बता दें श्रृंखला सायंकालीन संधि प्रकाश राग। कलाकार गायिका विदुषी आरती अंगलीकर का भाग दूसरा। प्रस्तुति रूपाली रूपक की। 7:45

मिनट पर इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस हवा महल में रात 8 बजे सुनिए प्रहसन बाज आए ऐसे फैशन से। लेखन नाजनीन का, निर्देशन है जयदेव शर्मा कमल का। आठ बजकर 15 मिनट पर चित्रलोक नौ बजे कार्यक्रम आपके लिए 9:30 पर आज के फनकार रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार रोशन पर प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। 10 बजे छाएगी 10:30 पर ढलती जाए रात और रात 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 249।

पंचवटी पहुंचकर श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण ने पर्णकुटी छवाई और एक बार पुनः सुख शांति पूर्वक निवास करने लगे। लक्ष्मण जी ने अग्रज को अपना स्वामी जानकर उनसे ज्ञान, वैराग्य और उस माया का वृत्तांत पूछा जिसके वश में होकर प्रभु भक्तों पर दया करते हैं।

0: संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत आजकल आप सुन रहे हैं सायंकालीन संधि प्रकाश रागों की चर्चा। आज इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी में सुनिए राग पूर्वी। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं प्रसिद्ध गायिका आरती अंकलीकर।
1: संगीत सरिता के श्रोताओं को आरती अंकलीकर का नमस्कार। पिछली बार हमने देखा था पूर्या धनाश्री, बहुत ही खूबसूरत राग है। आज उन्हीं स्वरों में हम शुद्ध मध्यम को जोड़ देंगे तो बन जाएगा राग पूर्वी का सप्तक। देखिए कितनी खूबसूरती से बनाया है, स्वर वही है पूर्या धनाश्री के, उसमें हमने सिर्फ शुद्ध मध्यम को जोड़ देने से कितनी खूबसूरत कलाकृति बन रही है। इसमें ऋखभ और धैवत कोमल हैं, दोनों मध्यम हैं, तीव्र और शुद्ध। जैसा कि हम जानते हैं ये संधि प्रकाश राग है, इसमें अन्य सभी जो स्वर हैं शुद्ध हैं, वर्जित स्वर कोई भी नहीं। इसकी जाति संपूर्ण है, वादी स्वर गंधार और संवादी निखात। गायन का समय वही जो संधि प्रकाश रागों का होता है। राग पूर्या धनाश्री से इसको इस तरह से हम अलग रख सकते हैं कि पूर्या धनाश्री का जो सप्तक है वो नीरे गा जाता है और राग पूर्वी का जाता है नीसा रेगा।

राग पूर्वी का जो चलन है वो पूर्या धनाश्री से किस तरह अलग है ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। हालांकि इसमें शुद्ध मध्यम के होने के कारण इसकी एक अलग छवि बनती जरूर है, लेकिन इसका जो चलन जाता है

श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, किसी फिल्मी गीत की रचना एक राग को आधार बनाकर की जाती है, मगर उसमें अन्य रागों की छाया भी अक्सर दिखती है। आइए सुनें ये गीत जो हमने फिल्म कोतवाल साहब से चुना है। इस गीत में संगीतकार रविंद्र जैन ने राग पूर्वी को आधार बनाकर किस खूबसूरती से अन्य रागों का भी सम्मिश्रण किया है। श्रोताओं, आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आवाज है आशा भोसले की। लीजिए गीत सुनिए।

0: आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में राग पूर्वी पर आधारित संगीतकार रविंद्र जैन की ये सुमधुर रचना। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही थी सुप्रसिद्ध गायिका आरती अंकलीकर।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपा।

0: आपसे
1: अभी आप आकाशवाणी मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम सुन रहे थे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे केंद्र से प्रस्तुत है दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़।

सुप्रभात और नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम में, जिसका नाम है नमस्कार झालावाड़। दोस्तों, सूरज की पहली किरणें जब धरा को स्पर्श करने को आतुर होती हैं, लगभग उसी समय सकारात्मक ऊर्जा, उपयोगी सूचना और जीवन मूल्यों और सुविचार के साथ हम भी होते हैं आपके साथ। इसी क्रम को बरकरार रखते हुए आसमान पर छाए काले पीले और धुंधले धुंधले बादलों और दिन के उजास को आतुर सूरज की प्रभाती किरणों की कशमकश की अनूठी अनुभूति के साथ आज इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद साजिद। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार और हमेशा की तरह आज भी कार्यक्रम की शुरुआत सुविचार के साथ।

मित्रों की सुख संपत्ति से नहीं संतोष से होता है। जिस तरह सुबह की पहली किरण कोमल किरणों के से अंधेरों को चीरती है, वैसे ही संतोष की भावना जीवन के हर कोने को आलोकित कर देती है। साथियों, हम अक्सर सुख को बाहरी चमक दमक में ढूंढते रहते हैं, महलों में, संपत्ति के ढेरों में, नाम शोहरत की ऊंचाइयों में, लेकिन सच्चा सुख तो उस शांत सरोवर की तरह होता है दोस्तों, जिसकी सच्चाई में, गहराई में संतोष का कमल खिलता है। और जब मन संतुष्ट होता है तब छोटी छोटी चीजें भी महान आनंददायी बन जाती हैं। सुबह की ठंडी हवा, परिवार की मुस्कान, दोस्तों का साथ और प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य संपत्ति साथी है। आज है कल चली जाएगी, लेकिन संतोष एक बार अगर हृदय में बस जाए तो कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता। वो जीवन को मधुर संगीत बना देता है जिसमें हर स्वर का आभास हमें हो। यह हमें सिखाता है कि सुख पाने के लिए कुछ पाने की नहीं बल्कि जो है उसकी कला है। कल्पना कीजिए एक ऐसे जीवन की जहां मन की शांति सबसे बड़ी दौलत बन जाती है, जहां हर सांस में कृतज्ञता हो, हर पल में पूर्णता का एहसास हो। यही होती है सच्ची समृद्धि। बाहरी जगत की दौड़ में हम इतने खो जाते हैं दोस्तों कि भीतर की दिव्य ज्योति को हम भूल ही जाते हैं। लेकिन जब हम संतोष का मार्ग चुनते हैं तो हर चुनौती सुंदर सा सबक बन जाती है, हर कमी पूरी होने का अवसर हमें महसूस होने लगती है। याद रखिए दोस्तों कि संतोष कायरते नहीं बल्कि परिपक्वता का प्रतीक है। हमें सिखाता है कि प्रयास तो निरंतर जारी रखो, लेकिन फल की चिंता छोड़ दो, फूल खिलने दो, अपनी गति से नदी को बहने दो अपनी राह पर। तो क्यों ना आज से एक छोटी सी शुरुआत करें। हर शाम अपनी डायरी में 3 ऐसी बातें लिखें जिनके लिए हम ऊपर वाले का ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हल्का होने लगेगा, जीवन रंगीन होने लगेगा। संतोष की इस खुशबू को अपने आसपास फैलाइए दोस्तों, मुस्कान बांटिए, आभार जताइए, खुशियों को संजोइए। याद रखिए दोस्तों, जब हम संतोष की इस भावना को अपनाते हैं ना, तो हर चुनौती अवसर बन जाती है, हर कठिनाई सीख बन जाती है और हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती है।

दोस्तों, इस समय आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल और आप सुन रहे हैं दैनिक कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़। मित्रों, मौसम बरसात का है, प्रकृति के नव श्रृंगार का मौसम, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और पिकनिक और सैर सपाटों का मौसम। बेशक बारिश का मौसम बहुत सुहावना होता है, लेकिन इस मौसम में अपनी सेहत का खास ख्याल भी हमें रखना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम बात करेंगे कि मानसून में यानी बरसात में हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है और हम खुद से इस मौसम में स्वस्थ रख सकते हैं। साथियों, जब पहली बारिश होती है तो चारों तरफ एक अजब सा माहौल बन जाता है। हर कोई चाहता है कि बारिश में भीगे, बारिश का आनंद ले, बूंदों की छमछम में अपने तन बदन को तर बतर कर दे। बेशक गर्मी से राहत मिलती है, पेट भरे हो जाते हैं, किसानों को अच्छी फसल की उम्मीद होती है, बच्चे पानी में खेलते हैं, हम भी खेलते हैं, लेकिन इस सुंदर मौसम में कई बीमारियां भी हमें जकड़ सकती हैं। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। आइए पहले जान लें दोस्तों कि मानसून में स्वास्थ्य पर आखिर ऐसा क्या प्रभाव पड़ता है। तो दरअसल दोस्तों, बारिश के मौसम में नमी बहुत बढ़ जाती है, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को बढ़ने का मौका देती है, जिससे कि कई प्रकार की बीमारियां पनपती हैं, जैसे कि दस्त और उल्टी, गंदा पानी या दूषित खाने से डायरिया, टाइफाइड और हेपेटाइटिस हो जाता है। तो इस मौसम में हर कहीं पानी भी इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि मच्छर पैदा होते हैं, पनपते हैं, तो इनसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और वातावरण अनुसार नमी जब बढ़ती है दोस्तों, तो कई प्रकार के छोटे छोटे कीटाणु पैदा होते हैं, जिनसे कि त्वचा की समस्या, दांत खाज, खुजली, फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। खास गीले से ये रोग तेजी से बढ़ते हैं, साथ ही नमी और फफूंद, एलर्जी और सांस की तकलीफ का बड़ा कारण बन जाती है। सर्दी, खांसी और अस्थमा और निमोनिया की शिकायतें भी इस मौसम में बढ़ जाती है। आंखों संक्रमण भी हो सकते हैं, आंख से गंदे पानी, कान में दर्द की शिकायत भी इनसे हो सकती है। खान पान से और कमजोर व्यक्तियों को इस मौसम में कमजोरी और बुखार, बार बार बीमार पड़ना और भूख न लगना जैसी दिक्कतें भी पेश आती हैं। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि बरसात के इस मौसम में हम अपनी सेहत का ख्याल किस प्रकार से रखें। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए हमें कुछ विशेष नहीं करना होता है, बस थोड़ी सी सतर्कता और जागरूकता के साथ कुछ छोटे अपनाकर हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सावधानियां बरतना की बहुत जरूरत हो जाती है कि बरसात के मौसम में हमें खास ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा उबला हुआ या अच्छा फिल्टर किया हुआ पानी पिए, बाहर का पानी बिल्कुल ना पिए, खाने से पहले, बाथरूम जाने के बाद और बाहर से घर आने पर साबुन से अच्छे से हाथ धोएं, मच्छर में मच्छरदानी लगाएं, कूलर, गमले, टायर या किसी भी जगह पर पानी जमा ना होने दें और छोटों को और खुद समय लंबी बाजू के कपड़े पहने, ताजी और गर्म सब्जियां खाएं और दही, ठंडा पानी, जंक फूड और बाहर का खाना कम खाएं। अदरक वाली चाय, हल्दी वाला दूध, तुलसी का पानी इम्यूनिटी बढ़ाता है, तो इनका सेवन भी जरूर करें। और हाँ, बरसात की वजह से अगर आप कहीं भीग जाते हैं दोस्तों, तो भीगे कपड़े तुरंत बदल दें, सूती और ढीले कपड़े पहने और जूते और मोजे भी अच्छी तरह से सुखाएं, और घर की साफ सफाई का तो विशेष ध्यान रखना ही है। साथ ही घर की सफाई को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, नालियां टाइम टाइम से साफ करते रहें ताकि पानी ना रुके, और आलस को त्याग कर शरीर को चुस्त और दुरुस्त तंदुरुस्त बनाने के लिए सुबह ताजी हवा में टहलना भी जरूरी है और हल्का व्यायाम और योग भी जरूर करें। और अगर फिर हो जाए तो कुछ घरेलू उपाय भी अपनाते हुए चलें, बुखार या सर्दी हो तो तुलसी, अदरक और शहद वाली चाय, दादी नानी वाला नुस्खा याद रखिए। त्वचा पर पानी या डॉक्टर की सलाह से दवा लगाएं, पेट खराब हो तो चावल या मांड और छाछ लें, हर समय थकान महसूस हो तो आराम करें और डॉक्टर से चेकअप जरूर कराएं। और हाँ, अगर बुखार 3 दिन से ज्यादा रहे, तेज उल्टी दस्त हो, शरीर पर लाल चकत्ते निकले, सांस लेने में तकलीफ हो या बहुत कमजोरी सी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि डेंगू जैसे रोगों में समय पर इलाज बहुत जरूरी होता है दोस्तों। और बच्चों और बुजुर्गों का तो हमें खास ध्यान रखना ही है। बच्चे ज्यादा खेलते हैं, बुजुर्गों को नमी से जोड़ों का दर्द हो सकता है, तो उन्हें गर्म रखें, पौष्टिक भोजन दें। हालांकि दोस्तों, बरसात का यह मौसम प्रकृति का तोहफा है, मगर हम थोड़ी सी सावधानियां बरतें तो इस मौसम का आनंद ले सकते हैं। स्वच्छता, सही खान पान और सतर्कता से हम अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखकर परिवार को स्वस्थ रखते हैं। अपने पड़ोसियों, परिवार, दोस्तों को भी इन बातों के बारे में बताएं।

नमस्कार। झालावाड कार्यक्रम के संग में आपका एक बार फिर, जैसा कि मित्रों की समय समय पर इस कार्यक्रम में हम आपको केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण लाभकारी योजनाओं की जानकारियों से भी अवगत कराते रहते हैं, इसी क्रम में आज हम आपको भारत विस्तार योजना के बारे में जानकारी देंगे। आपको बता दें दोस्तों कि देश में कृषि क्षेत्र को तकनीकी रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार भारत विस्तार नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लेकर आई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विगत दिनों जयपुर से इसकी शुरुआत की थी। इस पहल का मकसद किसानों, वैज्ञानिक संस्थानों और सरकारी सेवाओं को एक ही नेटवर्क से जोड़ना है, ताकि खेती

से जुड़ी जानकारियां और सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकें। यह प्लेटफॉर्म किसानों को स्थानीय भाषा में वेब, मोबाइल सहायता केंद्र और वॉइस आधारित सिस्टम के जरिए सेवाओं तक पहुंच देगा। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि भारत विस्तार एक कनेक्टेड डिजिटल नेटवर्क है जिसमें तीन प्रमुख हिस्सों में तैयार किया गया है। पहला हिस्सा डिमांड साइट है, जहां किसान और कृषि विस्तार कार्यकर्ता विभिन्न माध्यमों से सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा इसका नेटवर्क लेयर है, जिसमें केंद्रीय और राज्य के नोडल शामिल होंगे। तीसरा हिस्सा सप्लाई साइड है, जिसमें कृषि अनुसंधान संस्थान, मौसम विभाग, बाजार मूल्य पोर्टल और राज्य कृषि प्लेटफॉर्म को जोड़ा जाएगा। इस प्लेटफॉर्म से किसान फसल सलाह, मौसम पूर्वानुमान, बाजार भाव जैसी जानकारियां समय समय पर सकेंगे और विभिन्न योजनाओं और सेवाओं तक भी पहुंच आसान हो जाएगी, जिससे उन्हें अलग अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही कृषि विशेषज्ञों और संस्थानों की जानकारी सीधे किसानों तक पहुंचेगी, जिससे खेती से जुड़े जोखिम कम करने और उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी। तो भारत विस्तार किसानों के लिए एक डिजिटल साथी है, जो खेती को स्मार्ट, आसान और लाभकारी बनाने की दिशा में बहुत अच्छा कदम है। यह योजना भारत को की ओर कृषि क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगी, जिससे भविष्य में कृषि सेवाओं की पहुंच और प्रभाव दोनों बढ़ने की उम्मीद है, जिससे कि देश का हर गांव उन्नत तकनीक से सुसज्जित हो जाएगा।

0: जलवायु साक्षरता निष्कर्ष, यूनेस्को का एक संदेश। जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है और इसे नजरअंदाज करना इंसानों और धरती दोनों को खतरे में डालता है। तापमान तेजी से बढ़ रहा है, मौसम और पर्यावरण तेजी से बिगड़ रहे हैं। अब कुछ करने का समय आ गया है। असली बदलाव सिर्फ नीतियां बनाने वाले कमरों में नहीं, बल्कि समुदायों, स्कूलों और घरों में भी शुरू होता है। यूनेस्को ने 10 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ मिलकर सबके लिए कई भाषाओं में जलवायु साक्षरता से जुड़ी सामग्री तैयार की है। जलवायु विज्ञान को समझना हमें कार्यवाही करने की शक्ति देता है। आप भी जलवायु की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। आइए ज्ञान, एकता और आशा के साथ बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करें। यह यूनेस्को का संदेश था। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: श्रोताओं, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल और आप सुन रहे हैं दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़। आइए अब हम आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले स्थानीय कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की जानकारी दे दें।

श्रोताओं, प्रातः 7:30 पर और शाम 6:05 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात्रि 8:15 पर।

स्कूली सरकार की कल्याणकारी योजनाएं विषय पर सुनिएगा वरिष्ठ शिक्षक श्री महेंद्र सिंह नरुका से ललित वैष्णव की बातचीत प्रगति पथ कार्यक्रम में प्रातः 8:15 पर और 8:30 पर यानी प्रातः 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कणकोर। चर्चा का विषय होगा प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। डिजिटल युग में बच्चों की परवरिश विषय पर लोकेंद्र कुमार अध्यापक गोवर्धनपुरा झालावाड़ से मीना नगर की बातचीत होगी और जानकारी की बातों के अंतर्गत आज इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की जानकारी महिला बहनें सुनेगी। कार्यक्रम सुनिएगा प्रातः 8:30 पर। दोपहर 12 बजे आप सुन सकते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: युवा जगत के लिए युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा शाम 5 बजे। चर्चा का विषय होगा राजस्थान का लोक संगीत और युवा पीढ़ी। छोटे शहरों के युवाओं की बड़ी उपलब्धियां भी इस कार्यक्रम में युवाओं को बताई जाएंगी और ज्ञान विज्ञान के अंतर्गत आज सुनिएगा डिजिटल अरेस्ट क्या है, एक महत्वपूर्ण जानकारी होगी। और चिराग जल रहे हैं युवा डायरी के अंतर्गत आज राहुल से राजकुमार खाती की बातचीत हमारे युवा साथी सुनेंगे और सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी होगी। शाम 7 बजे किसान साथियों के लिए किसानवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में सजीव फोन इन कार्यक्रम की बारी होगी जिसमें कृषि में पक्षियों का महत्व विषय पर डॉक्टर आंचल शर्मा सहायक आचार्य वन्य जीव प्रबंधन विभाग राजकीय उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय झालावाड़ से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। फोन नंबर वही 2325 93 और झालावाड़ के स्टडी कोड 07432। और कृषक चौपाल कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:30 पर। इसमें पशुओं के लिए हरा चारा और संतुलित आहार की महत्ता पर बातचीत होगी और जैविक उर्वरक कृषि पर प्रभाव विषय पर डॉक्टर सेवाराम रूंडला मृदा वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ से पीनू शर्मा की महत्वपूर्ण जानकारी भी आप सुनेंगे भेंटवार्ता के माध्यम से। और रात 9 बजे सुनिएगा गीत संगीत की विभिन्न विधाओं का कार्यक्रम सबरस। ये थे हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले स्थानीय और कुछ खास कार्यक्रम।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: और अब बहुत ही कम समय शेष बचाए कार्यक्रम में, तो चलते चलते आपको झालावाड़ और आसपास के क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों से अवगत कराते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे दोस्तों,

हूं कि एसपी अमित कुमार की अध्यक्षता में विगत कल मिनी सचिवालय झालावाड़ में विभिन्न निजी और राजकीय स्कूलों के संचालकों, प्रतिनिधियों और संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में बाल वाहनियों की सुरक्षा व्यवस्थाओं और नियमों की पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक बैठक हुई। इस बैठक अमित कुमार ने बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की बात कही और स्पष्ट चेतावनी दी कि आगामी दिनों में बाल वाहिनी नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों और संस्थाओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और अगली सूचना और जानकारी यह दोस्तों कि राजस्थान के सरकारी और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 25 जुलाई कर दी गई है। और इस जानकारी के साथ ही दोस्तों हमारा आज का ये दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम अब यहीं तक। अपने दोस्त मोहम्मद साजिद को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल। नमस्कार, नमस्कार झालावाड़।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़। यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत और सोनू निगम की आवाजों में इस गीत से। गीत रचना है नितिन राय कवर की, संगीत संदीप चौटा का और फिल्म का नाम मस्त।

लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। आवाज है अरिजीत सिंह, चिन्मय श्रीप्रदा और साथियों की। फिल्म का नाम टू स्टेट्स और गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार हैं शंकर एहसान और लोए।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

श्रोताओ, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल और आप सुन रहे हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं राहत फतेह अली खान की आवाज में सुल्तान फिल्म का गीत, शब्द रचना इरशाद कामिल की, जिसे संगीत से सजोया है विशाल शेखर ने। लीजिए सुनिए।

0: अरे काट दिया।
1: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
1: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: श्रोताओं, फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से। यहां लेंगे एक ब्रेक, अगले गीत के साथ जल्द हाजिर होंगे।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: सर, 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: ब्रेक के बाद मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं नेहा कक्कर और साथियों की आवाजों में KFG फिल्म का गीत। शब्द रचना रश्मि विराग की है, जिसे संगीत बत किया है तनिष्क बागची ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी झालावाल का चंद्रभागा चैनल है एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को प्रभात का आज का अंक हम दिल्ली से प्रसारित करेंगे।
1: कृपया प्रतीक्षा करें।
2: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिल

0: करके बचाएं।
1: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं। अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें। जलाशयों से गाद निकालें। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
3: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 300,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
4: Across 10 of the 11 active missions.
2: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकार इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कुओक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। एफबी महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी पता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार

0: सी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एकतरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हुर्मुज डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
1: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौश्रुतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शैल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध, नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
2: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान

0: एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमेरिका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिलाधिकारियों और पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन दर्शन के साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद फरत। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, विदेश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अमेरिका ईरान जंग तेज, रूस भी कूदा, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रंप ने ईरान की फिर की नाकेबंदी, हॉर्मूज से गुजरने पर 20% टोल मांगा। जगन्नाथ यात्रा में पहली बार देवी सुभद्रा का रथ खींचेंगी महिलाएं, हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला, 31 साल पुरानी परंपरा हुई खत्म, दैनिक जागरण ने ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। अमरीका अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, रात में भी सूरज चमकेगा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, जब चाहे जहां चाहे मिलेगी रोशनी, इस साल लॉन्च हो सकते हैं 2 सैटेलाइट। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर श्रमिकों की सुरक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। पत्र लिखता है, आज भी कई जगहों पर नाले या सेप्टिक टैंक की सफाई बिना सुरक्षा के श्रमिकों से कराई जाती है। हर साल बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिकों की मौत हो जाती है, मगर पीड़ित परिवारों को न्याय कम ही मिल पाता है। आखिर कब तक इन मौतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। कश्मीर के पहाड़ों पर 2 दशकों में लगभग 1 डिग्री बढ़ा तापमान, हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम पर क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर को दिखाती है ये स्टडी, वीर अर्जुन की सुर्खी है।
1: धन्यवाद सर फिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से अपना अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में 9 दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है, FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम।

हम प्रगति पथ को सुनवाने जा रहे हैं। स्कूली विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं विषय पर वरिष्ठ शिक्षक श्री महेंद्र सिंह नरुका से ललित वैष्णव की बातचीत लीजिए, सुनिए।

0: मुस्कान में कल का भारत बसता है, उनके सपनों में विकास का नया सवेरा दिखता है। जब शिक्षा का दीप हर घर में जलता है, तभी समृद्धि का सूरज पूरे समाज को रोशन करता है। हर बच्चे का सपना, हर घर की आशा, शिक्षा के साथ बढ़ता राजस्थान। नमस्कार, आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल पर प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम प्रगति पथ में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ललित वैष्णव। प्रिय श्रोताओं, कहा जाता है यदि एक वर्ष की योजना बनानी हो तो बीज बोइए, 10 वर्ष की योजना बनानी हो तो वृक्ष लगाइए, लेकिन यदि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवारना हो तो बच्चों को शिक्षित कीजिए। वास्तव में शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं है, शिक्षा व्यक्ति को सोचने की शक्ति देती है, सही निर्णय लेना सिखाती है और उसे आत्मनिर्भर बनने का मार्ग दिखाती है। यही कारण है कि शिक्षा को किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी माना जाता है। राजस्थान सरकार भी इस सोच को आगे बढ़ाते हुए विद्यार्थियों के लिए अनेक कल्याणकारी पहलें संचालित कर रही हैं। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक या सामाजिक परिस्थितियां किसी भी बच्चे की पढ़ाई में बाधा न बने। विद्यालय तक पहुंच, आवश्यक शैक्षणिक सामग्री, पोषण, छात्रवृत्ति, समावेशी शिक्षा और सीखने के बेहतर अवसर, ये सभी प्रयास इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज के प्रगति पथ में हम इन्हीं विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि ये प्रयास विद्यार्थियों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं और अभिभावक इनका लाभ कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं वरिष्ठ शिक्षक श्री महेंद्र सिंह जी, जो वर्षों से विद्यालय शिक्षा से जुड़े हैं और विद्यार्थियों के बीच निरंतर कार्य कर रहे हैं। महेंद्र सिंह जी, आकाशवाणी झालावाड़ में आपका हार्दिक स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी।
0: जी,
1: आकाशवाणी झालावाड़ के सभी सम्मानित श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का अवसर मिला
0: जी,
1: इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।
0: महेंद्र सिंह जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई?
1: बहुत ही अच्छा प्रश्न है ललित जी।
0: जी,
1: हम जानते हैं कि प्रत्येक बच्चा प्रतिभाशाली होता है, लेकिन हर परिवार की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां समान नहीं होती
0: जी।
1: कई बार संसाधनों की कमी के कारण बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं या नियमित विद्यालय नहीं जा पाते
0: जी।
1: इसी अंतर को कम करने के लिए सरकार ऐसी योजनाएं संचालित करती है जिनका उद्देश्य है हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचना
0: जी,
1: विद्यालय में उसकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना
0: जी,
1: और उसे आगे बढ़ने के समान अवसर देना
0: जी।
1: इन्हीं पहलुओं का मूल भाव यही है
0: जी,
1: कि शिक्षा किसी वर्ग विशेष का अधिकार नहीं
0: जी,
1: बल्कि प्रत्येक बच्चे का अधिकार है
0: जी।
1: इस अधिकार को पूर्ण करने के लिए सरकार इन सभी योजनाओं को बारी बारी से विद्यालय परिवार के साथ संचालित करती है
0: जी। जी, महेंद्र जी, यदि कोई अभिभावक आपसे पूछे कि सरकार की इन पहलों का सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो आप क्या कहेंगे?
1: तो मैं इतना ही कहूंगा ललित जी,
0: जी,
1: कि इसका सबसे बड़ा लाभ है विश्वास
0: जी।
1: जब परिवार को यह भरोसा हो जाता है
0: जी
1: कि बच्चे की पढ़ाई के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध है, राज्य सरकार हमारे बच्चे की प्रगति के साथ है
0: जी,
1: तो वो बच्चों को विद्यालय भेजने में अधिक प्रेरणा लेते हैं
0: जी।
1: निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें
0: जी,
1: गणवेश, पोषण संबंधी सहायता, छात्रवृत्ति
0: जी,
1: अन्य सुविधाएं
0: जी,
1: अभिभावकों का आर्थिक बोझ कम कर देती।

0: जी
1: और बच्चों की पढ़ाई जारी रखने का उत्साह देती है।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से प्रसारित कार्यक्रम प्रगति पथ। प्रिय श्रोताओं, किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है, बच्चों के सपनों को पंख मिल जाए तो मंजिलें स्वयं रास्ता पूछती हैं। ज्ञान का दीप जब मन में जलता है तब सफलता भी कदम चूमती है। निस्संदेह प्रत्येक बच्चे के भीतर असीम संभावनाएं होती हैं। आवश्यकता केवल उचित मार्गदर्शन, अनुकूल वातावरण और अवसरों की होती है। राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी प्रयास भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। महेंद्र जी, अक्सर ये कहा जाता है कि शिक्षा तभी प्रभावी होती है जब बच्चे नियमित रूप से विद्यालय आए। इस दिशा में राज्य सरकार की विभिन्न पहलें किस प्रकार सहायक सिद्ध हो रही हैं?
1: बिल्कुल सही कहा आपने ललित जी।
0: जी,
1: बहुत ही गहन प्रश्न है।
0: जी,
1: विद्यालय में नियमित उपस्थिति किसी भी विद्यार्थी की सफलता की पहली शर्त है।
0: जी,
1: इसी उद्देश्य से राज्य सरकार
0: जी
1: ऐसी व्यवस्थाओं पर निरंतर कार्य करती है
0: जी
1: जो बच्चों को विद्यालय से जोड़े रखे।
0: जी,
1: उदाहरण के लिए
0: जी
1: पात्र विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें देना, गणवेश, पोषण संबंधी सहायता तथा अन्य शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाना, ये उसी का एक भाग है।
0: जी,
1: इनसे अभिभावकों का आर्थिक बोझ कम होता है और विद्यालय आने पर विद्यार्थियों में उत्साह बढ़ जाता है।
0: जी,
1: जब बच्चा नियमित रूप से कक्षा में बैठता है तभी उसकी सीखने की गति और आत्मविश्वास ये दोनों बढ़ते हैं।
0: जी, महेंद्र जी, आपने निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का उल्लेख किया है, क्या वास्तव में इसका इतना बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है?
1: निश्चित रूप से ललित जी,
0: जी।
1: नई पुस्तकें केवल कागज का पुलिंदा नहीं होती बल्कि वे बच्चे के सपनों की पहली सीढ़ी होती है।
0: जी,
1: जब शैक्षिक सत्र के आरंभ में ही विद्यार्थियों को समय पर पाठ्य पुस्तकें मिल जाती है तो उनकी पढ़ाई बिना किसी विलंब के शुरू हो जाती है।
0: जी,
1: सभी बच्चों को समान अध्ययन सामग्री मिलने से सीखने का स्तर बेहतर हो जाता है। नई पाठ्य पुस्तकें
0: जी
1: विद्यार्थियों की खुशी दोगुना कर देती है।
0: जी जी,
1: ग्रामीण क्षेत्रों में तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है।
0: जी,
1: क्योंकि प्रत्येक परिवार के लिए पुस्तकों की व्यवस्था करना आसान नहीं होता।
0: जी महेंद्र जी, प्रिय श्रोताओं, जिस घर में किताबें मुस्कुराती हैं उस घर का भविष्य भी मुस्कुराता है। आइए आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं महेंद्र सिंह जी से कि विद्यालय गणवेश को भी एक महत्वपूर्ण सुविधा माना जाता है, इसके पीछे क्या सोच है?
1: जी जी, विद्यालय गणवेश एक वेशभूषा नहीं होती
0: जी
1: बल्कि समानता और आत्मसम्मान का प्रतीक होती है।
0: जी,
1: छोटे बड़े अमीर गरीब का भाव खत्म कर देती है।
0: जी,
1: जब विद्यार्थी एक समान वेश में विद्यालय जाते हैं
0: जी
1: तो आर्थिक असमानता का भाव काफी हद तक कम हो जाता है।
0: जी,
1: बच्चे स्वयं को एक परिवार का हिस्सा महसूस करते हैं।
0: जी,
1: इसके साथ ही अभिभावकों को भी आर्थिक राहत मिलती है
0: जी
1: जिससे वे बच्चे की शिक्षा पर अधिक ध्यान दे पाते हैं।
0: बहुत ही अच्छी जानकारी महेंद्र जी। महेंद्र जी, विद्यालयों में संचालित पीएम पोषण यानी कि मध्याह्न भोजन जैसी पहल का विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ता है?
1: ललित जी, इस पहल का उद्देश्य केवल भोजन उपलब्ध कराना नहीं है
0: जी
1: बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों को मजबूत बनाना होता है।
0: जी महेंद्र जी,
1: स्वस्थ बच्चा ही मन लगाकर पढ़ सकता है। विद्यालय में पौष्टिक भोजन मिलने से बच्चों की नियमित उपस्थिति बढ़ती है
0: जी।
1: उनमें ऊर्जा बनी रहती है और सीखने की क्षमता में भी सकारात्मक सुधार देखने को मिलता है
0: जी।
1: यह पहल विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है
0: जी
1: उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है जहां आर्थिक परिस्थितियां सीमित होती है। इससे विद्यालय और परिवार के बीच विश्वास का अटूट बंधन मजबूत हो जाता है।
0: श्रोताओं, आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि शिक्षा केवल कक्षा में पढ़ाए जाने वाले पाठों तक सीमित नहीं है। एक पुस्तक, एक गणवेश, पौष्टिक भोजन और प्रेरित शिक्षक, ये सभी मिलकर बच्चे के भविष्य की मजबूत नींव रखते हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, बच्चों को केवल पढ़ाइए मत, उन्हें सपने देखने का साहस भी दीजिए, क्योंकि सपने ही भविष्य की पहली पाठशाला होते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी झालावाड़ की चंद्रभागा चैनल से प्रसारित कार्यक्रम प्रगति पथ। प्रिय श्रोताओं, शिक्षा का अर्थ केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देना भी है। जब शासन की योजनाएं शिक्षक का मार्गदर्शन

0: परिवार का सहयोग एक साथ मिलते हैं तब हर बच्चा अपने सपनों को नई उड़ान दे सकता है। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। महेंद्र जी, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं कितनी महत्वपूर्ण है?
1: बहुत ही सामान्य प्रश्न है ललित जी।
0: जी,
1: हर विद्यार्थी में प्रतिभा होती है
0: जी,
1: लेकिन कई बार आर्थिक कठिनाइयां उसकी शिक्षा की राह में बाधा बन जाती
0: है।
1: ऐसे में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का आत्मविश्वास देती है
0: जी।
1: इनका उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं है
0: जी,
1: बल्कि यह संदेश भी देता है कि प्रतिभा को संसाधनों के अभाव में रुकना नहीं चाहिए
0: जी।
1: मैं विद्यार्थियों और अभिभावकों से यही कहूंगा कि पात्रता के अनुसार उपलब्ध छात्रवृत्तियों की जानकारी समय समय पर अपने विद्यालय से अवश्य प्राप्त कर लें
0: जी। महेंद्र जी, आज बालिका शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है, इस दिशा में आप क्या परिवर्तन महसूस करते हैं?
1: बहुत ही सुखद परिवर्तन है ललित
0: जी।
1: आज समाज में ये समझ विकसित हुई है कि शिक्षित बेटी केवल अपने जीवन को नहीं बल्कि पूरे परिवार और आने वाले पीढ़ी के भविष्य को संवारती है
0: जी।
1: राज्य सरकार के प्रयासों
0: जी,
1: शिक्षकों की मेहनत
0: जी,
1: और अभिभावकों की बढ़ती जागरूकता से
0: जी,
1: विद्यालयों में बालिकाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही
0: जी।
1: अब हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए
0: जी,
1: कि कोई भी बेटी केवल किसी सामाजिक या आर्थिक कारण से शिक्षा से वंचित न रह जाए
0: जी। श्रोताओं, जब एक बेटी पढ़ती है तो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा परिवार शिक्षित होता है। इसी भावना के साथ आगे बढ़ते हैं। महेंद्र सिंह जी, आज डिजिटल शिक्षा का महत्व लगातार बढ़ रहा है, विद्यार्थियों को इससे क्या लाभ मिल रहे हैं?
1: देखिए ललित जी, ये आज की आवश्यकता है। डिजिटल तकनीक में सीखने के नए अवसर खोलती है
0: जी।
1: स्मार्ट कक्षाएं
0: जी,
1: डिजिटल सामग्री
0: जी,
1: शैक्षणिक वीडियो
0: जी,
1: और तकनीक आधारित शिक्षण विद्यार्थियों की जिज्ञासा को आगे बढ़ाते हैं
0: जी।
1: कठिन विषय भी सरल और रोचक बन जाते हैं। लेकिन मैं विद्यार्थियों से ये भी कहना चाहूंगा कि तकनीक का उपयोग केवल सीखने और ज्ञान बढ़ाने के लिए करें
0: जी।
1: मोबाइल और इंटरनेट तभी उपयोगी हैं
0: जी,
1: जब उनका सही उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाए।
0: महेंद्र सिंह जी, पहले भाग के समापन से पहले विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए आपका क्या विशेष संदेश होगा?
1: ललित जी, मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा
0: जी
1: कि अपने विद्यालय को केवल पढ़ाई का स्थान न समझें
0: जी,
1: बल्कि अपने सपनों की पहली सीढ़ी माने
0: जी।
1: नियमित अध्ययन करें
0: जी,
1: शिक्षकों का सम्मान करें
0: जी,
1: अनुशासन बनाए रखें और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें
0: जी।
1: अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि बच्चों के साथ समय बिताएं
0: जी,
1: उनकी पढ़ाई में रुचि लीजिए
0: जी,
1: और विद्यालय से निरंतर जुड़े रहें
0: जी।
1: आपका विश्वास और प्रोत्साहन ही बच्चे की सबसे बड़ी शक्ति है
0: जी। श्रोताओं, आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि शिक्षा का उजाला तभी घर घर तक पहुंच सकता है जब शासन की जन कल्याणकारी पहल, शिक्षक का समर्पण, अभिभावकों का सहयोग और विद्यार्थियों का परिश्रम, ये चारों एक साथ आगे बढ़े। याद रखिए, सपनों को सच करने के लिए केवल अवसर नहीं, साहस और सतत प्रयास भी आवश्यक है। और शिक्षा वह शक्ति है जो साधारण जीवन को असाधारण बना देती है। इसी प्रेरक विचार के साथ आज के प्रथम भाग को यहीं विराम देते हैं। कार्यक्रम के अगले भाग में हम चर्चा करेंगे कि व्यक्तित्व विकास, पुस्तकालय, खेल, कैरियर, मार्गदर्शन, समाज, परिवार की भूमिका किस प्रकार विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य का निर्माण करती है। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। प्रिय श्रोताओं, आज की चर्चा से ये बात स्पष्ट होती है कि शिक्षा केवल विद्यालय की जिम्मेदारी नहीं, ये सरकार, शिक्षक, अभिभावक और समाज सभी की साझा जिम्मेदारी है। राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी पहलें तभी अपने उद्देश्य को पूरी तरह प्राप्त कर सकती हैं जब उनकी जानकारी सही व्यक्ति तक पहुंचे और पात्र विद्यार्थी उनका लाभ उठा सके। आज विदा लेने से पहले कुछ पंक्तियां। हर बच्चे के हाथ में जब पुस्तक होगी, हर चेहरे पर नई उम्मीद होगी, ज्ञान का दीप जब घर घर चलेगा, तभी विकसित राजस्थान का सपना फलेगा। योजनाएं अवसर देती हैं, शिक्षक दिशा देते हैं, माता पिता विश्वास देते हैं और विद्यार्थी अपने परिश्रम से भविष्य गढ़ते हैं। आइए

0: सब मिलकर यह संकल्प लें कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, कोई भी प्रतिभा अवसर के अभाव में न रुके और हर विद्यालय से ज्ञान, संस्कार और आत्मविश्वास की नई रोशनी निकले। इसी प्रेरक संदेश के साथ आज के प्रगति पथ कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमारे अतिथि श्री महेंद्र सिंह जी नरोका का हार्दिक धन्यवाद। मैं ललित वैष्णव आपसे अनुमति चाहता हूं, फिर मिलेंगे अगले मंगलवार को कार्यक्रम प्रगति पथ में नई योजनाओं के साथ, और तब तक के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल FM 103.2 MHz पर।
1: स्कूली विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, इस विषय पर अभी आप वरिष्ठ शिक्षक श्री महेंद्र सिंह नरोका से ललित वैष्णव की बातचीत सुन रहे थे। का चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। अब प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम गणगौर।

0: के जो बढ़ती जनसंख्या छे, शहरीकरण छे और अनियंत्रित उपभोग का कारण यह प्राकृतिक संसाधन पर लगातार दबाव बढ़ रहा छे। जैसा वना की कटाई छे, प्रदूषण छे, ऊर्जा की बढ़ती खपत आपन देख ही रहा छा, तो ये सब पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौतियां बन रही छे। तो सख्याओं आपन कतई समय रहता हुआ यहाँ पर ध्यान जरूर देनी चाहिए जी। और बात करें अपन कृषि क्षेत्र की, तो कृषि में भी जो अपन सिंचाई को प्रयोग करा जा, तो उनमें भी अपन बदलाव कर पानी की बचत कर सका जा। जैसा कृषि क्षेत्र में अपन सूक्ष्म सिंचाई तकनीक च, जैसा ड्रिप च, स्प्रिंगलर सिंचाई च, जैविक खेती च, मृदा संरक्षण च, तो यह सब का उपाय अपना कर प्राकृतिक संसाधना को संरक्षण करो जा सके। और सक्यों सरकार भी देखो जल संरक्षण, वन संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी कतनी ही योजनाओं का माध्यम से इस दिशा में भी कार्य कर रही है। तो आपन सभी भी सरकार के साथ, आपन सभी की जिम्मेदारी के साथ भागीदारी निभावा और जो प्रकृति का उपयोग करा चाह अपन ये प्राकृतिक संसाधना को, तो यहाँ को उपयोग भी अपन सोच समझ कर करेंगा और अनावश्यक बर्बादी न करा, क्योंकि ऐसी बात अगर अपन सोचेंगा करेंगा तो जो अपनी आबा वाली पीढ़ी च उनके लेख भी एक स्वच्छ, हरित और सुरक्षित पर्यावरण पर्यावरण को निर्माण अपन करेंगा। तो सक्याओं अपन कतई अपना अमूल्य उपहार जो प्रकृति ने अपनी दिया च वही सहेज कर रखा, ध्यान रखा, वहाँ को अनावश्यक उपयोग न करा और विवेकपूर्ण तरीका से वहाँ को उपयोग करा। और सक्याओं अब अपनी चर्चाएं ला थोड़ो सो विराम और सुना कुछ जरूरी संदेश।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: सक्याओं अबार आपन देख रहे हैं कि वर्षा ऋतु चाल रही है, यानी कि वर्षा ऋतु प्रकृति का सौंदर्य और हरियाली को संदेश लेकर आओ छ। वहीं बात कर आपन किसाना की, तो देखो किसाना के लेकर भी यो मौसम नई उम्मीदा को प्रतीक हो छ, क्योंकि इमा खेती बाड़ी ही जीवन मिल छ और एक साथ ही ग्रामीण जीवन में भी देखो कहीं तरह की चुनौतियां भी ई मौसम में सामना हो छ। तो सक्याओं अपन चर्चा कर रहे हैं वर्षा ऋतु में ग्रामीण जीवन की चुनौतियां, तो कई कई चुनौतियां ई मौसम में ग्रामीण क्षेत्र में आओ छ और कसा वहाँ को ध्यान रखनी चाहिए। तो सख्याओं ये जो ग्रामीण क्षेत्र में चुनौतियां आओ छ वर्षा ऋतु में, तो इको जो प्रभाव रह छ वो दैनिक जीवन पर पड़े छ, एक साथ ही स्वास्थ्य पर, शिक्षा और आजीविका पर भी पड़े छ। तो सबसे बड़ी चुनौती रह छ सख्याओं ई मौसम में परिवहन की हो छ, क्योंकि कई ग्रामीण क्षेत्र में जैसे कच्ची सड़क रह जे, तो बारिश के दौरान वह में कीचड़ और जल भी भर जाओ जे, तो आवागमन कर लेकर वह कठिन हो जाओ जे, काफ़ी परेशानी मगर ग्रामीण बहन भाई का तय हो जे। तो और एक साथ ही जैसा अपना स्कूल जावा वाला बच्चा रह जे, तो वह स्कूल जाओ तो उमा भी वहीं काफ़ी दिक्कत हो जे। एक साथ ही जो उपज मंडी तक मान लो किसान अपनो धान पहुँचाओ छ, मरीज छ वहीं अस्पताल ले जावा में भी काफ़ी परेशानी हो जा। तो या सब परेशानियाँ को सामना अपना ग्रामीण क्षेत्र में करनी पड़े छ। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वर्षा ऋतु देखो चुनौतीपूर्ण रह छ, क्योंकि जल भराव और गंदगी के कारण मच्छरों को प्रकोप बढ़ जाओ छ, जिसु कई बीमारियां को खतरो रह जाए। तो सख्याओं दूषित पानी पीबासू आपने देखा जा बहुत सी बार दस्त, टाइफाइड, कतनी ही जल जनित रोग भी पैदा हो जाओ जे। तो इलिए आपन कतई ध्यान रखनो छ, मान लो छोटा मोटा गड्ढा रह तो आपन स्वयं भी उकी मरम्मत कर सका जा सामूहिक जिम्मेदारी से, ताकि वर्षा ऋतु का फल ही थोड़ो सो रख रखाओ या थोड़ी सी स्वच्छता या सब छोटी छोटी चीजों को अपन ध्यान रखा, तो बहुत सी ये जो चुनौतियां मान लो छोटी सी तो उसे का

भी बच सकज। और बात करा स्वच्छ पेयजल की तो ई मौसम में देखो साफ सफाई और व्यक्तिगत स्वच्छता को भी विशेष ध्यान रखनो आवश्यक रह जा। और सक्या खेती का क्षेत्र में भी किसाना का सामना देखो कितनी समस्या को वहीं सामनो करनी पड़े छे। और पशु की बात करा तो जो पशुपालन करवा वाला परिवार छे तो वही यो मौसम वाक लेकर आसान न रह क्योंकि पशु वहीं रखबा में वहीं काफी दिक्कत हो छे। तो बहुत सी बार आपने देखा छा किसान में भी नमी हो छे गंदगी बढ़वा के कारण कई तरह की बीमारियां पशुओं में हो जाओ छे। तो पशुपालक जो भाई रह वहाँ का नियमित सफाई सूखो चारो और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करानी चाहिए। और गांव में देखो सफाई व नालियां की नियमित सफाई वर्षा जल की उचित निकासी स्वच्छता अभियान सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सख्याओं वर्षा ऋतु में ग्रामीण जीवन की ये चुनौतियाँ रह तो यहाँ को सभी ने ध्यान रखनो च और या चुनौतियों को सामनो करनो च और वर्षा ऋतु कतई अच्छे से बिताणो च ध्यान रखनो च अपना स्वास्थ्य को अपना आसपास का वातावरण को अपनो पर्यावरण को। और सख्याओं अब सुना एक प्यारो सो लोकगीत।

0: सख्याओं आभार सुनियो आपना एक प्यारो सो लोक गीत उम्मीद करा जा के आप सब जरूर पसंद आए होगो। और सख्याओं आभार आपन देख ही रहा जा के जो डिजिटल युग च यानी कि डिजिटल तकनीक में बहुत सी चीज़ा आसान होगी। वहीं बात करा अपन बच्चा की परवरिश की तो डिजिटल युग में बच्चा की परवरिश कसा हो रही च इ विषय पर बातचीत करी च माना आज श्रीमान लोकेंद्र जी सु। तो आओ सुना या बातचीत। आज हमारे कार्यक्रम में हैं श्रीमान लोकेंद्र कुमार जी, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक हैं जो वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोवर्धनपुरा में कार्यरत हैं। सर आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार जी। नमस्कार, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: सर जैसा कि हम जानते हैं कि आप सामाजिक विज्ञान के अध्यापक हैं और एक अध्यापक का दायित्व होता है वो बहुत ही बड़ा है क्योंकि एक राष्ट्र का निर्माता हम मान सकते हैं। क्योंकि जो बच्चों में आजकल संस्कार दिए जाते हैं वैसे बच्चे परिवार से सीखते हैं लेकिन परिवार के बाद प्रमुख दायित्व होता है वह एक अध्यापक का होता है। तो सर आप बहुत ही अच्छे कार्य आप कर रहे हैं और जैसा कि आज हमारे कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज के युग में क्योंकि हम सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और आज का जो आधुनिक युग है मशीनी युग है। हम जब एक दिन की शुरुआत करते हैं तो वो लगभग सवेरे से ही हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो आज हमारे कार्यक्रम का विषय है डिजिटल युग में बच्चों की परवरिश। तो हम आपसे जानना चाहते हैं सबसे पहले कि ये डिजिटल युग होता क्या है।
1: हम आज के समय में देख रहे हैं कि बच्चे जो विद्यालय में समय पर आते हैं आने के बाद में जो सिलेबस है उसको टीचर से समझते हैं लेकिन इसके साथ साथ में उनके शैक्षणिक स्तर में उन्नति के लिए डिजिटल युग का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि बहुत सारी जानकारियां उन्हें इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध रहती है और इंटरनेट के माध्यम से वो अपने ज्ञान के स्तर को बहुत बढ़ा लेते हैं। तो साथ ही हम देखते हैं कि माता पिता बच्चों की सहायता करने के लिए उन्हें इंटरनेट से जुड़ने के लिए मोबाइल या लैपटॉप उपलब्ध करवाते हैं। तो डिजिटल युग में समझने के लिए किसी भी एक टॉपिक को वो कितनी ही बार रिपीट करके अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। डिजिटल युग के माध्यम से आज घर बैठे जैसे हमारी बेटियां पहले बाहर जाने में डरती थी कि बाहर विदेश कैसे भेजें वैसे 21वीं सदी का ये भारत है इसमें बेटियां विदेशों तक पढ़ाई कर रही है। सच कहें तो आज की बेटियां बेटों से कम नहीं है। फिर भी ये जो हमारी भारत की संस्कृति है उच्च कोटि के ज्ञान को अर्जित करने के लिए इस डिजिटल युग में इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे ही जो हमें बाहर जाकर ज्ञान प्राप्त होता था वो ज्ञान हम घर पर ही अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए इंटरनेट में विभिन्न वेबसाइट गवर्नमेंट की तरफ से भी उपलब्ध करवाई गई है जी। और निजी वेबसाइट भी उपलब्ध है जिनके ऊपर विभिन्न प्रकार का ज्ञान घर बैठे ही प्राप्त किया जा सकता है।
0: जी सर ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि ज्ञान अर्जित करने का ये बहुत ही अच्छा माध्यम है। और आजकल जैसे बेटियों को अगर हम बाहर नहीं भेजते अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों को बाहर भेजने में हिचकिचाते हैं उनके पेरेंट्स, तो इसमें इंटरनेट के माध्यम से वह काफ़ी चीज़ें जैसे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकती है कोई भी ज्ञान वह अर्जित कर सकती है और आजकल तो नौकरी तक भी वह ऑनलाइन यानी कि घर बैठे ही नौकरी भी कर रही है लड़कियां। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत ही इस काम तो हमारा आसान किया है लेकिन हम बात करें जैसे छोटे बच्चों की तो उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां सामने आती है कि वह या तो ज़्यादा मतलब मोबाइल पे गेम खेलते हैं या

0: बहुत सी गलत चीज़ों के संपर्क में बच्चे आ जाते हैं, तो उनसे एक माता पिता का जो दायित्व है वह अपने बच्चों को किस तरह सुरक्षित रखें।
1: जी, आपने वर्तमान समय में जो ये परिस्थिति बन रही है उसके ऊपर बिल्कुल सटीक प्रश्न किया है। जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा के उच्च स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन देखने में आया है कि इस डिजिटल युग के सकारात्मक परिणाम के साथ साथ में नकारात्मक परिणाम भी हमें दिखाई दे रहे हैं। जो बालक होते हैं वो बाल्यकाल से ही मोबाइल, टेलीविज़न, लैपटॉप, इन पे कुछ वीडियो गेम्स खेलने लग जाते हैं। इसके कारण उनकी जो आँखों की ज्योति है वो बहुत ही प्रभावित हो जाती है, और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 17 साल की एज तक जाते जाते उनको आँखों का चश्मा लग जाता है
0: जी।
1: तो माता पिता का दायित्व है कि जो बच्चे हमारे शिक्षा के लिए डिजिटल साधन को काम में ले रहे हैं तो हमें चाहिए कि उसका जो स्क्रीन टाइम है, आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर हैं मोबाइल के अंदर भी और लैपटॉप के अंदर भी, कि हमें देख सकते हैं कि बच्चे ने स्क्रीन का कितने समय तक उपयोग किया है
0: जी।
1: पेरेंटल लॉक करके हम उसमें जाके देखते हैं तो हमें पता पड़ जाता है कि आज बच्चे ने कितने समय मोबाइल का यूज किया है। तो माता पिता की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो देखें और मॉनिटरिंग करें कि इस डिजिटल युग को जो बच्चों को शिक्षा प्राप्त करके नई नई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमने साधन उपलब्ध कराएं, कहीं वो सकारात्मक ज्ञान की जगह नकारात्मक की ओर तो नहीं चला गया। ये माता पिता का महत्वपूर्ण दायित्व है।
0: जी सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि हमें बच्चों की समय सीमा भी तय करनी चाहिए कि वह कितने समय मोबाइल का उपयोग कर रहा है और किस चीज़ के लिए कर रहा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमें जैसे मोबाइल का देखने का समय है वो तो हम निश्चित कर सकते हैं, इसके अलावा बच्चे को किस तरह रचनात्मक गतिविधियों की तरफ जैसे खेल कूद इनमें हम उनको किस तरह से मोड़ें इस डिजिटल युग में।
1: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने श्रोताओं को इस ओर आकर्षित किया कि हम हमारे बच्चों का ध्यान डिजिटल युग में किस प्रकार रख सकते हैं। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हमारे बालक स्वस्थ नहीं रहेंगे और वो कितना ही ज्ञान अर्जित कर लें, यदि उनका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो वो अपने मूल उद्देश्य से दूर हो जाएंगे। इसलिए डिजिटल युग में जो आपने प्रश्न किया कि बच्चे किस प्रकार से माता पिता का क्या योगदान होना चाहिए, तो बच्चों को खेलने के लिए भी हमें कुछ स्वतंत्रता देनी चाहिए। ऐसे गेम खेलें कि जो मोबाइल के गेम ना हो, लैपटॉप के गेम ना हो। आजकल क्या हो रहा है, जो आउटडोर गेम है उनको बच्चे छोड़ रहे हैं और वो मोबाइल और लैपटॉप में गेम खेल रहे हैं। इस कारण से बच्चे का क्या है कि शैक्षणिक गतिविधियों से भी ध्यान हट जाता है, और इस मोबाइल के अंदर जाकर वो ऐसे ऐसे गेम खेलते हैं कि बच्चे ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है कि हमें ये सोचने को मजबूर कर दिया जाता है कि ऐसी ऐसी घटनाएं जो माता पिता सहन भी नहीं कर सकते, ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम बालक के साथ में अच्छे से संवाद करें, उसकी मनोकामना को जानने का प्रयास करें, और कुछ समय हम बालक के साथ खुद भी खेलें। और साथ में हम, होता क्या है कि हम बच्चे से तो बोल देते हैं कि आप मोबाइल में गेम ना खेलें, मोबाइल का उपयोग कम करें, लेकिन देखने में आता है कि हम स्वयं ही मोबाइल चलाते रहते हैं। क्योंकि यदि हम मोबाइल ज़्यादा यूज में करेंगे तो हमारे बच्चे भी मोबाइल यूज में करेंगे। तो प्रत्येक माता पिता अभिभावक को ये चाहिए कि वह स्वयं भी स्क्रीन का उपयोग कम करें, ताकि बच्चे अपने आप स्क्रीन का उपयोग कम करेंगे। बच्चों के साथ हमें खेलना भी चाहिए, उन्हें जब बारिश का मौसम है कहीं ऐसे पर्यटक स्थल पर घूमने भी ले जाना चाहिए, ताकि वो प्रकृति के साथ में उसका जुड़ाव हो सके
0: जी।
1: और जब बालक प्रकृति के साथ जुड़ेगा तो स्वयं ही वो डिजिटल युग में रहते हुए भी नेचर के प्रति प्रेम करेगा और अपना स्वास्थ्य भी मजबूत रखेगा।
0: सर, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि बच्चों को हम शारीरिक गतिविधियों की तरफ मोड़ें और आपसी संवाद परिवार में बच्चों के साथ करें। बच्चों के, यानी कि कहने का मतलब है कि समय ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ हम बिताएं। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने

0: कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। फिर भी चलते चलते आप जो हमारी बहनें सुन रही है, एक माताएं सुन रही है, कि वैसे तो कहते हैं ना कि माता ही बच्चे की प्रथम गुरु होती है और परवरिश का जो ज़्यादा दायित्व होता है माँ का ही होता है, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं जो मेरे श्रोता हैं, विशेषकर माता जो माता और बहनें हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि बच्चों के साथ में बच्चे बनकर आप रहें। उससे क्या होगा कि बच्चे की जो भावना होगी और बच्चा किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है वो हमें पता होगा, तो समय रहते, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, जो टीन एज होती है, इसमें बच्चे कभी कभी गलत कदम बढ़ा लेते हैं। तो जब हम बच्चों के साथ में मिलजुल कर रहेंगे, उनको डांटेंगे नहीं, उनके मन की बात को जानने का प्रयास करेंगे, तो बच्चे अपने मन की बात हमें बताएंगे, तो समय रहते भावी समस्या का समाधान हम परिवार में ही कर लेंगे। तो मैं सभी बहनों से ये मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि अपने बच्चों के साथ में स्वयं भी खेलें और बच्चों की जो स्क्रीन टाइम है, मोबाइल है, लैपटॉप है, इस पर निगरानी भी रखें कि हमारे बच्चे इस डिजिटल युग का लाभ पढ़ने में ले रहे हैं या फिर अन्य अवांछित गतिविधियों में ले रहे हैं, ताकि समय रहते हम उन्हें सही मार्गदर्शन कर सकें।
0: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी जानकारी और आपका कीमती समय आपने हमें दिया, और आपने बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी से हमें अवगत कराया, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सख्याओं, अबार आपने सुनी श्रीमान लोकेंद्र जी से बातचीत डिजिटल युग में बच्चों की परवरिश। और सख्याओं, जानकारी की बात की ओर चाला कार्यक्रम का अंत में, तो आज जानकारी की बात में लेकर आया चाहे आपके लेकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इको उद्देश्य से सख्याओं, आर्थिक रूप से जो कमजोर और जरूरतमंद परिवार रच वहीं कठिन परिस्थितियां में सहायता करवो, और इम गरीब परिवार ही खाद्य सुरक्षा आर्थिक सहायता भी मिले छ, और इम जो पात्र लाभार्थी रह छ वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलवा वाली नियमित राशन का अतिरिक्त भी वह निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध वहीं करायो गयो छ, और इम कतना ही परिवार ही राहत मिली छ, इम जरूरतमंद व्यक्ति भोजन से वंचित न रह, और ई योजना में लाभ पाबा के लेकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का अंतर्गत पात्र हो वो भी आवश्यक छ, और जो राशन वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली छ इका माध्यम से करो गयो छ। तो सख्याओं, आज का लेखा अतनो ही, अब आपकी सखी मीना ही दो अनुमति। राम राम।

0: ग्रामीण महिलाएं भी सुन रही थी कार्यक्रम गणगौर। यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है, FM 103.2 MHz पर। 9 बजने को है, श्रोताओं हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रदेश में होने वाले अपराधों के लिए अब संबंधित पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार होंगे। राज्य सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 144 करोड़ 43 लाख रुपए की वार्षिक कार्य योजना और बजट को मंजूरी दी। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल अमृत महोत्सव आयोजित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन शिरकत करेंगे और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में ऐतिहासिक जीत, मुख्यमंत्री ने जीत को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक बताया।

0: समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में होने वाले अपराधों के लिए अब संबंधित पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कल मुख्यमंत्री आवास पर कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में अलवर, श्रीगंगानगर और भरतपुर की हाल की घटनाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे वहां संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। श्री शर्मा ने अपराध और नशा तस्करी के खिलाफ अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने साइबर ठगी रोकने के लिए साइबर पेट्रोलिंग बढ़ाने और अपराधियों के आर्थिक स्रोतों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा है कि राज्य सरकार प्रसूताओं की मृत्यु से संबंधित हर मामले को गंभीरता से ले रही है। वे कल जयपुर स्थित स्वास्थ्य भवन में कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा में हुई प्रसूताओं की मृत्यु के मामलों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में स्त्री रोग विशेषज्ञों ने बताया कि अधिकांश मामलों में एनीमिया, उच्च रक्तचाप, प्रसव के बाद रक्तस्राव और कुपोषण जैसे कारण सामने आए हैं। श्री खींवसर ने विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर प्रसव पूर्व जांच, रेफरल व्यवस्था और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि विभाग हर एक मामले की गहनता से जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
1: कब आई, किस हालत में आई, क्या बीपी था, क्या कोमोर्बिड कंडीशन थे, क्योंकि आप देखिए जो अनफॉर्चुनेट पार्ट इसका, देखिए जो जहां हमारा नेशनल एवरेज है, राजस्थान जो है नेशनल एवरेज जो एमएमआर, हम विद इन द नॉर्म्स। इशू यही हुआ कि ये क्लस्टर्स में जो हुआ सडनली, उसका हम आपको पूरा जवाब देंगे। हम एक एक केस को स्टडी करके उसका पूरा सिनॉप्सिस निकाल के आपको एक एक चीज का जवाब आपको हम डिटेल्स में बता।
0: स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आज जयपुर में राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने बताया कि यह वेबिनार प्रदेश के सभी पीएम श्री विद्यालयों के प्रधानों के लिए होगा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, नवाचारों और सह शैक्षणिक गतिविधियों पर मंथन किया जाएगा। राज्य सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण और प्रबंधन से जुड़े मामलों के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 144 करोड़ 43 लाख रुपए की वार्षिक कार्य योजना और बजट को मंजूरी दी है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई राजस्थान संरक्षित क्षेत्र संरक्षण समिति की सामान्य सभा की बैठक में ये स्वीकृति दी गई। बैठक में मुख्य सचिव ने बताया कि इस राशि का उपयोग वन्य जीवों के आवास सुधार, घास भूमि और जल स्रोतों के विकास, संरक्षण, अवसंरचना, अनुसंधान, निगरानी तथा मानव वन्य जीव संघर्ष कम करने के कामों पर किया जाएगा। बैठक में वन्य जीवों के लिए वर्ष भर पेयजल उपलब्ध कराने और स्वैच्छिक ग्राम पुनर्वास के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधानों को भी मंजूरी दी गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल विधानसभा परिसर में अमृत महोत्सव का पहला कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि समारोह में राजस्थान से निर्वाचित लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को भी आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे, जबकि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा के 75 वर्षों में पारित महत्वपूर्ण कानूनों पर चर्चा होगी। पूर्व विधानसभा अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और वरिष्ठ विधायकों का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण विधानसभा के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। भारत मंडपम में लगाई जा रही देश की इस सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी का शुभारंभ केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे। चार दिन की इस प्रदर्शनी में वस्त्र, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार

0: संचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। ये निर्माताओं, निर्यातकों, वैश्विक खरीदारों, निवेशकों, नीति निर्माताओं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों, कारीगरों, स्टार्टअप्स और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को एक मंच पर लाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत एआई आधारित प्रशासनिक सुधारों के जरिए सुशासन के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। विशिलोंग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भविष्य के प्रशासन में एआई, साइबर सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और नागरिक केंद्रित सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले एक दशक में लगभग 2000 अप्रासंगिक नियम समाप्त कर प्रशासन को अधिक सरल और पारदर्शी बनाया है। राजस्थान विश्वविद्यालय में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की ओर से राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का विषय वित्तीय स्थिरता और शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रहा। पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश के प्रधान महालेखाकार रामावतार शर्मा ने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका केवल सरकारी खातों के ऑडिट तक सीमित नहीं है, बल्कि सुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करना भी उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस सम्मेलन के माध्यम से विद्यार्थियों को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई।
1: इसमें एक जो विषय है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वो सीएजी जो कार्य करते हैं बहुत सारे कार्यों में से एक टॉपिक है। तो ये भी एक स्टूडेंट्स के लिए जानने का होगा कि सीएजी केवल यही नहीं करते कि अकाउंट्स को सर्टिफाई करते हैं और ये देखते हैं कि खर्चा कैसे किया जा रहा है, लेकिन ये भी देखते हैं कि क्या सरकार किस प्रकार से सुशासन के उद्देश्यों को अचीव करने के लिए क्या किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है और आगे क्या किया जाना चाहिए। वो सारी चीजें भी जो सीएजी बताते हैं उसको इस कोलोकियम के माध्यम से स्टूडेंट्स और शोधार्थियों के पास पहुंचाने का एक प्रयास है।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। कल लॉर्ड्स में खेले गए मैच में भारत ने इंग्लैंड को 270 रनों से करारी शिकस्त देकर एकमात्र टेस्ट श्रृंखला अपने नाम कर ली। 457 रनों के विशाल लक्ष्य के जवाब में अंतिम दिन इंग्लैंड 186 रनों पर ऑल आउट हो गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने कहा कि इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने आने वाली पीढ़ियों के लिए नया अध्याय लिखा है। इस बीच भारत और इंग्लैंड की पुरुष टीमों के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रदेश में होने वाले अपराधों के लिए अब संबंधित पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार होंगे। राज्य सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 144 करोड़ 43 लाख रुपए की वार्षिक कार्य योजना और बजट को मंजूरी दी। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल अमृत महोत्सव आयोजित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शिरकत करेंगे और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में ऐतिहासिक जीत, मुख्यमंत्री ने जीत को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक बताया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। अब अगले कार्यक्रम सेवा मुंबई से।

तनु वेट्स मनु फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे राजशेखर और संगीतकार कृष्णा। चित्रलोक कार्यक्रम में एक और ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे। सुनते हैं बाकी गीत।

ब्रेक के बाद आपको सुनवा रहे हैं सन ऑफ सरदार 2 फिल्म का ये गाना। नेहा कक्कर और साथियों की आवाजें हैं।

रब ने बना दी जोड़ी। इस फिल्म का गीत सुनिधि चौहान, लव जंजुआ की आवाजों में आप सुन रहे थे। बोल जयदीप साहनी ने लिखे थे, तर्ज सलीम सुलेमान ने बनाई थी। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर।

सोल्जर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें जसविंदर नरूला और सोनू निगम की थी, समीर के बोल थे, अनु मलिक का संगीत था। और इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत सविता सिंह को। नमस्कार।

0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।

संगीत का रोशन की धुनें वाकई बेमिसाल हैं। मेलोडी उनके संगीत की विशेषता है। भारतीय संगीत की समृद्ध विरासत से प्रेरित उनकी धुनें बार बार हमें अपने माधुर्य से लुभाती हैं।

संगीत का रोशन नाम है भारतीय सिने संगीत के आकाश के एक रोशन सितारे का, जिनकी कशिश भरी धुनें हमें ठिठकने पर मजबूर कर देती हैं। रोशन साहब की शैली अपने समकालीन सभी संगीतकारों से जुदा थी। उनकी धुनों में भारतीय शास्त्रीय संगीत का सौंदर्य नजर आता है। संगीत में वाद्यों की भीड़ नहीं, बावजूद इसके धुनों में गजब का आकर्षण है, मिठास है।

संगीत का रोशन का पूरा नाम था रोशन लाल नागरथ। उनका जन्म 14 जुलाई सन 1917 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला में हुआ था। अब यह स्थान पाकिस्तान का हिस्सा है। छोटी उम्र में ही रोशन संगीत सीखने लगे थे। उसी दौरान वो लखनऊ के भातखंडे संगीत महाविद्यालय में संगीत का अध्ययन करने लगे। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की प्रेरणा से 1940 की शुरुआत में रोशन आकाशवाणी दिल्ली में इसराज वादक की हैसियत से काम करने लगे। उनके भीतर

मुकेश और रोशन एक दूसरे के पूर्व परिचित थे और परिचय का ये सिलसिला बहुत पुराना तब का था जब दोनों दिल्ली में रहा करते थे। 1950 के दशक के शुरुआती दौर में रोशन के संगीत निर्देशन में मुकेश और तलत महमूद ने कई गीत गाए।

सन 60 का दशक रोशन के लिए बहुत भाग्यशाली रहा और इस दौर में रोशन ने कई सफल फिल्मों के लिए संगीत निर्देशन किया। इस दौर की मशहूर फिल्म बरसात की रात की ये कव्वाली उनके संगीत से सजी कालजयी फिल्मी रचना है।

संगीतकार रोशन के सुरीले संगीत से सजी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम हैं बरसात की रात, आरती, अनोखी रात, दिल ही तो है, बहु बेगम, चित्रलेखा, ममता और ताजमहल।

16 नवंबर सन 1967 को 50 बरस की आयु में अपने सुरीले गीतों की विरासत सौंपकर रोशन इस लौकिक जगत को छोड़कर चले गए। फिल्म जगत और सुरीले संगीत के कद्रदान हमेशा ऋणी रहेंगे महान संगीतकार रोशन के।

0: आप सुन रहे थे महान संगीतकार रोशन पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वो डॉक्टर हैं डॉक्टर उमेश ओझा जो यूरोलॉजिस्ट हैं बॉम्बे हॉस्पिटल और हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में। और डॉक्टर साहब को हमने आमंत्रित किया है आज प्रोस्टेट विषय पर बात करने के लिए और यूरिन से जुड़ी हुई और जो अन्य बीमारियां होती हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर उमेश ओझा विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
1: थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, ये मेरी खुद किस्मती है कि मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ और इतने लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।
0: क्या बात है डॉक्टर साहब, और विविध भारती के स्टूडियो में आप आए हैं तो हमें ये पता चला है कि आप गानों के बड़े शौकीन हैं।

0: संगीत से भी प्यार करते हैं, तो एक सवाल हमारा ये है कि विविध भारती के स्टूडियो में आपको आकर एहसास कैसा हो रहा है?
1: पुरानी यादें ताजा हो रही है
0: जी।
1: उस जमाने में विविध भारती ही एक ऐसी चैनल थी जिसके द्वारा हम अच्छे अच्छे गाने सुनते थे। इवन इन मेडिकल प्रोफेशन जब हम थक जाते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं, यही रेडियो की आवाज़,
0: क्या बात,
1: यही आप लोगों की आवाज़ और यही अच्छे गाने हमें कुछ एक रिलैक्सेशन देते हैं और अगली चैलेंजेस के लिए वापस तैयार कर देते हैं। सो विविध भारती एक ऐसी संस्था है, इतने सालों से हम विविध भारती के बिना कभी नहीं रह सकते हैं, और आज भी ये देख के बहुत खुशी होती है कि इतने कॉम्पिटिटिव जमाने में विविध भारती ने भी इतना ही प्रोग्रेस किया है कि अभी भी वो इतनी ही पॉपुलर संस्था है, और कभी भी चांस मिला वापस विविध भारती में गाने सुनने की हमेशा इच्छा रहती है।
0: क्या बात है डॉक्टर साहब, हमें बड़ा गौरव का एहसास होता है जब आप सबकी इस तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। तो आज हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज सेहतनामा कार्यक्रम में जो हमने विषय रखा है वो है प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी हुई अन्य बीमारियां और बीमारियों के निवारण। तो बताइए हमारे श्रोताओं को कि पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना आजकल बहुत आम हो रहा है, तो प्रोस्टेट का बढ़ना क्या है और शरीर में इसका मुख्य काम क्या होता है?
1: राइट, हर पुरुष में प्रोस्टेट की ग्रंथि रहती है
0: जी।
1: उनका कार्य है कि वो जूस सिक्रेट करता है जो हमारे वीर्य या सीमन का पार्ट रहता है, और ये जूस जो स्पर्म्स रहते हैं उनको न्यूट्रिशन देता है
0: जी।
1: आफ्टर एज ऑफ 40 धीरे धीरे शरीर में हार्मोन के बदलाव से प्रोस्टेट की ग्रंथि में चेंजेस शुरू होते हैं और धीरे धीरे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है
0: जी।
1: और प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने से, क्योंकि प्रोस्टेट की पोजीशन हमारे यूरिन के ब्लैडर के नीचे जो यूरिनरी पैसेज है उसके सराउंडिंग प्रोस्टेट वहां बनी रहती है
0: जी।
1: और जब भी ये ग्रंथि बढ़ती है तो ये यूरिनरी ट्यूब पे दबाव आने से यूरिन करने की दिक्कतें बढ़ने लगती है। सो इस प्रकार से धीरे धीरे प्रोस्टेट के जो प्रॉब्लम्स है, एज एज एडवांसेस जैसे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है प्रॉब्लम बढ़ते हैं। सो बेसिकली ये सब प्रॉब्लम एज रिलेटेड है, और जैसे एज बढ़ती है लोगों की प्रोस्टेट बढ़ने लगती है और उनके प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि हर एनलार्ज प्रोस्टेट डजंट मीन के वो प्रॉब्लम देने वाली है या उसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। सो प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है
0: जी। तो आपने जिक्र किया कैंसर का, तो अमूमन जैसे ही प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती है लोग यही मानते हैं कि अब उनको कैंसर होना पक्का है, आगे चल के कैंसर हो जाएगा, तो ये कहाँ तक मिथ है, कहाँ तक इसके बारे में थोड़ा क्लियर करिए कि प्रोस्टेट किस तरह की बीमारी है और कैंसर क्या है?
1: राइट, सो हर प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने से कैंसर होता है, ये गलत बात है और ये मिथ है। आजकल लोग इतनी इंफॉर्मेशन के कारण जब ये सब चीजें पढ़ते हैं सुनते हैं बहुत घबरा जाते हैं। दूसरी बात हुई कि रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत अच्छी बात है
0: जी,
1: लेकिन वहां कहां भी रिपोर्ट्स में पढ़ लिए कि प्रोस्टेट बढ़ गई है लोग एकदम चिंतित हो जाते हैं
0: जी, जी।
1: और फिर डॉक्टर गूगल के पास जाके काफी इंफॉर्मेशन जमा करते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन होना महत्व का है
0: हाँ।
1: लेकिन उसके कारण अननेसेसरी टेंशन लाना जरूरी नहीं है
0: बिल्कुल।
1: सो हर प्रोस्टेट बढ़ने से उनमें कैंसर होगा ये बात सही नहीं है
0: जी।
1: लेकिन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट जो बिनाइन है नॉर्मली उसके साथ में कैंसर भी हो सकता है। सो ओनली थिंग इज रेगुलर चेकअप बाय एन एक्सपर्ट, जिसके कारण अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई तो समय सर हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं और समय सर उसे हम ट्रीट कर सकते हैं
0: जी।
1: लेकिन प्रोस्टेट बड़ी या एनलार्ज प्रोस्टेट हुई उसका मतलब अभी कैंसर हो जाएगा ये गलत बात है, और अन्य सिर्फ उसके बारे में टेंशन रखना वो ठीक नहीं है
0: बिल्कुल। तो प्रोस्टेट बढ़ा है और क्या है इसके लक्षण, कैसे पता चले एक मरीज को, और दूसरा इसकी जांच की पद्धति क्या है, किस तरह के टेस्ट होते हैं?
1: राइट, पहली बात मैंने बताया ऐसे हेल्थ चेकअप में काफी समय रिपोर्ट में आएगी प्रोस्टेट बढ़ी हुई है, लेकिन उसका

0: मतलब नहीं कि वो बड़ी हुई प्रोस्टेट के लिए या एनलार्ज प्रोस्टेट के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है।
1: जी,
0: प्रोस्टेट के लिए हम तीन चीजें देखते हैं।
1: जी,
0: एक कैंसर नहीं वो हम चेक करते हैं, दूसरी बात उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस या किडनी डैमेज नहीं हो रहा है वो हम देखते हैं, और तीसरी बात कि उनके सिम्टम्स के कारण पेशेंट को कितनी दिक्कतें होती है उस हिसाब से हम निर्णय लेते हैं कि ट्रीटमेंट की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है।
1: जी जी।
0: सो जब रिपोर्ट दिखाता है कि एनलार्ज प्रोस्टेट है, पेशेंट में कोई सिम्टम्स नहीं हो सकते हैं, वो चेकअप किया इसलिए एनलार्ज प्रोस्टेट करके वो दिखा रहा है,
1: जी,
0: ऐसे पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तपास करनी जरूरी है।
1: जी जी।
0: सिम्टम्स जिनको प्रॉब्लम देते हैं उनको दो प्रकार के सिम्टम्स रहते हैं।
1: जी।
0: एक जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स और वॉइडिंग सिम्टम्स, जहां यूरिन करने में दिक्कत, यूरिन की धार वीक होना, यूरिन के लिए जोर करना, यूरिन के लिए बार बार जाना, और दूसरी जो है इसे हम स्टोरेज सिम्टम्स कहते हैं। उसके कारण जब यूरिनरी ब्लैडर पे असर होता है तो कभी कभी पूरी यूरिन निकलती नहीं है, इन्फेक्शन हो सकता है, उसके कारण पेशेंट को बार बार यूरिन के लिए जाना, कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाना, ये सब सिम्टम्स बाहर आने लगते हैं।
1: जी जी।
0: लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि ये सब सिम्टम्स खाली एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण ये ऐसी बात नहीं है, बाकी रोगों के कारण भी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं।
1: जी।
0: जैसे डायबिटीज, जहां डायबिटीज के कारण काफी लोगों को फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे पार्किंसन डिजीज जिसके कारण, या पथरी ब्लैडर में रही, सो ये सब सिम्टम्स के काफी कारण हो सकते हैं। ये सिम्टम्स हुए उसका मतलब ये नहीं कि ये खाली एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण ही हुआ है।
1: जी जी जी।
0: इसीलिए हम अब ये सिम्टम्स को LUTS या लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स कहते हैं।
1: जी।
0: और फिर जांच करना जरूरी है जानने के लिए कि ये प्रोस्टेट के कारण है या और कुछ कारण के हिसाब से ये सिम्टम्स से पेशेंट परेशान है।
1: जी जी। तो टेस्ट किस तरह के होते हैं, मतलब ब्लड के जरिए होता है या फिर सोनोग्राफी या क्या तरीका है?
0: राइट। सो पहले तो हिस्ट्री के हिसाब से हम देखते हैं कि ये सिम्टम्स कितने बॉदरसम है पेशेंट्स को।
1: जी जी।
0: उसका स्कोर रहता है जिससे हमें आइडिया आता है कि सीवियरिटी सिम्टम के हिसाब से कितनी है।
1: जी।
0: बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन महत्व का रहता है कि प्रोस्टेट हम चेक करते हैं कि कितनी बड़ी हुई है, उसमें कुछ चेंजेस कैंसर के फील होते हैं कि नहीं, यूरिन की ट्यूब व्यवस्थित है कि नहीं, ब्लैडर कुछ भरा हुआ नहीं है। सो नेक्स्ट पार्ट इज अ फिजिकल एग्जामिनेशन। देन वी डू लेबोरेटरी टेस्ट, जैसे इनका हीमोग्लोबिन कैसा है, ब्लड शुगर कैसी है, सीरम क्रिएटिनिन, जिसे पता चलता है कि इसके कारण दोनों किडनी पे प्रेशर आके क्रिएटिनिन बढ़ के किडनी तो डैमेज नहीं हो रही है। यूरिन टेस्ट करते हैं जानने के लिए कि उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, कभी कभी ब्लड तो नहीं जा रहा है, ये यूरिन टेस्ट से हम पता करते हैं। एक महत्व की टेस्ट है जिसे हम PSA या प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट कहते हैं, या ब्लड टेस्ट है।
1: जी।
0: ये एक टेस्ट है जानने के लिए कि कैंसर की शक्यता है या नहीं है। जिनको ये नंबर या PSA का रिपोर्ट ज्यादा रहता है उनको प्रॉपर इवेल्युएशन की जरूरत रहती है।
1: जी।
0: ये भी गलत मानना है कि एक बार PSA का नंबर ज्यादा आया मतलब कैंसर ही है। PSA बढ़ने के भी अलग अलग कारण है, कभी प्रोस्टेट बड़ी होने से, वहां इन्फेक्शन होने से, सूजन होने से, बट अगर PSA का नंबर ज्यादा है तो वो हिसाब से चेकअप करना जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: इसके बाद में हम सोनोग्राफी करते हैं।
1: जी।
0: सोनोग्राफी करने का यही कारण है जानने के लिए कि इसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस लाइक स्टोन्स या फिर उसके कारण किडनी पे प्रेशर तो नहीं है, ये सब चीजें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं। ये भी पता चलता है कि पूरी यूरिन निकलती है या नहीं, या अंदर यूरिन रह जाती है। सो ये सब चीजें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं, और साइज ऑफ द प्रोस्टेट पता चलती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: ये भी जानना जरूरी है कि साइज के हिसाब से डर जाना जरूरी नहीं है।
1: ओके।
0: बड़ी प्रोस्टेट मतलब प्रॉब्लम होना ही चाहिए या ट्रीटमेंट लेनी ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। सो साइज इज इम्पोर्टेंट, लेकिन साइज के हिसाब से हम पूरी ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं करते हैं।
1: जी जी।
0: क्योंकि लोग जब देखते हैं रिपोर्ट में सोनोग्राफी में कि 100 ग्राम की प्रोस्टेट है, डर जाते हैं कि इतनी बड़ी प्रोस्टेट है, कल ऑपरेशन कर दीजिए। सो ये अगेन

0: गलत बात है, खाली साइज के हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड नहीं करते हैं.
1: बिल्कुल.
0: सो ये स्टैंडर्ड हम टेस्ट करके देखते हैं कि पेशेंट को कितनी तकलीफ है, प्रोस्टेट के कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं, या कैंसर की शक्यता है कि नहीं.
1: जी
0: इस इवैल्यूएशन के बाद में वो वी कैन टेक अ डिसीशन कि आगे हमें क्या करना है.
1: जी बहुत सही बातें आपने बताई हैं, बहुत सही जानकारी. और इसमें बहुत सारी गलतफहमियां लोगों को होती हैं कि प्रोस्टेट बढ़ा तो खुद ही टेंशन में आकर खुद ही तय कर लेते हैं. तो बेहतर है कि एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और उन्हें तय करने दें कि क्या करना है. अब हम यहाँ पर तय कर रहे हैं कि आपकी पसंद का कोई गाना आना चाहिए. बताइए कौन सा गाना सुनवाया.
0: जरूर, इस प्रोफेशन में भी हम मानते हैं कि हमेशा हमें ऊपर वाले के आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है
1: क्या बात है.
0: और लोगों के गुड विशेस की हमें हमेशा जरूरत पड़ती
1: बिल्कुल
0: है. सो ऊपर वाले को याद करके, बहुत पुराना बहुत अच्छा गाना है, ए मालिक तेरे बंदे हम,
1: दो आंखें बारह
0: दो
1: हाथ,
0: आंखें बारह हाथ.
1: क्या बात है. सुनते हैं, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है.

0: और डॉक्टर साहब आपने कहा कि ऊपर वाले का वरद हस्त जरूरी होता है। सचमुच हम तो यही कहते हैं कि डॉक्टर की दवा और दुआ दोनों कारगर होती है मरीज के लिए।
1: आपकी बात बहुत सच है। मैं बताऊं
0: जी,
1: लोग डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं लेकिन ये सच नहीं है। हम तो ऊपर वाले जो हमको काम दिया है वो कैसे अच्छी तरह से करें वो हमारी इच्छा रहती है। सो बहुत बड़ा गैप है भगवान और हमारे में। अच्छी बात है क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स को दी गई हुई है।
0: जी, जी।
1: लेकिन हम भगवान नहीं है, हमें हमेशा भगवान की आशीर्वाद की और मदद की जरूरत पड़ती है।
0: जी सही बात है, लेकिन एक मरीज यही मान के चलता है क्योंकि डॉक्टर के बदौलत

0: वो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। और गाने से पहले डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे, आपने जिक्र किया था कि मरीज प्रोस्टेट बढ़ा हुआ देखते हैं और घबरा जाते हैं कि अब उन्हें सर्जरी की जरूरत है, तो श्रोताओं को बताइए कि कौन सी ऐसी स्थिति आती है जब सर्जरी की जरूरत है और किस तरह से इसका इलाज किया जाता है, दवाइयों से और सर्जरी से दोनों बताइए।
1: राइट, सो प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट में काफी बदलाव आया है। एक जमाना था कि पेशेंट के पास और हमारे पास खाली तीन ऑप्शन थे, या तो कुछ नहीं करना, या तो नली डाल के रखना
0: जी,
1: या तो ऑपरेशन करना। जैसे मैंने बताया कि
0: जी,
1: हर एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण अलग अलग रहते हैं, और अगर इवेल्युएशन व्यवस्थित नहीं किया और ऑपरेशन भी किया तो उसका फायदा नहीं होता है। सो पहले तो जिनको कोई तकलीफ नहीं उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं रहती है। हाँ जी, रेगुलर चेकअप करना बहुत जरूरी है। द सेकेंड पार्ट इज मेडिकेशंस। आजकल काफी दवाइयां आई है जिसके कारण यूरिन करने में सुविधा होती है, अंदर ज्यादा यूरिन रहती नहीं है, प्रोस्टेट का जो भाग है वो थोड़ा दवाई से खुल जाने से पेशेंट को काफी आसानी और आराम मिलता है, जिसे हम अल्फा ब्लॉकर्स कहते हैं और फाई रिडक्टेस इनहिबिटर, ये कुछ दवाएं के ग्रुप्स है जिसके कारण प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट में काफी बदलाव आ गया है
0: जी।
1: अगर दवाई देने के बावजूद भी लोगों की तकलीफ कम नहीं हुई तब उस समय हमें निर्णय लेना पड़ता है कि इस मरीज को ऑपरेशन की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है
0: जी।
1: कभी कभी उसके लिए भी स्पेशल टेस्ट है जिसे हम यूरोडायनामिक्स कहते हैं
0: जी। हाँ,
1: क्योंकि यूरिन करने के लिए दो चीजें महत्व की, यूरिनरी ब्लैडर में काफी प्रेशर होना चाहिए यूरिन बाहर फेंकने के लिए, और जो रास्ते में प्रोस्टेट है वो रुकावट नहीं करनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम ब्लैडर का है और हम प्रोस्टेट का ऑपरेशन करेंगे तो उसका रिजल्ट सही नहीं मिलेगा
0: जी, जी।
1: सो कुछ केसेस में हमें स्पेशल यूरोडायनामिक टेस्ट करनी पड़ती है और फिर हम निर्णय लेते हैं ऑपरेशन के लिए
0: जी।
1: पहले के जमाने में खाली ओपन ऑपरेशन ही हमारे पास एक ऑप्शन था
0: जी।
1: आजकल दूरबीन से, जिसे हम TUPR और टर्फ कहते हैं, जहां अंदर से ही लेजर से या अलग अलग एनर्जी सोर्सेस से रास्ता बड़ा करके प्रोस्टेट के कुछ चिप्स निकाल देते हैं ताकि रास्ता बढ़ जाता है और फिर पेशेंट को यूरिन करने में काफी आसानी हो जाती है। आजकल कुछ नए नए टेक्निक्स भी आए हैं, जैसे रिज्यूम है या फिर यूरोलिफ्ट है, ये सब नई तरीके हैं जिससे मिनिमल प्रोसीजर करके अगर रास्ता बड़ा कर सकें और पेशेंट को राहत दे सकें, ये कोशिश रहती है
0: जी।
1: लेकिन अभी तक ये सब नई टेक्निकें हैं, एक्सपेंसिव है, और लॉन्ग टर्म इतना आउटकम कैसे रहेगा वो अभी तक हमें वो उसका एश्योरेंस नहीं है। सो ये नई नई चीजें आई हैं, हम पेशेंट के सामने सब ऑप्शंस रखते हैं
0: जी, जी।
1: और ये जिसे हम कहते हैं कि शेयर्ड डिसीजन है, क्योंकि हर ऑपरेशन के कुछ आड़असर भी रहते हैं
0: जी, जी।
1: हर ऑपरेशन के लिए पैसे भी खर्च पड़ते हैं, और ये सब करने के बाद अगर पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो अच्छा ऑपरेशन करने के बाद में भी जो हम सक्सेस चाहते हैं वो नहीं मिलता है
0: जी।
1: सो इसीलिए पेशेंट के साथ बात करके उनको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में सब जगह पे नई नई टेक्निक काफी इसका प्रचार हो रहा है
0: जी, जी।
1: और पेशेंट वो सोच के आ जाते हैं कि ये बस यही सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है और वो करा के आते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें सक्सेस नहीं मिलता है, क्योंकि केस सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
0: इसलिए अनुभवी डॉक्टर के पास जाएं वो ज्यादा अच्छा होता है। तो आजकल ये जो तकनीक का आपने जिक्र किया, तो जो भी तकनीक है अमूमन कितना वक्त लगता है ऑपरेशन के लिए, क्योंकि ऑपरेशन के नाम से मरीज घबराता है कि अरे हमें दो तीन दिन के लिए एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में।
1: सो कुछ टेक्निक है जो एक दिन अस्पताल में रहना पड़ता है और फिर थोड़े दिन कभी कभी नली लगा के रखनी पड़ती है, कैथेटर और बैग, एंड देन पेशेंट इज क्वाइट ऑल राइट। जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन है जिसे हम TORP कहते हैं या होलेप जो लेजर से करते हैं, उसके लिए 3 दिन अस्पताल में रहना पड़ता है और नली 3 या 4 दिन रखनी पड़ती है। कभी कभी अगर पेशाब की थैली वीक रही, काफी बड़ी प्रोस्टेट रही, तो फिर नली हमें ज्यादा समय तक रखनी पड़ती है
0: जी, जी।
1: लेकिन पहले जैसे जो कट करके हमें इतना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता था वो अब नहीं रहा है, पेशेंट थोड़े ही समय में अपने काम पे वापस जा सकता है
0: जी। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब बात थोड़ी सी घबराने की भी हो जाती है, क्योंकि सर्जरी के नाम से कोई भी मरीज थोड़ा ना थोड़ा घबरा ही जाता है,

0: लिए, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए एडमिट होना पड़े, तो थोड़ी घबराहट कम करने के लिए एक गाना सुन लेते हैं।
1: ओ,
0: कौन सा गाना सुनवाए?
1: राजेश खन्ना जी का गाना सफर, जीवन से भरी तेरी आंखें।
0: वाह क्या बात है, किशोर कुमार की आवाज,
1: कुमार की आवाज, क्या गाना है
0: जी। सुनते हैं यही गाना, फिल्म सफर।

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले बात चल रही थी ऑपरेशन की, सर्जरी की बात चल रही थी, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि अमूमन लोगों का आजकल वेट बढ़ना और अनियमित दिनचर्या हो रही है और वजन बढ़ना, तो लोग इन सबको भी किसी न किसी बीमारी से जोड़ लेते हैं, और प्रोस्टेट बढ़ने में भी इसको लोग गूगल से, आपने जिक्र भी किया, गूगल से जानकारी लेते हैं कि आपको अगर मोटापा हुआ, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है कि जीवन शैली का या मोटापा का, वजन बढ़ने का प्रोस्टेट पर क्या प्रभाव पड़ता है?
1: सो जिसे हम मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, जिसमें ये सब चीजें आती है, डायबिटीज, वेट गेन, ये सब चीजों का, क्योंकि इंटरनल बॉडी मिल्यू में चेंजेस होने से अल्टीमेटली ये हार्मोनल चेंजेस के कारण प्रोस्टेट बढ़ता है, सो ये सब का कुछ कुछ जरूर प्रभाव होता है, लेकिन ये सब चीजें अभी थियरी है। सच में आप पूछेंगे कि एग्जैक्ट कारण क्या है, वो किसी को पता नहीं है।
0: जी, जी।
1: लेकिन ये सब चीजें डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफस्टाइल चेंजेस से, आप कितना पानी पीते हैं, कितनी बार आप ब्लैडर खाली करते हैं, आपके शुगर आप मेंटेन करते हैं कि नहीं, आपको

0: पार्किंसन जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है कि नहीं। सो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली असर करती है और उसकी कुछ असर ज़रूर प्रोस्टेट में होती है
1: जी।
0: लेकिन 100% बताना कि इसी के कारण प्रोस्टेट के प्रॉब्लम हो रहे हैं वो अभी तक इतना साइंटिफिक डेटा हमारे पास नहीं है
1: जी। लेकिन मोटापा और वजन बढ़ना तो वैसे भी नुकसान
0: जरूर
1: है। तो
0: जरूर
1: डॉक्टर साहब, कैंसर की बात कर रहे थे जब, तो मेरे जहन में एक बात आई कि प्रोस्टेट जब बढ़ा हो तो किस तरह की असावधानी से वो कैंसर का रूप लेता है, या कैंसर प्रोस्टेट कैंसर एकदम अलग है और प्रोस्टेट बढ़ना बिल्कुल अलग है, क्या असावधानी या लापरवाही से वो कैंसर का रूप ले सकता है?
0: सो प्रोस्टेट का बढ़ना नेचुरल है और उसमें कैंसर के चेंजेस होने के कुछ कारण हमें मालूम है, कुछ कारण हमें मालूम नहीं है
1: जी।
0: स्मोकिंग इज डेफिनेटली वन फैक्टर, कुछ चीजें जेनेटिक्स हैं जिनको फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है उनको सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है और रेगुलर चेकअप रखना ज़रूरी है। सो ये चीज़ें डेफिनेटली, ऐसा कोई प्रिवेंटिव मेजर हमारे पास नहीं है कि ये करने से कैंसर नहीं होगा। सो इसलिए सबसे बड़ी सावधानी रेगुलर चेकअप है जिससे समय में पता चलता है कि प्रोस्टेट में कुछ कैंसर चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।
1: जी जी। यूरिन से जुड़ी और कौन सी समस्या है जो प्रोस्टेट की ओर संकेत करती है?
0: सो जैसे बिनाइन प्रोस्टेट के कारण जो प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे डिफिकल्ट इन पासिंग यूरिन, कभी कभी बार बार यूरिन के लिए जाना, यूरिन में ब्लड आना, ये एक ऐसा सिम्टम है कि उसकी हमेशा हमें सावधानी रखनी चाहिए और टेस्ट करनी चाहिए
1: जी, जी।
0: क्योंकि अलग अलग कारणों से ब्लड आ सकता है लेकिन एक फिक्र रहती है कैंसर की। सो ये अगर कुछ सिम्टम्स रहे तो डेफिनेटली आगे इन्वेस्टिगेशंस करना जरूरी रहता है। लेकिन ज्यादा करके लोग यूरिन के प्रॉब्लम से ही आते हैं जो बिनाइन प्रोस्टेट और कैंसर प्रोस्टेट के लिए कॉमन सिम्टम्स है, जांच करने से ही पता चलता है कि ये बिनाइन प्रोस्टेट है या उसमें कुछ कैंसर के चेंजेस हो के कैंसर प्रोस्टेट हो रहा है।
1: तो मतलब किसी को प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं कि आगे चल के कैंसर हो जाएगा?
0: एब्सोल्युटली नहीं, और साइज देख के भी घबराना नहीं है कि बहुत प्रोस्टेट बड़ी हो गई अब मुझे कैंसर होगा, ये गलत बात है
1: जी।
0: सो हर पुरुष को मैंने बताया ऐसे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है लेकिन कैंसर बहुत कम परसेंटेज में वो कैंसर में चेंज होती है
1: जी। और डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट से जुड़ी हुई और कौन सी बीमारियां होती हैं उसके?
0: सो प्रोस्टेट कभी कभी यंग एज में वहाँ इन्फेक्शन होने से प्रोस्टेटाइटिस जिसे हम कहते हैं
1: जी हाँ।
0: कभी कभी वहाँ पस जमा होता है जिसे हम प्रोस्टेटिक एब्सेस कहते हैं। सो ये चीज़ें भी प्रोस्टेट से जुड़ी हुई रहती है और अगर इस प्रकार के सिम्टम्स या इन्फेक्शन होने लगे, कभी कभी टीबी की बीमारी भी प्रोस्टेट में हो सकती है
1: जी जी।
0: सो इन्फेक्शन एक बात है, फिर दूसरी बात ही बिनाइन प्रोस्टेट बढ़ने से प्रॉब्लम हो सकते हैं या कैंसर प्रोस्टेट के कारण तकलीफ हो सकती है
1: जी। तो इसमें क्या पुरुषों की सामान्य जीवन शैली या मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है किसी को प्रोस्टेट की समस्या है तो?
0: जरूर, क्योंकि अल्टीमेटली इससे काफी लाइफस्टाइल चेंज होती है
1: जी।
0: अब एक जमाना था कि आफ्टर 60 इयर्स लोग मानते थे कि अभी वानप्रस्थ आश्रम है, मुझे दिन में 10 बार या रात को 5 बार यूरिन जाने की अगर जरूरत थी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज लोग 60, 70, 80 काफी एक्टिव है और जब यूरिनरी समस्या बार बार जाना, कंट्रोल नहीं कर सकना, काफी टेंशन देती है
1: जी।
0: अब बंबई की बात देखिए, अगर किसी को बोरीवली से चर्चगेट तक सफर करना है गाड़ी में और उनकी समस्या है कि बार बार यूरिन जाना पड़ता है या कंट्रोल नहीं कर सकते, ये एक मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है कि कहां मुझे सुविधा मिलेगी, कहां मैं यूरिन के लिए जा सकूंगा। और फिर जब ये सब ख्याल नहीं करते हैं, यूरिन अंदर ज्यादा भरी हुई रहती है तो फिर यूरिन की ब्लैडर भी वीक होने लगती है, फिर उससे कभी कभी इन्फेक्शन की भी समस्या शुरू हो जाती है। सो यस, स्ट्रेस के कारण भी कुछ लोगों को बार बार यूरिन जाने की इच्छा होने लगती है। सो साइकोलॉजिकली ऑल्सो जब लोगों को यूरिन की प्रॉब्लम रहती है तो दोनों चीज होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ते हैं और यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ने से भी साइकोलॉजिकली स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है,
1: दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

0: तो यहाँ पर टेंशन रिलीज करने के लिए एक गाना आना चाहिए, कौन सा गाना?
1: जरूर, एक किशोर कुमार जी का गाना है, पल पल दिल के पास तुम
0: तुम
1: रहती
0: रहती
1: हो।
0: हो, ब्लैक पैंथर का
1: काफी,
0: गाना।
1: जहाँ जी, रोमांटिक गाना है, लेकिन किशोर दा ने बहुत अच्छी तरह से गाना गाया है।
0: जी। डॉक्टर साहब, आपने भी रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले जिक्र किया था, प्रोग्राम्स, म्यूजिकल प्रोग्राम में बड़े सक्रिय रहते हैं, देखने जाते हैं स्टेज के प्रोग्राम, और आपने बताया कि पहले गाया भी करते थे,
1: हाँ जी,
0: तो यहाँ गा के सुनाएंगे?
1: नहीं, अब क्या है, कुछ वॉइस की तकलीफ हुई है इसलिए गाना डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन एक जमाना था गाते थे।
0: जी
1: और यस, म्यूजिक इज सच ए सूदिंग थिंग
0: हाँ
1: कि कोई भी स्ट्रेस को कम कर देती है।
0: जी।
1: और कोई भी स्ट्रेसफुल जॉब हमारा, जब हम कभी कभी ऑपरेशंस में, कभी कभी किडनी ट्रांसप्लांट में, हम 24 घंटे, 36 घंटे एक कंटिन्यूसली काम करते हैं, उस समय म्यूजिक का सहारा बहुत जरूरी हो जाता है।
0: जी
1: और आप जानते हैं कि लोग म्यूजिक थेरापी भी देते हैं। सो
0: जी
1: म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलीविंग द स्ट्रेस।
0: जी।
1: सो मुझे लगता है कि बहुत से हमारे डॉक्टर्स हैं जो गाते भी हैं, म्यूजिक में दिलचस्प भी है, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी चीज है जो स्ट्रेस कम करने के लिए महत्व की हो जाती है।
0: जी, तो इन बीमारियों पर भी म्यूजिक थेरेपी काम करती है क्या?
1: क्यों नहीं, अगर स्ट्रेस कम हो जाए तो आप यूरिन के बारे में
0: बंद हो जाएगा।
1: सोचेंगे
0: जी बिल्कुल। तो सुनते हैं ये गाना ब्लैकमेल फिल्म का।
1: नहीं।

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले ये बातें हो रही थी स्ट्रेस रिलीज की, और यूरिन पास करने की बात आप कर रहे थे बार बार, लेकिन आजकल ये बहुत कॉमन बात हो गई है, रात में खास तौर से। कुछ लोगों को देखा है कि 3 बार उठ के यूरिन पास करने के लिए जाते हैं, और जब जांच कराते हैं तो नॉर्मल रिपोर्ट आती है। तो ये क्या वजह हो सकती है, और क्या कुछ सावधानी रखें कि इस स्थिति से मुक्ति मिले उन्हें?
1: राइट सो पहले तो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करके जानना ज़रूरी रहता है कि डायबिटीज़ जैसी बीमारी नहीं है या कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, और ज़्यादा यूरिन ब्लैडर में रहती नहीं है, ये पहले हम देखते हैं।
0: जी
1: दूसरी बात, लाइफस्टाइल, जैसे आप लेट डिनर लेंगे,
0: जी
1: रात तक पानी पीते रहेंगे, सो फिर वो ज़्यादा यूरिन जमा हो के वो बार बार जाने की इच्छा बनी रहती है, क्योंकि एक समय में पूरी यूरिन खाली नहीं होती है। तीसरी बात है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण भी, जो हार्मोनल किडनी चेंजेस होने के कारण किडनी ज़्यादा यूरिन रात को बनाती है
0: ओ
1: और फिर वापस बार बार जाना पड़ता है। कुछ लोगों को, जिसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं,
0: ओ
1: जिसके कारण भी बार बार रात को यूरिन जाना ज़रूरी हो जाता है।
0: जी
1: सो काफ़ी ऐसे, जिसे हम नॉक्चूरिया कहते हैं, और ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि स्लीप डिस्टर्ब होने से लोगों की लाइफस्टाइल और नेक्स्ट डे काम करने में काफ़ी दिक्कतें आने लगती हैं।
0: जी जी
1: सो ये एक बड़ा विषय है, जो ऑलवेज प्रोस्टेट के ही कारण है वैसा नहीं है, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी बाकी भी ऐसे कॉजेज है जिसके कारण ये नाइट फ्रीक्वेंसी बढ़ने से लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस हो जाते हैं।
0: जी
1: कुछ लोगों की एसेट स्लीप डिस्टर्बेंस की पैटर्न रहती है, और फिर थोड़ा सेंसेशन हुए वो बार बार बाथरूम में जाते हैं। सो ये पता करना डिफिकल्ट हो जाता है कि स्लीप डिस्टर्बेंस के कारण बार बार जाते हैं या बार बार यूरिन जाने से स्लीप डिस्टर्ब होती है।
0: जी जी
1: तो ये सब चीज़ें एनालाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हर समय खाली दवाइयों से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे या ऑपरेशन के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ये नहीं होता है। और ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग डेस्परेट होकर आ जाते हैं, कहते हैं कि मेरा प्रोस्टेट का ऑपरेशन कर दीजिए ताकि रात की मेरी तकलीफ चली जानी चाहिए, लेकिन ये गलत बात है,
0: जी जी
1: क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी ये प्रॉब्लम रह सकते हैं। इसलिए इस पेशेंट्स में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस कारण से उनकी ये रात की फ्रीक्वेंसी उन्हें ट्रबल दे रही है।
0: तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक तो आपने नींद का बताया, और दूसरा पानी ज्यादा पीना,

0: लेकिन कई बार लोग अमूमन बार बार बाथरूम जाते हैं, इसमें महिलाओं की संख्या क्या ज्यादा होती है या फिर?
1: सो यस, महिलाओं के प्रॉब्लम थोड़े अलग रहते हैं.
0: जी
1: जब उनकी मेनली जिसे हम फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी प्रॉब्लम कहते हैं उसके कारण कुछ अलग रहते हैं. पहली बात कि काफ़ी महिलाओं में बचपन से आदत हो जाती है कि समय समय से यूरिन नहीं करते हैं क्योंकि सुविधा नहीं मिलती है. और जब ज़्यादा यूरिन जमा होने लगता है तो धीरे धीरे पेशाब की थैली और यूरिनरी ब्लैडर वीक बनने लगती है. फिर उन्हें पेट का प्रेशर लगा के वो यूरिन खाली करनी पड़ती है.
0: जी.
1: जब एक समय में खाली नहीं होती है तो फिर बार बार जाके उनको यूरिन खाली करनी पड़ती है. ये एक प्रॉब्लम हुआ. दूसरा जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर या इरिटेबल ब्लैडर कहते हैं, जो कभी कभी कुछ लोगों को कॉफी टी इसके कारण ब्लैडर इरिटेशन होने से बार बार जाना पड़ता है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. तीसरी बात है स्ट्रेस लेवल.
0: जी.
1: कुछ लोगों को जब भी स्ट्रेस बढ़ता है वो इमीजिएट उनको लगता है मुझे जाके यूरिन करनी चाहिए.
0: जी.
1: सो और फोर्थ इन्फेक्शन विच इज वेरी कॉमन इन लेडीज, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के कारण भी ये तकलीफ हो सकती है. बाकी काफी अलग अलग कारण हैं लेकिन ये कॉमन कारण है.
0: जी.
1: और जिसके कारण ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी इतनी तकलीफ बन जाती है और लेडीज में ये काफी इंसिडेंस काफी ज्यादा है. इस पेशेंट्स को पहले तो जैसे मैंने बताया कॉमन इन्वेस्टिगेशंस करके हम रूल आउट करते हैं कि अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं है. फिर लाइफस्टाइल चेंजेस, कि काफी लोग मानते कि बहुत पानी पीना चाहिए. सच बात है पानी पीना जरूरी है, लेकिन अगर आपको इतनी फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी का प्रॉब्लम है तो वो हमें थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है. तीसरी बात, जिनको डेफिनेटली कैफीन या कॉफी और टी से होता है उसका प्रमाण कम करना जरूरी हो जाता है.
0: जी.
1: और आजकल काफी दवाइयां आई हैं जिससे ब्लैडर को रिलैक्स करने से, ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ने से वो ज्यादा समय तक यूरिन स्टोर कर सकती है. और फोर्थ, कुछ लोगों को जो स्ट्रेस इतना तकलीफ देता है, आई थिंक योगा एक्सरसाइजेस ऑल दिस थिंग्स हेल्प देम इन रिलैक्सिंग द ब्लैडर मसल्स ताकि वो ज्यादा समय तक यूरिन स्टोर कर सकें. सो लाइफस्टाइल चेंजेस का बहुत बड़ा महत्व है ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी ट्रीट करने में. और दूसरा, यूरिनरी इन्फेक्शन अवॉइड करना जरूरी हो जाता है.
0: जी. तो डॉक्टर साहब, आप इन्फेक्शन की बात आपने कई बार कही, तो इन्फेक्शन को अवॉइड कैसे किया जाए? क्या वजह हो सकती है? महिलाओं में पुरुषों में अलग तरह के इन्फेक्शन होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए.
1: सो एक तो एडिक्वेट पानी पीना भी जरूरी है.
0: जी.
1: बहुत कम पानी पीना ठीक नहीं है.
0: जी.
1: दूसरी बात, समय समय से यूरिन कर लेना है. तीसरी बात, हम देखते हैं कि कभी कभी अंतर कोई सिस्टम में कारण है, जैसे ब्लैडर स्टोन से, किडनी स्टोन से, जिसके कारण भी इन्फेक्शन हो सकता है. द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम टुडे इज डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज के कारण जब शुगर यूरिन में से जाती है उनको भी इन्फेक्शन की शक्यता बहुत बढ़ जाती है. सो ये चीज़ें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. देयर आर यंग लेडीज जो आफ्टर सेक्शुअल एक्टिविटी ऑल्सो उनको इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी रहती है. सो आई थिंक गायनेकोलॉजिस्ट को मिलके या यूरोलॉजिस्ट को मिलके किस लाइफस्टाइल चेंजेस पहले चेंज करके अगर इन्फेक्शन के इंसिडेंस कम हो जाए वो पहले कोशिश करनी है.
0: जी.
1: फिर तपास करके ऐसे कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हो गए तो उनको ट्रीट करना जरूरी है. और थर्ड, फिर जरूरत पड़ी तो दवाइयों से ये सिम्टम्स हम कंट्रोल कर सकते हैं. वेरी रेयरली हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस या कभी कभी कैंसर जैसी बीमारियों भी कभी ये सिम्टम्स के साथ पेश होती है. इसीलिए प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कर लेना ज़रूरी है.
0: जी.
1: क्योंकि उनसे कारण भी ब्लैडर में इरिटेशन होने से बार बार यूरिन जाने की उनको टेंडेंसी रहती है.
0: जी जी.
1: कुछ कंडीशन जैसे हम पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम कहते हैं, जो बेसिकली नर्व्स और मसल्स के स्पैजम्स के कारण नर्व्स पे प्रेशर आने से उसकी असर से भी लेडीज को बार बार जाने की टेंडेंसी होती है, पेन होता है. तो ये काफ़ी चीज़ों से ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी के प्रॉब्लम हो सकते हैं. बट ज़्यादा करके कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं रहते हैं, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से और कुछ प्राइमरी मेडिकेशन से काफ़ी लोगों को राहत

0: जाती है. अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट, और काफ़ी लेडीज तकलीफ सह लेती है कि कहाँ किसी को हम इसके बारे में बताएं.
1: जी,
0: ये गलत बात है. आजकल इतने ऑप्शंस मिल रहे हैं कि इससे ये जो प्रॉब्लम है उससे कंट्रोल करना अभी आसान हुआ है.
1: बिल्कुल. अपने श्रोताओं को बता दें, विविध भारती से यह कार्यक्रम सेहतनामा, और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर उमेश ओझा से, जो कि एक मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं और बड़े ही जानकार डॉक्टर हैं. डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनते हैं हम.
0: जरूर.
1: कौन सा गाना सुनवाएं?
0: मुझे लगता है अरिजीत सिंह का नैना, जो दंगल मूवी में है,
1: जी.
0: बहुत अच्छा गाना है
1: जी.
0: और वहाँ इमोशंस भी बहुत अच्छे फादर डॉक्टर के रिलेशनशिप के बारे में बताया है. वो गाना अच्छा रहेगा
1: जी. सुनते हैं यही गाना अरिजीत सिंह की आवाज में.

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले जो चर्चा हो रही थी वो यूरिन पर हो रही थी, जो एक कॉमन प्रॉब्लम है। आप चर्चा कर रहे थे कि महिलाओं में ये प्रॉब्लम अलग होती है, पुरुषों में अलग भी होती है, और एक कॉमन प्रॉब्लम है महिलाओं के पीरियड्स के दौरान उन्हें शायद यूरिन की समस्या से ज्यादा उन्हें जूझना पड़ता है, और एक है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि किस तरह से बचाव कर सकते हैं या क्या एहतियात बरत सकते हैं। क्या ये नॉर्मल है या कुछ लोगों को ही होता है?
1: सबको होता है ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को जरूर ये तकलीफ देती है, स्पेशली आगे बताए से फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, ये कुछ हार्मोन चेंजेस के कारण ये सिम्टम्स बढ़ते हैं।
0: ओके।
1: और इन्फेक्शन की शक्यता रहती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय भी इतने बॉडी चेंजेस और हार्मोन चेंजेस होते हैं कि कभी कभी इसके कारण ये तकलीफ हो सकती है। दूसरी बात, कुछ प्रॉब्लम्स महिलाओं में पहले रहते हैं लेकिन प्रेगनेंसी के समय तपास करने से पता चलता है कि उनको स्टोन है या दूसरी कुछ तकलीफ है। सो ये भी कारण से कभी कभी प्रॉब्लम बढ़ते हैं, बट बेसिकली दिस आर बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस कि उनको ये तकलीफें होती है। अगर इन्फेक्शन

0: होता है तो उस समय सावधानी रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली प्रेगनेंसी में
1: जी।
0: और स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन ट्रीट करना बहुत महत्व का हो जाता है
1: जी।
0: क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि उसके असर बच्चों पे न पड़े और उस समय दवाइयाँ ऐसे यूज़ करनी पड़ती कि जिसके आड़ असर उस मासूम बच्चा जो डेवलप हो रहा है उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए।
1: जी जी। और थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था कि इन्फेक्शन का एक बड़ा कारण है रिलेशन आपस में, तो इन्फेक्शन के दौरान क्या ये स्थिति ठीक रहती है, तो ये भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: वो अवॉइड करना ज़रूरी है और अगर बार बार ऐसे इन्फेक्शन हो रहा है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों की जांच करनी ज़रूरी है
1: जी।
0: क्योंकि कभी कभी कहाँ से वो ट्रांसमिट होता है वो बताना मुश्किल हो जाता है
1: जी।
0: सो ये महत्व की बात है कि दोनों की व्यवस्थित जांच होनी चाहिए और उस हिसाब से ट्रीटमेंट से ये प्रॉब्लम काफी सॉल्व हो जाते हैं
1: जी। इस बारे में बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं कई बार आजकल, जब न्यू कपल खास तौर से, और हमने सुना है कई कपल एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं कि ये तुम्हारी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, वो तुम्हारी वजह से।
0: सो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ये सही नहीं है
1: जी।
0: हर समय पार्टनर्स के कारण ही इन्फेक्शन होता है वैसा नहीं है
1: जी।
0: हर पेशेंट वेदर इज मैन और वुमन उनके खुद के कारणों से भी इन्फेक्शन हो सकता है
1: जी।
0: दूसरी बात है हर इन्फेक्शन कंटेजियस है ऐसा भी नहीं है
1: जी।
0: सो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि मेडिकल एडवाइस लेके ये जानना जरूरी है कि किस कारण से इन्फेक्शन हो रहा है और किसी को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है
1: जी बिल्कुल।
0: अल्टीमेटली सेक्सुअल लाइफ आल्सो इज वेरी इम्पोर्टेंट एंड हेल्दी हैप्पी सेक्सुअल लाइफ इज इम्पोर्टेंट सो कभी कभी इस सोच से इस डाउट से इट इफेक्ट्स द सेक्सुअल एक्टिविटी आल्सो
1: बिल्कुल
0: ये भी होना नहीं चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली यंग कपल या फॉर एनीबडी हेल्दी सेक्सुअल लाइफ इज इम्पोर्टेंट सो ये बेहतर है कि आप डॉक्टर से बात करें अगर जरूरत तो व्यवस्थित जांच करें और एवरीथिंग इज ऑल राइट उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आप ले सकते हैं उसके बारे में जरूर हम एडवाइस दे सकते हैं
1: जी बिल्कुल। हमारा ये प्रोग्राम पूरे देश में जाता है और बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर ऐसी स्थितियाँ बहुत सारी आती हैं, तो आपके इस बात से हमारे वो श्रोता प्रभावित होंगे और जब कभी ऐसी स्थिति आती है इन्फेक्शन जैसी नौबत आती है तो डॉक्टर की शरण लें और जांच जरूर करवाएं।
0: और पार्टनर को एक दूसरे से भी कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: कुछ चीजें हम मान लेते हैं और उसके बारे में बात करना हम व्यवस्थित नहीं समझते हैं लेकिन इससे शर्म के मारे में कि ये बात हम कैसे करें लेकिन ये महत्व का है कि ऐसे कुछ रहा तो ये डाउट्स क्लियर करें और फिर मेडिकल एडवाइस ले ताकि अननेसेसरी इसके कारण रिलेशनशिप डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए
1: जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है और वो कॉमन हो रही है, वो है यूरिन लीकेज, कि यूरिन लीकेज होता है और इलाज के बावजूद नहीं ठीक होता है, तो इसका इलाज किस तरह से संभव है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को दीजिए।
0: जरूर। लीकेज के अलग अलग प्रकार रहते हैं, कुछ है जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, मतलब नॉर्मली लीकेज नहीं होता है लेकिन एक बार इच्छा हुई फिर कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है।
1: ओके।
0: ये कुछ जो जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं उसके कारण होता है और उसके कारण जैसे मैंने पहले बताया बेसिक इन्वेस्टिगेशन करके अगर यूरिनरी ट्रैक नॉर्मल है तो दवाइयों से और लाइफस्टाइल चेंजेस से उसे हम जरूर कंट्रोल कर सकते हैं
1: जी।
0: दूसरा जिसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं
1: Okay.
0: कि जहां पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस के कारण ये कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है ताकि जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है वो मसल्स वीक होने से यूरिन कंट्रोल जो होता है वो वीक हो जाता है, यूरिन लीक हो जाता है ज्यादा करके प्रेगनेंसी के बाद में ज्यादा करके वहां स्नायु पे कुछ और ऑपरेशन हुआ या कभी कभी एजिंग के हिसाब से ये सब मसल्स वीक होने से जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो चाहिए इतना प्रेशर से जब भी खांसी आती है या जोर से हंसना आता है वो यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कभी कभी एक्सरसाइजेस और फिर जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन करके वो जो स्नायु को कैसे टाइट करना या जो यूरिनरी पैसेज है उसका एंगल चेंज करना महत्व का हो जाता है ताकि एब्डोमिनल प्रेशर स्ट्रेट ट्रांसमिट होके यूरिन लीक ना हो जाए। सो ये चीजें पहले हम हमेशा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से कोशिश करते हैं, जरूरत पड़े

0: तो दवाएं से कोशिश करते हैं, और फिर ऑफ कोर्स जरूरत पड़ी तो इस प्रकार के सर्जिकल प्रोसीजर से वो रास्ता थोड़ा टाइट करके, ताकि वो प्रेशर कंट्रोल करने में इजी पड़ता है और लीकेज कम हो जाता है।
1: जी दोस्तों, सेहत नामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट उमेश ओझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग। इसका दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तुते कार्यक्रम रंग तरंग,
1: रंग तरंग।
0: रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आपकी आशा, इस एल्बम का गाना आशा भोसले की आवाज में, बोल मजरू सुल्तानपुरी के।

रंग तरंग कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति। हरिहरन और लेस्ली लेविस की आवाजें, लेस्ली लेविस और मुनव्वर मासूम का लिखा हुआ गाना, लेस्ली लेविस और हरिहरन का संगीत एल्बम आत्मा।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में ये गजल, शब्दकार साहिर होशियारपुरी, संगीत जगजीत सिंह का, एल्बम दिल भी तू जान भी तू।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग। अलीशाज लव नोट्स इस एल्बम का गाना, अलीशा की आवाज, नितिन रायकवार के बोल, संगीत है संदीप चौटा का।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: चांदनी इस एल्बम का गाना वनीता सिंह की आवाज, देव कोहली के बोल, संगीत उत्तम सिंह का।

इत्तफाकन प्यार, ये एल्बम का नाम है। हैरी आनंद की आवाज, श्याम बलकर का लिखा हुआ गाना, संगीत हैरी आनंद का।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आज के रंग तरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश। तलत अजीज की आवाज, शब्दकार आनंद बख्शी, संगीत समीर का, एल्बम खूबसूरत।

अभी आप सेवा मुंबई के कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। हमारे केंद्र से लीजिए, सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, उमंग कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: आज के युग में हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन जी का।
2: बड़ा बम चौक मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय और साथ साथ बेबी किट्टू।
3: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने और अर्चना ताई गोंडाने।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओ आपके संदेशों के लिए। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। आशा है आपको पिछली जानकारियाँ अवश्य पसंद आई होंगी। हमने बात की थी
2: पेड़ पौधों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में और उनके बारे में कई रोचक बातों को जाना था। अजीत जी, अब ये भी जानने की यात्रा में आगे चलते हैं, तो क्यों ना आज बात की जाए किताबों की।
3: विमलेश जी, आपने तो सचमुच मेरे मुंह की बात ही छीन ली। यही तो मैं भी कहने वाला था
2: जी।
3: मुझे एक बेहद प्रसिद्ध कविता की पंक्तियाँ याद आ रही है।
2: तो फिर देर कैसी, सुनाइए ना कविता।
3: हाँ, कविता इस प्रकार से है, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की।
2: क्या बात है, इसको आगे मैं कहती हूँ। आज की, कल की, एक एक पल की, ये सफदर हाशमी जी की प्रसिद्ध कविता है। तो श्रोताओ, आज करते हैं बात किताबों के रोचक इतिहास की।
3: जी हाँ श्रोताओ, किताबों का इतिहास या पुस्तकों का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही रोचक है
2: जी।
3: आज जो हम सुंदर रंग बिरंगी पुस्तकें हाथ में लेते हैं ना, इसके पीछे लगभग 5000 वर्षों की लंबी यात्रा है। तो विमलेश जी, कहाँ से करें शुरुआत?
2: अजीत जी, इसके लिए हमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलना होगा। ये तो बता दें श्रोताओं को कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी।
3: जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में विकसित हुई थी। श्रोताओं को ये जानकर आश्चर्य होगा

0: कि तब पुस्तकें मेसोपोटामिया में मिट्टी की थी।
1: मिट्टी की और वो भी पुस्तकें, ये तो बड़ी विचित्र बात है।
0: जी बात तो विचित्र है ही। श्रोताओं आपको बता दें कि दुनिया की पहली पुस्तकें वास्तव में आज की तरह की पुस्तकें नहीं थी, बल्कि वे मिट्टी की तख्तियां थीं।
1: जी
0: तो विमलेश जी अब आपकी बारी है ये बताने की कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों को क्या कहते थे और वे मिट्टी की पट्टियों पर लिखते कैसे थे।
1: जी मेसोपोटामिया के निवासियों को सुमेरी या सुमेरियन कहते थे। ये लोग मिट्टी को गीला करके उसे आज की स्लेट की तरह एक आकार देते थे और फिर उस पर धातु की कील या हम कह सकते हैं नुकीली कलम से लिखते थे।
0: जी
1: इसलिए मिट्टी की पट्टियों पर लिखे वर्णों को पुरातत्वविदों ने कीलाक्षर भी कहा है।
0: जी कीलाक्षर यानी कील से लिखे हुए अक्षर।
1: जी
0: ये तो सचमुच बड़ा रोचक होता जा रहा है। लेकिन विमलेश जी एक प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि क्या ये मिट्टी की पट्टियाँ टिकाऊ होती थी।
1: बिल्कुल होती थी। पहले उन लिखी गई उन पट्टियों को वो धूप में सुखाते थे, फिर उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। ऐसी मिट्टी की पट्टियाँ हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह जाती थीं।
0: श्रोताओं जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपको 300 पृष्ठों की एक पुस्तक पढ़नी हो
1: जी।
0: और हर एक पृष्ठ एक भारी मिट्टी की पट्टिया हो तो
1: ऐसी कल्पना करना ही हमें अपने आप में आज से 5000 वर्ष के पूर्व के काल में ले चलता है। अजीत जी ये जानना भी बहुत रोचक रहेगा कि सुमेरी लोग इन मिट्टी की पट्टियाओं या क्ले टैबलेट्स पर लिखते क्या थे, जरा श्रोताओं को भी तो बता दें।
0: जी विमलेश जी ये जानना तो सच में बहुत ही रोचक होगा क्योंकि इससे हमें उनकी सभ्यता और इतिहास की बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मजेदार बात यह है कि उनके द्वारा लिखी गई हजारों मिट्टी की तख्तियाँ आज भी पढ़ी जा सकती हैं।
1: जी
0: इनमें वे लिखते थे व्यापार का हिसाब किताब, राजकीय अभिलेख, सुमेरी कानून और संहिताएं,
1: युद्धों और विजयों का विवरण और राजाओं की उपलब्धियां, कहानियां और कविताएं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे जिनमें एपिक ऑफ गिलगामेश बहुत प्रसिद्ध है।
0: श्रोताओं आपको बता दें कि कीलाक्षरों को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है और 19वीं शताब्दी में ही विद्वानों ने कीलाक्षरों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। श्रोताओं आपको बता दें कि दुनिया भर के संग्रहालयों में ये कीलाक्षर प्रतियां सुरक्षित हैं और वे आज भी हमें आज से 5000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और दैनिक जीवन की जानकारी देती हैं।
1: जी तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की जानकारी और अब सुनिए आज का प्रश्न जिसका उत्तर छिपा हुआ है आज की ही जानकारी में। प्रश्न है,
0: आज का प्रश्न है कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है।
0: तो हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
0: तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है अरावली की कहानी।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोकने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत डॉक्टर सुचिता। हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें।
4: वाह बहुत अच्छा सवाल। देखिए पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
5: यस मैम।
4: आहा क्या बात है
5: मैम।
4: हाँ बेटी,
5: आपने

0: आग के पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
1: बिल्कुल कहा।
0: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं। क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
2: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते? पहाड़ी कहते हैं।
0: जी, पहाड़ी।
3: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
2: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
4: यस मैम।
2: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
4: अच्छा।
2: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
4: अच्छा।
2: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
4: अच्छा, मैंने भी देखा है।
3: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
5: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
2: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
6: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
2: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
4: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
3: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
2: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
5: जी मैम,
0: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
3: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
2: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गयी।
6: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
2: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
4: सॉइल इरोजन,
2: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं जो राजस्थान में ही है।
3: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
2: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों, जानना चाहोगे ना?
4: जी मैम।
0: यस मैम।
2: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
0: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
2: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
6: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
2: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
3: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में।

0: लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
1: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
0: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
1: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
0: ओह,
1: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
0: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
0: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
0: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है जंगल के साथी।
5: इस कार्यक्रम में पशु पक्षियों की भूमिका के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि एकता में ही बल है, बिना किसी आपसी मेलजोल के हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार जंगल के पशु पक्षियों ने मिलजुल कर असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया।
4: जंगल के साथी।
6: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
7: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है।

0: सुनो, ध्यान लगा कर सुनो सुनो, कान लगा कर सुनो सुनो, ध्यान लगा कर सुनो सुनो।
1: दादी माँ आप सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन।
2: क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
2: शाबाश,
0: लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
3: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता।
2: क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
3: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने।

0: हमको मारा है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
2: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: ला ला ला।
1: दादी माँ, दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
3: राम जी, अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
1: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
3: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
1: बादल देखे, फिर दादी माँ?
3: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
1: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
3: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
0: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
1: दादी माँ, दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
3: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी?
1: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
3: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
3: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
1: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम। मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम। खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
3: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
5: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता,
6: जगबंधु,
5: चेतना
6: और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: उमंग उमंग उमंग उमंग
1: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम भागा चैनल से बोल रहे हैं एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब अगले कार्यक्रमों के लिए जोड़ते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

लता मंगेशकर की आवाज़ में कैफी आज़मी का लिखा हुआ ये गाना आपने सुना, संगीत मदन मोहन का, फिल्म का नाम हीर रांझा। और अब आपको सुनवाते हैं हंसते जख्म, इस फिल्म का गाना, एक बार फिर आवाज़ लता मंगेशकर की, बोल कैफी आज़मी के।

संगीतकार मदन मोहन के संगीत से सजे गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। लैला मजनू फिल्म का गाना आइए अब सुनते हैं, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में सहे लुधियानवी के बोल हैं।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अदालत फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी, आशा भोंसले और साथियों की आवाजों में गीतकार राजेंद्र कृष्णा।

संगीतकार मदन मोहन के संगीत बत्ते की ये गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, फिल्म का नाम भाई भाई।

0: अभी आप विविध सेवा मुंबई के कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। एक बजने को है श्रोता प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। देश का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस चार दिन के कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में वस्त्र, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। ये निर्माताओं, निर्यातकों, वैश्विक खरीदारों, कारीगरों, स्टार्टअप्स और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को एक मंच पर लाएगा। इस आयोजन में 7,000 से अधिक खरीदारों और 20,000 से अधिक वस्त्र उत्पादों की भागीदारी रहेगी। साथ ही इसमें 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज कोटपूतली बहरोड जिले के पावटा दौरे पर रहेंगे। वे प्रागपुरा नगर पालिका में आयोजित शहरी सेवा शिविर में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश के पीएम श्री विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और आधारभूत सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए आज जयपुर में राज्यस्तरीय वेबिनार आयोजित की जा रही है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में हो रहा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हो रहे इस वेबिनार में प्रदेश के करीब 550 पीएम श्री विद्यालयों के संस्था प्रधान शामिल हो रहे हैं। वेबिनार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, विद्यालयों में नवाचार, सह शैक्षणिक गतिविधियों और आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा की जा रही है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार से उपलब्ध कराए जा रहे फंड के प्रभावी उपयोग पर भी चर्चा हो रही है। कार्यक्रम में स्कूली शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। राजस्थानी लोक संगीत और संस्कृति को नई पहचान दिलाने वाले और राजस्थान रत्न से सम्मानित केसरी चंद मालू का कल देर रात निधन हो गया। उन्होंने राज्य की समृद्ध लोक परंपराओं, गीत संगीत और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में विशेष योगदान दिया था। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बागड़े ने कहा कि उनका निधन राजस्थान की लोक संस्कृति और संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपने शोक संदेश में कहा कि लोक संगीत के क्षेत्र में उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने शोकाकुल परिजनों और उनके शुभचिंतकों को ये असीम दुख सहन करने की शक्ति देने की कामना की। झुंझुनू जिले में किसान अब कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली बागवानी और ड्रिप सिंचाई तकनीक अपना रहे हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और पर ड्रॉप मोर क्रॉप अभियान का प्रभाव जिले में दिखाई देने लगा है। केसरीपुरा गांव के प्रगतिशील किसान ने ड्रिप सिंचाई के माध्यम से करीब 90 से 100 बीघा क्षेत्र में बेर, किन्नू, मौसमी आम, बेल और चीकू का बगीचा विकसित किया।

0: उनका कहना है कि इस तकनीक से पानी की बचत होती है, लागत घटती है और उत्पादन बढ़ता है। उनका परिवार सालाना करीब 50 लाख रुपए का कृषि कारोबार कर रहा है। नीट यूजी पुनः परीक्षा 2026 के अभ्यर्थी रिकॉर्डेड रिस्पांस शीट पर अपनी आपत्तियां कल सुबह 11 बजे तक दर्ज करा सकते हैं। एनटीए ने कल ये शीट जारी की थी। अभ्यर्थी प्रति प्रश्न 200 रुपए का शुल्क देकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। अभ्यर्थियों को एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन के बाद टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पूरा कर रिस्पांस शीट डाउनलोड करनी होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2025 के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र की लोकेशन के लिए केवल गूगल मैप पर निर्भर नहीं रहने की सलाह दी है। आयोग ने कहा है कि तकनीकी कारणों से कुछ परीक्षा केंद्रों की लोकेशन गूगल मैप पर स्पष्ट नहीं हो सकती, इसलिए अभ्यर्थी परीक्षा के दिन से पहले ही ई प्रवेश पत्र में दिए गए पते के अनुसार परीक्षा केंद्र का भौतिक सत्यापन कर लें। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.2 MHz पर। अब अगले कार्यक्रम विद्यार्थी राष्ट्रीय सेवा मुंबई से।

शम्मी कपूर और बीना रॉय पर फिल्माया गया ये गाना, क्या बात है। आप चाहे कितने ही परेशान हो, काम का कितना भी बोझ हो, या किसी और बात का मन में कोई उदासी हो, कोई टेंशन हो, कुछ इस तरह के गाने जब हम सुन लेते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम किस बात से परेशान थे। यही तो संगीत का जादू होता है। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी कि सुरों की अनमोल साधना, लाइव ऑर्केस्ट्रा का वो सुनहरा दौर, आज जहां कंप्यूटर से संगीत बनता है, वहीं पुराने दौर का फिल्मी संगीत एक अद्भुत साधना था। 1950 से 80 के दशक में एक एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो में 60 से 150 असली वाद्य यंत्र, वादक और गायक एक साथ लाइव बैठते थे। वहां कोई रीटेक या एडिटिंग की गुंजाइश नहीं होती थी। अगर आखिर सेकेंड पर भी एक वायलिन गलत बजा तो पूरा गाना शुरू से रिकॉर्ड करना पड़ता था। जब इतने सारे ओरिजिनल वाद्य एक साथ गूंजते थे तो संगीत में एक जीवंत इंसानी रूह समा जाती थी। यही कारण है कि विविध भारती पर बजने वाले ये सदाबहार तराने आज भी सीधे हमारे दिल को छू जाते हैं। एक साथी की ये बात है कि संगीत सिर्फ एक कला नहीं बल्कि दिल की धड़कन और रूह की एक मुकम्मल दास्तान है। गजल की तड़प, कव्वाली का जुनून और शास्त्रीय सुरों की सादगी मिलकर एक ऐसा जादुई एहसास जगाते हैं जहां वक्त ठहर सा जाता है। जब रात के सन्नाटे में भारतीय साजों की कोमल धुनें कानों में घुलती है तो गुजरी हुई मोहब्बत और सावन की वो पहली बरसात यादों में समा जाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आरती फिल्म का गाना आपके लिए लेकर आए हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ है। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और ये गाना प्रदीप कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया है। एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं संगीत के बारे में कि कोई ऐसी आप कोई घटना अगर आपको याद आ रही हो जब आप बहुत परेशान थे और आपको लग रहा था कि ये समय, ये परिस्थितियाँ कैसे कटेंगी, कैसे बदलेंगी, क्या किया जाएगा, लेकिन कोई गुनगुना रहा था एक मधुर संगीत या रेडियो पर कोई ऐसा मधुर गीत बज रहा था और आप भूल गए कि आपको क्या करना है या किस वजह से आप परेशान हैं। ऐसी कोई परिस्थिति आपको याद आती है तो वो आप हमें बता सकते हैं, या कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती है जब अनायास ही आपके मुंह से एक अच्छा सा कोई गीत आप गुनगुनाने लगते हैं या उस गीत के शब्द आपके मुंह से निकल पड़ते हैं। इस बात का जिक्र आप हमसे कर सकते हैं।

संगीत की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। कभी किसी गजल में अपना अक्स मिल जाता है, कभी किसी धुन में बचपन, और कभी कोई पुराना गीत बरसों पुरानी याद को फिर से मुस्कुरा देता है। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिख दी है। और एक साथी लिख रहे हैं कि संगीत हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, जो बच्चों के लिए माँ की लोरी और देवी देवताओं के लिए भजन और शादी विवाह जैसे अवसर पर संगीत संध्या में हम गीत संगीत के माध्यम से इन अवसर को और भी रंगीन बनाते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि संगीत कला का विशुद्धतय रूप है, इसलिए वह सौंदर्य को सबसे उच्चतम रूप में प्रकट करता है। सावन के भीगे दिन हो या गर्मी की जलती दोपहर, एक संगीत ही है जो दिल को नरम नरम एहसास करा के जीवन में रस घोल देता है। जब भी हकीकत के गर्म थपेड़ों से ऊब होने लगती है, जिंदगी संगीत में अपना सुकून खोज लेती है। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन आज भी गीत सुनना सबसे सुखद और सबसे मनोरम लगता है। सांसों की लय और धड़कन की ताल पर जब तक जिंदगी तराना सुनाती रहेगी, गीतों के सुर मन के तार छेड़ते रहेंगे, जब तक ये पूरी कायनात सुरीली बनी रहेगी। धन्यवाद आपका। चलिए, चित्रलेखा फिल्म का गाना, लता जी की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, रोशन का संगीत।

क्या कहना, ऐसे गीत जब हम सुनते हैं तो उलझा हुआ मन भी सुलझ जाता है अनायासी, इसका हमें आभास भी नहीं होता और ऐसा हो जाता है। एक हमारे साथी की ये बात है कि मुझे पुराने गाने इतने मधुर लगते हैं और संगीत इतना मीठा कि पूछो मत, मैं ऐसी खो जाती हूँ कि आगे पीछे की मुझे कोई खबर ही नहीं रहती। हाँ, संगीत के प्रति दीवानगी तो होती है, लेकिन ऐसी भी दीवानगी नहीं कि कुछ खबर ना हो, उसका भी आप ध्यान रखिए। एक साथी हमारी लिख रही है कि उम्र छोटी थी, शादी करके दूर चली आई, सारा भरा पूरा संयुक्त परिवार साथ रहता था, पर मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती थी। उस पर मेरा जन्मदिन पड़ा और मुझे किसी ने भी विश नहीं किया, मैं तो बहुत दुखी हुई और चुपचाप रोती रही। उस समय तो मुझे लगा कि कोई बहुत ही बड़ा गम मिला है मुझे, लेकिन रेडियो पर गाना बज रहा था समझौता गमों से कर लो, और तब मन को चैन आया। एक साथी की ये बात कि जब भी परेशानी होती तो भगवान के मंदिर में जो भजन गा रहे होते हैं या भजन बज रहे होते हैं तो बहुत सुकून मिलता है, वहीं रुककर हमारा भी भजन गाने का मन बहुत करता है। और एक साथी लिखते हैं कि हमारे जीवन में संगीत हर क्षण व्याप्त है, यहाँ तक कि हम रोते भी हैं तो सुरों में रोते हैं और गम हमसे दूर भाग जाता है। एक साथी की ये बात की है कि हमारी कॉलोनी में एक बांसुरी वाले भैया बांसुरी बेचने निकलते हैं, उनकी बांसुरी सुनकर हम तो अपना काम वाम छोड़कर बस सुनने लगते हैं जब तक वो दूर नहीं चले जाते। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि संगीत हमारे जीवन का एक हिस्सा है, बचपन में माँ लोरी सुनाती है, स्कूल में हम प्रार्थना करते हैं, कविताएं ऊंचे स्वर में गाकर आनंद लेते हैं, जवानी में हम प्यार भरे गीत सुनते हैं, रेडियो के साथ गाते हैं, फिर रियाज न होने के कारण आवाज में संगीत नहीं रहता। मराठी में इसे कंठ फूटने कहते हैं, मतलब आवाज में वो सुर वो लय तान नहीं होती, फिर भी हम मन ही मन कुछ गाकर अपना दिल बहलाते हैं, बुढ़ापे में भी कुछ यादगार गीत गाते हैं, भजन करते हैं, इस तरह संगीत हमारे जीवन का हिस्सा बना रहता है। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का। और अब बावरे नैन इस फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं, गीता दत्त और मुकेश की आवाज़ें हैं इसमें, और संगीत आपको पता ही है रोशन का, राज कपूर और विजय लक्ष्मी पर फिल्माया गया ये गाना है। लिखा किसने है ये आप हमें बताइए।

बावरे नैन फिल्म का ये गीत आपने सुना, केदार शर्मा का लिखा हुआ ये गाना। एक साथी ने लिखा है कि मंजू जी, घर में तो प्रायः ऐसा होता ही रहता है कि कभी किसी बात पर किसी से बहस छिड़ गई या छोटा मोटा झगड़ा लड़ाई यूं ही किसी छोटी सी बात पर हो जाता है, तो फिर उस स्थान से हटकर दूसरे कमरे में जाकर शांति से बैठकर गीत सुनने लगते हैं। रेडियो पर विविध भारती तो नित्य प्रतिदिन बजता ही रहता है, चाहे वो बजने वाला गीत कैसे भी मूड का हो, पर अपने बिगड़े हुए मूड को बदल ही देता। यही तो होता है संगीत का जादू। एक साथी की ये बात है कि संगीत मन की दवा है, ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि भावनाओं को संतुलित करने और मन को शांति देने का माध्यम भी है। जब मन उदास होता है, जब मधुर संगीत चेहरे पर मुस्कान ले आता है और तनाव को कम कर देता है। संगीत भाषा और सीमाओं से परे जाकर सीधे हृदय से संवाद करता है। भजन, गजल, लोकगीत या शास्त्रीय संगीत, हर स्वर में मन को सुकून देने की अद्भुत शक्ति होती है। यही कारण है कि संगीत को आत्मा की भाषा और मन की सबसे प्रभावी दवा कहा जाता है। एक साथी ये बात लिखते हैं कि मानव ने रचाया संगीत तो

ठीक है, पर कभी सोचा है कुदरत के संगीत के बारे में? भंवरों की पंख का गुंजन, हवा से लहराते पत्तों का गुंजन, अरे सागर की गहरों का संगीत, लहरों का संगीत, वो भी तो याद कीजिए। एक साथी की ये बात कि कई बार संगीत मन को असीम सुकून दे जाता है। मेरे पापा जो आज डिमेंशिया से ग्रस्त है, उन्हें पुराने हिंदी गीत बेहद पसंद है। जब भी वे रेडियो या टीवी पर ये गीत सुनते हैं तो उनके चेहरे पर एक अनोखी खुशी आ जाती है। उनका सबसे पसंदीदा गाना है जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के लिए, ये बात इन्होंने लिखी है। और एक साथी ने ये बात लिखी कि मंजू जी, मैंने तो अपना पूरा जीवन ही विविध भारती पर संगीत सुनते हुए गुजार दिया है। कॉलेज के समय रेडियो पर और नौकरी में कंप्यूटर और रिटायरमेंट के बाद भी वापस रेडियो पर, कुछ भी हो संगीत जीवन की एक ऐसी धारा है जिसको मैं छोड़कर नहीं रह सकता। एक साथी ने ये बात लिखी है कि ये बात उन दिनों की है जब मेरी स्वर्गीय माँ बहुत बीमार थी और बिस्तर पर थी। मैं उनके पास बैठा रहता था जब विविध भारती को सुना करते तब विविध भारती को सुना करते थे। उन पर चलने वाला मधुर संगीत जो माँ की पहली पसंद थी, उन्हें बहुत अच्छा लगता था और उनके चेहरे का वह सुकून देखकर मैं भी कुछ राहत महसूस करता था। सच, संगीत बीमार व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान ला देता है। चलिए इस मुस्कान को थोड़ा और हम बड़ा करते हैं। मल्हार फिल्म का गाना बड़े अरमानों से, ये गाना लता जी और मुकेश जी की आवाज़ें हैं इसमें। रोशन का संगीत है ये तो आपको पता ही है, और गीतकार कौन है ये आपको बताना है।

मल्हार फिल्म का गाना आपने सुना, इंदिवर का लिखा हुआ ये गाना है। एक साथी हमारे लिखते हैं कि गरजते बरसते जब सावन आता है तब बारिश की बूंदें भी एक ताल में बरसती है, जिससे एक अनोखा संगीत पैदा होता है जो प्रकृति हमारे लिए लेकर आती है। ये संगीत हमारे मन के साथ साथ धरती की प्यास भी बुझाता है। इसके प्रभाव से धरती झूमते गाते हुए अपना श्रृंगार करते हुए हरी भरी हो जाती है। एक साथी लिख रहे हैं कि मुझे संगीत की रुचि तब से हुई जब हमारे शहर छत्रपति संभाजी नगर में एक बगीचे में एक बड़ा सा रेडियो लगता था। उस पर श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग में बिना का गीतमाला चल रही थी, तब हम वहां सुनने जाया करते थे और यहीं से संगीत सुनने की आदत हमें लग गई। और एक साथी की ये बात कि खाना न मिले चलेगा पर गीत जरूर होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात गीतों के साथ साथ विविध भारती के साथ काम करने में भी उत्साह बना रहता है। संगीत के बिना तो हमारे हाथ चलते ही नहीं है, और संगीत हमारा सबसे प्यारा सा साथी है जो बस हमें खुशी ही देता है, हमसे कुछ नहीं मांगता। और एक साथी ये भी लिखते हैं कि संगीत तो ऐसी विधा है, विद्या है जो हंसा देती है, रुला भी देती है, यहाँ तक जख्मों को भर भी देती है। 2017 की बात है जब मेरा बचपन का दोस्त शांति यात्रा में चला गया। उसके साथ हमारा अच्छा घरूंबा है। उसके जाने के बाद मैं यूं ही बैठा हुआ था, तभी एक गाना रेडियो पर बजा, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जिसे सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। आज भी उनकी याद, उनकी दोनों बच्चियां मुझसे दूर नहीं है और वही प्रेम है जो बचपन में था। और एक साथी ने ये बात लिखी कि बात तब की है जब मैं अपना ग्रेजुएशन बीएससी कंप्लीट कर चुका था। सगाई और शादी से पहले की बात है, मुझे निर्णय लेना था कि कौन सा करियर चुनूं, कंफ्यूज था। उस दिन का समय था, मैं लेटा हुआ था, रेडियो पर विविध भारती मुंबई पर गाने बज रहे थे, तभी गाइड फिल्म का गीत बजा, आज फिर जीने की तमन्ना है। ये गीत सुनकर मेरे में उमंग सी जागी और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे जॉब करना है। और इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने लिखी है। एक साथी की, जब मेरी शादी हुई तो पापा ने मुझे बरसात की रात और ताजमहल फिल्म के गानों की कैसेट ला के दी, तो मैं साथ ले आई और बहुत सुनती थी, और आज भी वो गाने मैंने संभाल कर रखे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए ताजमहल फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, साहिल लुधियानवी के बोल।

संगीत एक अंतहीन समंदर है जो कभी लोक गीतों की मिट्टी की खुशबू में महकता है तो कभी सूफी कलामों की रूहानी तान में गूंजता है। हर दिल की धड़कन का अपना एक सुर होता है और यही वजह है कि उदास शामों से लेकर जश्न की रातों तक संगीत हमारे वजूद का हिस्सा बन जाता है। धुनों का ये जादू जब सर चढ़कर बोलता है तो इंसानी जज्बात दीवानगी की हदें पार कर जाते हैं, चैन खो जाता है और बस सुरों के साए में सुकून मिलता है। जबकि किसी रचना में बांसुरी की सुरीली गूंज और सितार की झनकार घुली हो और उसके बोल सीधे रूह को छूते हों तो वह संगीत सदाबहार बन जाता है। ये एक बात हमारे साथी ने लिखी है और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि संगीत प्रेमी के लिए संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, वो सांस की तरह होता है। जब दुनिया समझ नहीं पाती तब एक राग समझ लेता है। खुशी में सुर ताल नचाते भी हैं और दर्द में वही सुर कंधा बन जाते हैं। नींद न आए तो लोरी बन जाता है और टूट जाए तो दिल को मरहम का भी काम करता है। संगीत प्रेमी के लिए हर सुबह एक नया आलाप और हर रात एक अधूरी बंदिश। वो भीड़ में अकेला होकर भी संगीत के साथ कभी अकेला नहीं पड़ता। शहर में हो या खेत खलिहान में, काम के बीच में हो या फुर्सत के पलों में, कहीं ना कहीं एक तान उसके भीतर बसती रहती है। किसी अपने की याद आए तो पुराना गाना जख्म कुरेद देता है और वही गाना अगले पल जीने की वजह भी बन जाता है। हार के बाद हौसला चाहिए तो संगीत हौसला बनता है और जीत के बाद जश्न चाहिए तो संगीत जश्न बन जाता है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बातें आपने लिखी है। और चलिए इसी के साथ एक और खूबसूरत गाना नौबहार, इस फिल्म से लता जी की आवाज़।

संगीत का प्रभाव इतना प्रभावी होता है कि इंसान तो झूमते ही हैं, परंतु रिसर्च में ये देखा गया है कि पेड़ पौधे भी संगीत के कारण झूमते हैं। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि संगीत मानव जीवन का अभिन्न अंग है, जो भावना व्यक्त करने, मानसिक तनाव दूर करने और आत्मा को सुकून प्रदान करने वाला

सबसे सशक्त माध्यम है, जो सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करता, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाला साबित होता है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आसपास होता है, वो देश की सुरीली धड़कन विविध भारती ही होती है, जिसे सुनते हुए दिल को इतना सुकून मिलता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। ये बातें हमारे साथियों ने लिख के भेजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक साथी की ये बात कि हिंदी सिनेमा में कव्वाली को लोकप्रिय बनाने और इसका शानदार तरीके से फिल्मीकरण करने के लिए महान संगीतकार रोशन लाल नागरथ को कव्वाली का उस्ताद या बादशाह कहा जाता है। उन्होंने बरसात की रात जैसी फिल्मों में अमर कव्वालियों की रचना रची है। एक साथी ने ये बात लिखी है कि सिनेमा में कव्वाली केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि भावनाओं, तड़प और संवाद को बयां करने का एक सशक्त माध्यम रही है। हिंदी फिल्मों में कव्वालियों का गुरु रोशन साहब ना तो कारवां की तलाश है, साहिल लुधियानवी द्वारा लिखी थे। रोशन द्वारा रचित यह कव्वाली कव्वाली के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई है। चलिए यही सुनते हैं बरसात की रात।

ये सुनते हुए हमारे एक साथी ने थोड़ा जोर देकर इस बात को कहा है कि ये कव्वाली पूरी बजने दीजिएगा, बीच में बंद मत कीजिएगा। बहुत अच्छा लगा आपकी ये बात जान करके। आप इतने अधिकार के साथ ये बात बोलते हैं, आपका प्यार है विविध भारती के प्रति, इसके लिए आप ऐसा कहते हैं, हमने आपको पूरी ये कव्वाली सुनवा दी है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि मुझे लगता है कि जब मैं खाना पकाते समय संगीत सुनती हूँ तब भोजन बहुत स्वादिष्ट बनता है और

कहता है कि ये कव्वाली पूरी बजने दीजिएगा, बीच में बंद मत कीजिएगा। बहुत अच्छा लगा आपकी ये बात जान करके, आप इतने अधिकार के साथ ये बात बोलते हैं, आपका प्यार है विविध भारती के प्रति इसके लिए आप ऐसा कहते हैं, हमने आपको पूरी ये कव्वाली सुनवा दी है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि मुझे लगता है कि जब मैं खाना पकाते समय संगीत सुनती हूँ तब भोजन बहुत स्वादिष्ट बनता है, और कब भोजन तैयार हो जाता है ये भी पता नहीं चलता। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि जिंदगी के सफर में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब इंसान खुद को बिल्कुल अकेला पाता है, ऐसे में संगीत एक ऐसे दोस्त की तरह आकर हाथ थाम लेता है, जब बिना कुछ पूछे बिना कोई निर्णय लिए बस साथ निभाता है। दोस्तों आपके बहुत सारे कमेंट्स हैं जो मैं पढ़ना भी चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि ज़्यादा अगर मैं पढ़ूंगी तो शायद गाना सुनने का वक्त कम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा विराम देते हुए एक गाना हम सुन लेते हैं। अजी बस शुक्रिया, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़।

एक साथी ने ये बात लिखी है कि ये बताना चाहूंगा कि हम सभी विविध भारती मुंबई के श्रोता बहुत ही खुशनसीब हैं कि संगीत के अनेक विधाओं जैसे कि गजल, कव्वाली, शास्त्रीय संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत और तो और युवाओं के लिए भी नए गीत संगीत के रस का आनंद वर्षों से रोजाना सुबह सवेरे से देर रात तक रेडियो के माध्यम से कर्णप्रिय संगीत का रसपान कर रहे हैं। महान संगीतकार रोशन जी को हम कैसे भूल सकते हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। चलिए, दिल ही तो है इस फिल्म का गाना मन्ना डे की आवाज है।

दिल ही तो है इस फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि गीत और संगीत मेरी अंतरात्मा में बसा हुआ है, आपके सबके मैसेज पढ़े तो ऐसा लगता है कि ये तो मेरे ही मन की आवाज़ है, सबके अंदर संगीत का वही स्थान है जो मेरे दिल में बसता है। और एक साथी ने ये बात और लिखी है, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, कौन सी बात पढ़ें कौन सी बात छोड़ दें ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पर एक गीत हम आपको सुनवाना चाहेंगे। पूरा गीत तो नहीं सुनवा पाएंगे, उस गाने की झलक आपको सुनवा देते हैं। नई उम्र की नई फसल इस फिल्म के गाने की ये झलक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सस में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से। और क्रिकेट में भारत आज शाम बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड
0: ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मुंबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने नाविकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तत्काल रोकने और संवाद तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए, ताकि क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जोल्फघरी ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फलस्तीन तथा इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी।

0: ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से पूरी तरह राहत मिलेगी। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और IT आधारित सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं को भी ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुई नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुँचा रहे हैं।
2: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
3: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने

0: उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है. सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म. फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है.
1: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है. नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया. श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया.
2: बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा. जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो घटिया राजनीति आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है, वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा. इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित, अरविंद केजरीवाल का खासम खास.
1: जम्मू कश्मीर में जम्मू की एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. ये वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है. यह आदेश पहलगाम आतंकी हमले के मामले में NIA द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के दो दिन बाद आया. सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है. पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है. पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नवयौवन दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
3: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है. मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारी और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं. साथ ही भीड़ और ट्रैफिक का व्यवस्थित ढंग से सुनियंत्रित किया जा रहा है ताकि दर्शन आसानी से और बिना किसी परेशानी की हो सके. नव यौवन दर्शन के साथ ही रथ यात्रा से पहले की रस्में पूरी हो रही है. अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होगी. प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @YIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं. ये आकाशवाणी है. मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है. कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है. हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है. फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा. ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा. भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा. मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा. भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है. श्रृंखला का दूसरा मैच कार्डिफ में बृहस्पतिवार और तीसरा तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा. अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर. भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की. कहा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है. भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया. फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया. भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा. भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू. बिहार और उड़ीसा में

0: आज मूसलाधार बारिश की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना गेटवे ऑफ इंडिया इस फिल्म से है। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, रजिंद्र कृष्ण के बोल, संगीत मदन मोहन का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अब आपको सुनवाते हैं जेलर फिल्म का गाना, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मिया आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
6: ये है नौ निहाल फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज।

आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना दस्तक फिल्म से मदन मोहन की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, मदन मोहन का संगीत। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: की सहेली सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
1: मेरा यानी चंचल वर्मा का
0: नमस्कार। कैसी हो चंचल?
1: एकदम अच्छी हूँ। और जब हम इस मंच पर आते हैं, अपने श्रोताओं से बातचीत करते हैं और हमारे आने से पहले ही बहुत सारे कमेंट्स आ चुके होते हैं, उनके संदेश आ चुके होते हैं, तो उनको पढ़कर हम और भी अच्छे
0: हो जाते हैं। बिल्कुल, हमें उनका इंतजार रहता है। और वैसे भी आजकल जो डिजिटल का समय है उसमें यही हो गया है कि हमें इंतजार रहता है अपने साथियों का, अपने मित्रों का, अपने दोस्तों का, अपने चाहने वालों के मैसेजेस का, और हम इंतजार करते रहते हैं।
1: बिल्कुल, ये डिजिटल ऐसा माध्यम है कि जिन्हें हम दूर दराज देख भी नहीं पाते, मिल भी नहीं पाते, उनसे संपर्क स्थापित हो पाता है।
0: हाँ, लेकिन डिजिटल की दुनिया में एक जो माइनस पॉइंट है वो क्या है बताओ?
1: यही कि बहुत दिनों तक कई बार हम किसी की सुध भी नहीं लेते हैं, सिर्फ उनसे बस फोन पर ही हालचाल पूछ रहे हैं, और बहुत उम्मीद से कोई इंसान जो हमसे मिलने बैठा है।
0: इसके अलावा डिजिटल जो दुनिया हमारी हो गई है ना, उसमें हम अपने घर वालों को भी कई बार भूल जाते हैं चंचल। और बाहर हमारे दोस्त होते हैं 5,000, 6,000, 10,000, 20,000, और हम खुश होते हैं, इतराते हैं कि हमारे इतने फेसबुक फ्रेंड्स हैं, इतने हमारे लोग जानकार हैं, लेकिन घर में हमारे ही कुछ लोग उपेक्षित कहीं बैठे होते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये जो एक संख्या है 10, 20, 50 हजार की, जिन्हें हम जानते भी नहीं, शायद हमें उनके नाम भी याद नहीं रहते, उनको लेके अगर हम इतरा रहे हैं, और घर के जब हम चार सदस्य बैठे हैं, पता लगा चारों लोग अपने ही मोबाइल में किसी ना किसी से संपर्क में लगे, और वहां आप ही संपर्क नहीं है। जो दूर दराज बैठे हैं उनसे तो हम संपर्क बना रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल हमारे साथ बैठा है उनसे संपर्क बिल्कुल कटा हुआ है।
0: बिल्कुल, वो हमारे अपने ही हैं, हमारे माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, या अन्य कोई रिश्तेदार जिन्हें हमसे बात करने की इच्छा होती हो और चाहते हो कि हम उनसे घुल मिलकर बात करें, लेकिन वो अपनी डिजिटल दुनिया में व्यस्त रहते हैं।
1: तो हमारे साथ ही इस बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार हैं, वो जरूर हमें भेजें, क्योंकि ये चीज रिश्तों की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। और बात सेहत की हुई है, हमारे शरीर की सेहत के लिए सबसे जरूरी चीज है हमारा खान पान।
0: हाँ, और सेहतमंद, वो भी सेहतमंद खाना होना। खाने को तो हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कुछ लोग दिन भर कहते हैं ना चरना, जिसे हम चरते रहते हैं ना, कभी ये कभी वो कभी ये, लेकिन हम क्या सेहतमंद खा रहे हैं, क्या हमारे शरीर को वो लग रहा है, हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है वो भोजन, इस पर भी बातचीत होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, हल्की फुल्की बातें में आज सेहतमंद भोजन को लेकर हम कुछ बात करेंगे। और आज मंगलवार का दिन है, एक उद्यमी महिला यानी कि बिजनेस में जिसने अपना नाम कमाया है, कुछ करके दिखाया है, एक ऐसी महिला की बात होती है। तो आज हम बात करेंगे उपासना टाकू के बारे में।
0: बिल्कुल, और एक और सेगमेंट है हमारा बहुत ही प्यारा जहां हम अपने श्रोताओं से ही उनके जवाब मांगते हैं और एक कि उनका इंतजार होता है,
1: और एक छोटी सी वाक्यांश जो होता है उसमें बहुत बड़ी बात कह दी जाती है, यानी कोई लोकोक्ति या मुहावरा।
0: मुंह में राम, बगल में छुरी।
1: तो बिल्कुल हमारे श्रोता समझ गए कि ये है आज का मुहावरा। लेकिन बातों का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्यों ना गीतों का सिलसिला भी शुरू करें और पहला गीत सुन ले।
0: बिल्कुल, सुनते हैं।

0: तो देखा चंचल कितनी प्यारी बात थी कि सलाम हजरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। तो मतलब हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे और हमसे भी कहना चाहते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारी दुनिया कहीं और ही होती है। हम डिजिटल दुनिया में व्यस्त होते हैं और अपने आसपास जो हम हमारे बीच प्यार बांटना चाहता है कहीं उसे इग्नोर करते चले जाते हैं।
1: और ये मोबाइल जो है ये एक ऐसी चीज हमारे हाथ में आ गई है जिसमें पूरी दुनिया सिमट कर रह गई है। तो उस दुनिया के संपर्क में तो है लेकिन हमारी असली दुनिया यानी हमारे जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं बस उस दुनिया से हम दूर होते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने और उसी पर आज हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल हो गए हैं हमारे रिश्ते भी।
1: तो टेक्नोलॉजी ने जहां एक तरफ मंदाकिनी जी हमें पूरी दुनिया से जोड़ के रखा हुआ है वहीं दूसरी तरफ कुछ करीबी लोगों से दूर भी कर रही है ये टेक्नोलॉजी। जितना हम बाहरी दुनिया से जुड़ते जा रहे हैं उतना ही अपने घर, अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ कटते भी जा रहे हैं। रिश्तेदार हैं, सहकर्मी हैं, दोस्त हैं और उनको मैसेज करके खुश होने के चक्कर में जो सामने बैठा है ना उनको हम नजरअंदाज कर देते हैं, जैसा आपने पहले ही बताया। तो डिजिटल होती है जो दुनिया है इसके फायदे अगर हैं तो ये ही नुकसान है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल। जब पहले जब हमें अगर हम दूर दराज की बातें करें अपने किसी दोस्त की, रिश्तेदार की या प्रियजन से बात करनी होती थी या हालचाल जानना होता था तो हम चिट्ठी लिखते थे, तार भेजते थे या फिर फोन पर बात किया करते थे या एसटीडी पर जाकर हम जो है वहाँ पर बात किया करते थे।
1: घंटों लंबी लाइन में लगा करते
0: थे ना, लगे रहते थे कि भैया हमारी बात करा दीजिए ना, हमें बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन अब ये काम केवल एक संदेश के जरिए कर लिया जाता है, मैसेज भेज दिया जाता है और मिलकर बात करना तो बहुत दूर की बात हो गई है। अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर, टैबलेट पर या अन्य गैजेट्स को हम हमेशा अपने साथ ही रखना पसंद करते हैं और यहाँ तक कि सोते समय भी हम इसे सिरहाने पर रखकर ही सोते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और जब हम बहुत ही फुर्सत में होते हैं तो परिवार के साथ समय बिताने की बजाय हम ऑनलाइन सर्चिंग में ज्यादा मशरूफ रहते हैं।
1: और मंदाकिनी जी यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है ना

0: कि हम अपने किसी काम में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ हमारे जो नजरें हैं या हमारे कान हैं वो मोबाइल पर ही बीच बीच में लगे हुए रहते हैं. और बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी हैं जब काम तो वो रसोई में कर रही हैं लेकिन उस वक्त भी उनका मोबाइल उनके पास में होता है और वहां भी नजरें उनकी मोबाइल पर होती हैं. और सुबह जब सबसे पहले हमारी आंख खुलती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
1: अपना मोबाइल चेक करते हैं भाई, किसी का मैसेज आया कि नहीं, मोबाइल इतना चुप चुप क्यों है ना, ऐसा लगता है
0: ऐसे हो गया कि इसके बिना हम बिल्कुल अधूरे हो गए, ऐसा लगने लगता है.
1: बिल्कुल सही कहा आपने. और कई बार पता है क्या होता है चंचल, जब हम अपना फोन घर भूल आते हैं ना, मोबाइल ऑफिस आते वक्त या कहीं जाते तो लगता है अरे सारी दुनिया तो हम भूल ही आए.
0: बिल्कुल
1: हमारा मूड ऑफ हो जाता है, ओहो मैं मोबाइल घर भूल आई, है ना. तो ये ऐसी स्थिति हो गई है हमारी. और डिजिटल होते जा रहे इन रिश्तों में जो आई कॉन्टेक्ट जैसे किसी से नजर मिलाकर बात करना जैसी स्थितियां जो है कम होती चली जा रही हैं. यानी एक ही कमरे में हम बहुत सारे लोग बैठे होते हैं घर के लेकिन हमारी सबकी नजरें अपने मोबाइल पर होती है या हम किसी तीसरे को मैसेज कर रहे होते हैं. मोबाइल ने हम सबको ऐसा जकड़ लिया है कि उस पर से नजरें हटाकर सामने वाले की तरफ देखकर हम बात ही नहीं कर पाते हैं. मतलब हम बात तो कर रहे होते हैं लेकिन नजर हमारी अपने मोबाइल पर होती है.
0: बिल्कुल शारीरिक रूप से हम वहाँ मौजूद हैं लेकिन हम उस वर्चुअल वर्ल्ड में घूम रहे होते हैं.
1: और हमारा पूरा ध्यान, बच्चे भी कई बार बोलते हैं घर में लेकिन ध्यान हमारा, हाँ बेटा बोलो क्या बात है, चलो पढ़ाई करो बहुत हो गया, ध्यान हमारा मोबाइल पर ही रहता है.
0: तो अब मेरा ध्यान इस तरफ है कि बातचीत को थोड़ा रोक कर गीत सुन ले.
1: चलिए

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
6: हम फिर से जुड़ गए हैं अपने श्रोताओं के साथ और हम बात कर रहे थे डिजिटल रिश्तों के बारे में।
7: हाँ, लेकिन चंचल, हमारे एक श्रोता ने बहुत ही प्यारा सा एक संदेश भेजा है। लिखते हैं कि आज फिर आप दोनों सखियों का संगम हो रहा है, जब सुहाने मौसम में इन दिनों मुंबई में चंचल सी हवा बहकर सभी को सम्मोहित कर रही है।
6: अच्छा?
7: उसी तरह उत्तराखंड में इन दिनों मंदाकिनी नदी भी लबालब पानी से बहकर सभी को सम्मोहित कर रही है। देखिए कितना अच्छा संगम है।
6: यहाँ हमारे नाम को इन्होंने प्रकृति के साथ जोड़कर जो संगम बनाया है, जो तारीफ की है या जो अपने भाव प्रकट किए हैं, ये हमें बड़े अच्छे लगे।
7: जी, ये तारीफ नहीं है, ये इनकी भावनाएं हैं।
6: हाँ।
7: जो उन्होंने काव्यात्मक तरीके से अपनी बात रखी है ना।
6: और अब बात करते हैं कि डिजिटल रिश्तों के बारे में हमारे श्रोता क्या कहते हैं। तो हमारे श्रोता का कहना है कि मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे, जेवो वेश तेवी वार्ता, यानी इन्होंने अपनी जो लोक भाषा है उसमें लिखकर बताया है। इसका मतलब है जो वेश धारण किया हो उनके अनुसार वार्ता यानी कहानी कहनी चाहिए। डिजिटल रिश्तों के लिए भी ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। आजकल डिजिटल युग चल रहा है तो उसके हिसाब से हमें भी खुद को ढालना पड़ेगा, उनके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि अब ये आधुनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। मोबाइल तकनीक ने मीलों की दूरियां मिटा दी हैं, दुनिया को मुट्ठी में यानी मोबाइल में समा लिया है। इतने बड़े फायदे के साथ इस बात का दुख भी है कि घर में पास बैठे हुए आमने सामने बातचीत का चरण कम होता जा रहा है, जिससे वास्तविक भावनात्मक जुड़ाव में कमी आ गई।
7: बिल्कुल, वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के समय में तकनीक ने दूरियों को मिटाकर हमें आपस में जोड़ तो दिया है, लेकिन इसने रिश्तों की गहराई और भावनात्मक जुड़ाव को भी काफी हद तक बदल दिया है। डिजिटल माध्यम से बातचीत आसान हुई है, लेकिन भावनाओं की गर्माहट और सामीप्य धीरे धीरे कम होने लगा है। डिजिटल होते रिश्तों के डिजिटल संचार परिवारों के लिए तो बहुत कारगर नहीं है। हाँ, अलग अलग शहरों या देशों में जो लोग रहते हैं उनके लिए कारगर हो गए हैं। वीडियो कॉल के जरिए, मैसेजेस के जरिए आप दूर रहकर भी लोगों से जुड़ सकते हैं, दैनिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। पारंपरिक चिट्ठियों की तुलना में डिजिटल मैसेजिंग बहुत तेज है और तेजी से संदेशों के कारण संवाद का तरीका भी बदल गया है। आजकल आप इमोजीज भेजकर, गिफ्ट्स भेजकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं। लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने और फोन के अत्यधिक इस्तेमाल से मानसिक थकावट भी हो गई है, चिड़चिड़ापन भी हो गया है। इसलिए हजारों दोस्त हैं हमारे ऑनलाइन, लेकिन वास्तविक दुनिया में हम बिल्कुल अकेले महसूस करते हैं।
6: बिल्कुल सही बात है। और एक जहां ये बहुत सारे रिश्तों की बात कर रहे थे, तो अगर आपके व्यावसायिक रिश्ते हैं तो वहां ये जो डिजिटल युग है ये बहुत काम का है, लेकिन परिवार से हमें ये दूर कर रहा है। वहीं एक अन्य संदेश में जो बात लिखी गई है वो कुछ इस तरह से है कि चैटिंग और वीडियो कॉल में आमने सामने बैठने वाली गर्माहट और गहराई गायब हो गई है। लोग अपनों के साथ मिलकर समय बिताने की बजाय फोन में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, जिसे फबिंग कहा जाता है। और सोशल मीडिया के परफेक्ट रिश्तों की दुनिया को देखकर लोग अपने वास्तविक जीवन से असंतुष्ट होने लगे हैं। डिजिटल अफेयर और प्राइवेसी, पार्टनर से छुपाकर सोशल मीडिया पर अंतरंग होना, ये विश्वास को भी कमजोर कर रहा है।
7: बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि डिजिटल होते रिश्ते डिजिटल लेनदेन के बाद अब ये भी कॉन्सेप्ट मुझे हजम नहीं हो रहा है, जो रूबरू मुलाकात में आमने सामने बैठकर बात करने का जो मजा है वो डिजिटल में कहां। तकनीक का उपयोग रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए किया जाए, न कि केवल औपचारिक या आभासी बनाकर छोड़ दिया जाए। डिजिटल माध्यम संपर्क बनाए रखने का साधन है, लेकिन

0: सच्चे रिश्तों की नींव प्रेम, विश्वास, सम्मान और आमने सामने के संवाद पर ही टिकी होती है।
1: इसीलिए ये सारी बातें हम कर रहे हैं आज, और हमारे एक श्रोता के अन्य संदेश को मैं पढ़कर सुना रही हूँ। आज के डिजिटल युग में रिश्तों की परिभाषा और जीने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। तकनीक ने हमें मीलों दूर बैठे लोगों से जोड़ दिया, लेकिन पास बैठे लोगों से भावनात्मक दूरियां बढ़ा दी हैं। मतलब ये एक बात बहुत सारे श्रोताओं ने हमें लिखी है,
0: और सही लिखी है ना, वो बात एक नहीं है, क्योंकि असली मुद्दा यही है कि हम बहुत दूर दराज के लोगों से बातें करने में मशगूल हो गए हैं, और हमारे करीब जो बैठा है उन्हें हम उपेक्षित कर दे रहे हैं, तो ये इसका एक सबसे माइनस पॉइंट।
1: एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि तकनीक का उपयोग रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए किया जाए, ना केवल औपचारिक या आभासी बनकर छोड़ दिया जाए। डिजिटल माध्यम से संपर्क बनाए रखने का एक साधन है, लेकिन सच्चे रिश्तों की नींव प्रेम, विश्वास, सम्मान और आमने सामने के संवाद पर ही टिकी होती है।
0: बिल्कुल सही कहा, जैसे कि इस वक्त मैं और चंचल आपस में संवाद कर रहे हैं।
1: और देखिए ना, रिश्तों को डिजिटल बनाना मंदाकिनी जी पूरी तरह से सही भी नहीं है, इसलिए घर में हम कुछ नियम बना सकते हैं ना, कि भाई रात्रि का भोजन जब होगा, जब सब अपने अपने कामों से फ्री होकर सब कुछ निपटा कर घर पे आ जाते हैं, तो उस वक्त एक समय बनाइए कि डिनर सब लोग साथ में करेंगे, और डिनर के समय मोबाइल कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। तो और वैसे भी जो छोटे बच्चे हैं उनको भी हम दूर रख सकते हैं, उनके लिए एक समय निर्धारित कर सकते हैं कि आप इस समय ही मोबाइल साथ में लेंगे, क्योंकि जो मोबाइल की अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं वो बड़ों को, छोटों को, सभी को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए तो खासतौर पर नुकसानदायक है, और गर्भवती महिलाओं के लिए भी।
0: बिल्कुल आपने सही कहा, और कितने क्राइम जो आजकल हम देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे या युवा होते बच्चे जो हैं, लड़के लड़कियां क्राइम कर दे रहे हैं, ये सब 24 घंटे नेट की दुनिया में अपने आप को मशगूल रखने के कारण भी है, क्योंकि आप वो सब देखते हैं जो आपको नहीं देखना चाहिए। और एक वक्त ये था चंचल, जब शाम की चाय के वक्त या रात के भोजन के समय, जैसा अभी आपने कहा, हम सब बैठ कर बतियाते थे हमारे पिताजी क्या लाए, हमारी माँ क्या बना रही है, इस पर हमें बाकायदा हमारा ध्यान होता था कि आज शाम हमें क्या मिलने वाला है, लेकिन अब हमारा ध्यान सारा जो है मोबाइल पर होता है।
1: तो अभी हमारा ध्यान थोड़ा सा हम गीता पर भी ले आए।
0: हाँ बिल्कुल, ध्यान तो चला गया है, और सुन भी लिया जाए गीता।

0: तो बड़ा सुंदर गीत था, और इस गीत ने सुरक्षा पंडित की खूबसूरत आवाज भी थी किशोर कुमार के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और अब हम अगला सेगमेंट लेते हैं हमारा।
0: बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सखी विशेष के अंतर्गत जो एक उद्यमी महिला है उपासना टाकू की, जो कि फिनटेक कंपनी मोबिक्विक की संस्थापक है और मुख्य वित्तीय अधिकारी भी है।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और आज हम देख रहे हैं कि फैशन इंडस्ट्री से लेकर तकनीक तक तकरीबन हर इंडस्ट्री में ही महिलाओं ने अपनी जगह बना ली है और देश को वो गौरवान्वित भी कर रही हैं। सफल महिला कारोबारी महिलाओं की लिस्ट में उपासना टाकू का नाम भी बहुत जाना माना नाम है, और उपासना उन गिनी चुनी महिला उद्यमियों में से एक हैं जो फिनटेक मार्केट का नेतृत्व करती हैं। वो मोबिक्विक की सह संस्थापक, बोर्ड अध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं।
1: और फिनटेक का मतलब है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, या आसान तरीके से समझें तो डिजिटल भुगतान और मनी ट्रांसफर। ये एक ऐसी तकनीक है जो लोगों और व्यवसायों को डिजिटल रूप से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने और उनके प्रबंधन में मदद करती है। इसके तहत मोबाइल एप्स, सॉफ्टवेयर और उन्नत एल्गोरिथम का उपयोग करके पारंपरिक बैंकिंग और वित्तीय कार्यों को सरल और तेज बनाया जाता है।
0: और इसके जरिए स्मार्टफोन से एक पल में पैसे भेजे जा सकते हैं या फिर प्राप्त भी किए जा सकते हैं। डिजिटल ऋण भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और एप्स के माध्यम से कुछ ही मिनटों में हम प्राप्त कर सकते हैं आजकल। और ऐसे एप्स उपयोगकर्ताओं के खर्चों को ट्रैक करने और बजट बनाने में भी मदद करते हैं मंदाकिनी जी। और ब्रोकरेज एप्स आम लोगों को स्टॉक, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी, इन सब में आसानी से निवेश करने की सुविधाएं भी देते हैं। ऑनलाइन बीमा पॉलिसी खरीदना है या कोई क्लेम करना है, यानी कि दावा आपको लेना है, तो उन चीजों के भी निपटारे तुरंत हो जाते हैं माध्यम से।
1: बिल्कुल चंचल। और इस कंपनी मोबिक्विक की नींव जो है उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर डाली थी। उपासना ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की, और ये इंजीनियरिंग डिग्री उन्होंने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी, और इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट साइंस और इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और लाखों महिलाओं के लिए वो आज भी प्रेरणा बनी हुई है।
0: उपासना ने पहली बार अपने पति बिपिन सिंह से 2008 में एक प्ले देखने के दौरान वो मिली थी। फिर 2011 में उनकी शादी हो गई। 2008 में उनकी कंपनी के सह संस्थापक ने प्लेटफॉर्म के लिए कॉन्सेप्ट विकसित किया, जिससे उनके पति विपिन बहुत दुखी थे, लेकिन वो अपनी नौकरी छोड़ नहीं सकते थे और उन पर अपने पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी थी। उपासना ने उन्हें अपनी नौकरी छोड़ने और फिर कोई एक नया स्टार्टअप शुरू करने की शुरुआत दी। इस तरह दोनों ने मिलकर 2009 में अपना एक नया व्यवसाय शुरू कर दिया।
1: और अपना खुद का कारोबार शुरू करने से पहले उपासना ने करीब 17 साल से भी ज्यादा समय तक संबंधित क्षेत्रों में काम किया, और उन्होंने एक अमेरिकी पेमेंट फर्म के लिए प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर भी काम किया, और एक प्रतिष्ठित बैंक में भी उन्होंने कई वर्ष तक नौकरी की।
0: ये सारी जानकारी हमारे श्रोता भी हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिलहाल समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: दाकिनी जी, अंतराल पूरा हो गया और हम फिर से जुड़ गए हैं अपने श्रोताओं के साथ में और हम बात कर रहे थे उपासना टाकू के बारे में। हमने बता दिया कि किस तरह से उनके व्यवसाय की शुरुआत हुई। तो पहले वो अमेरिका में रहा करती थी, लेकिन अपना जो वो कारोबार वो शुरू करना चाहती थी, इसके लिए भारत में उनको अवसर दिखाई दिया और 2008 में वो अपना व्यवसाय पूरी तरह से स्थापित करने के लिए भारत आ गई। उपासना ने इस बात को भी अच्छी तरह समझ लिया था कि भारत में अपना व्यवसाय करने के लिए जितनी ज्यादा समस्याएं हैं उतने ही ज्यादा अवसर भी हैं।
1: बिल्कुल, और वो जिस तरह का बिजनेस करना चाहती थी चंचल, भारत उसके लिए सबसे शानदार विकल्प था। और उनके परिवार ने उनके भारत लौटने के फैसले का विरोध किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक बहुत ही जोखिम भरा कदम हो सकता है। तो उपासना के माता पिता उन दिनों अफ्रीका में रहा करते थे और पिता एक कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे और माँ एक म्यूजिशियन थी।
0: और उपासना अमेरिका में जो भी नौकरी कर रही थी उसे छोड़कर वो अपने कारोबार के सपने को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती थी। जैसे आपने बताया ना कि वो एक बैंक में प्रतिष्ठित बैंक में नौकरी कर रही थी, और यूं अगर देखा जाए तो उपासना एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थी, इसलिए सब तरह की सुख सुविधाओं को भी वो देख चुकी थी, उनका आनंद ले चुकी थी। उनके पास अपना बड़ा घर, कार, तमाम जो सुविधाएं होती है ना, वो सभी चीजें थी। लेकिन भारत वापस लौटकर उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण इलाके थे वहां काम करने वाले माइक्रो फाइनेंस एनजीओ के लिए वहां काम करना शुरू किया।
1: हाँ, और वो बताती है खुद कि उनकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष यानी 2022 और 23 की तीसरी तिमाही में लाभ कमाना शुरू कर दिया था और कंपनी के आगामी लक्ष्यों में राजस्व दोगुना करना और अधिक मुनाफा उसमें शामिल भी था, मतलब हासिल करना उसमें शामिल था। फिनटेक इंडस्ट्री में आज उनकी कंपनी एक जाना पहचाना नाम भी बन चुकी है।
0: यानी देखिए ना, संघर्ष कितना किया उन्होंने। 2008-2009 में उन्होंने सोचा, शुरुआत की, और 2022-23 की हम बात कर रहे हैं जब वो एक अच्छी कमाई करने वाली कंपनी और कहते हैं कि नामचीन कंपनी जिसे नाम से दुनिया जाने, वहां उन्होंने अपने नाम को शुमार किया। तो हम आगे भी उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, वो आगे बढ़ती रहे। फिलहाल सुने गीत।
1: बिल्कुल।

0: तो चंचल, बहुत ही प्यारा गीत आपने सुनवाया, और गीतों के साथ साथ हम विभिन्न विषयों पर बातचीत भी कर रहे हैं जो हमारे श्रोताओं को पसंद भी आ रही है। और अब हम आ जाते हैं सेहतमंद भोजन पर।
1: बिल्कुल, एक सेहतमंद रिश्ता भी इसी तरह बनता है ना, जैसे हमारा एक सेहतमंद रिश्ता है हमारे श्रोताओं के साथ में। उनकी पसंद का भी थोड़ा हम ख्याल रखते हैं, कहीं बीच बीच में उनके संदेश होते हैं, कहीं बीच में मनोरंजन के लिए गाने भी होते हैं, और फिर थोड़ी सी जानकारी भी होती है।
0: बिल्कुल, इसी प्रकार हमारा जो ये प्रोग्राम बनता है, कार्यक्रम बनता है, इसी सेहतमंद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और ठीक वैसे ही भोजन भी हमें सेहतमंद भोजन करना चाहिए।
1: और हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे हमेशा से हम सुनते आए हैं कि नहाए के बाल और खाए के गाल अलग ही नजर आ जाते हैं। यानी कि कहने के लिए तो बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन इसके जो मतलब हैं, मायने हैं, वो बड़े गहरे हैं। तो हमारा खान पान जैसा होता है, हमारे चेहरे पर जो चमक है
0: वो वैसी ही होती है। बिल्कुल सही कहा। और हमारी सेहत एक तरह का निवेश है, इन्वेस्टमेंट है ये, और इसलिए निवेश जैसा होगा हमें रिटर्न भी वैसा ही मिलेगा। यानी जितना अच्छा या सेहत से भरपूर हमारा खाना होगा, भोजन होगा, हमारी सेहत भी उतनी ही दुरुस्त होगी। और हमारे खाने में जो तमाम जरूरी पोषक तत्व होने चाहिए, जिसकी हमारे शरीर को जरूरत भी है, ऐसा भोजन हमें करना चाहिए।
1: इसीलिए देखिए, हमारे श्रोता का एक बड़ा अच्छा संदेश है। इन्होंने लिखा है कि रात 8 बजे के बाद भूख लगने पर हम अनहेल्दी स्नैक्स खा लेते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये इस अखबार के माध्यम से लिख रहे हैं कि वहां भी सुझाव इन्होंने पढ़े कि रात के समय भुना हुआ मखाना, मूंग की दाल का सूप, खीरा, मूंगफली चाट जैसे हल्के विकल्प ये बेहतरीन होते हैं। ये पचने में आसान होते हैं और नींद भी इनसे अच्छी आ जाती है। तो रात को सोने से पहले 1 कप गुनगुना हल्दी वाला दूध अगर आप लेते हैं तो वो भी पेट को आराम देता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इनका कहना यही है कि अनहेल्दी स्नैक्स को रात के समय थोड़ा सा हम अंधे का अनसुना या अवॉइड जिसे कहते हैं वो कर सकते हैं।
0: वैसे तो पूरे दिन ही इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि हम अनहेल्दी कुछ भी न खाएं, लेकिन हाँ, अगर आप चटोरे हैं थोड़ा सा, आपको कंट्रोल नहीं है अपने खाने की आदत पर, तो आप कभी कभार दिन भर में कुछ ऐसा खा लें, फिर उसका भुगतान भी हमें ही करना पड़ता है चंचल।
1: तो चटोरेपन को लेकर एक और संदेश है हमारे एक श्रोता के संदेश में लिखा है कि क्या आप जानते हैं सीमित मात्रा में गोलगप्पे या पानी पूरी खाना भी सेहतमंद फायदेमंद हो सकता है। इसके पानी में इस्तेमाल होने वाला पुदीना, जीरा और हींग, ये सभी जो चीजें हैं छोटी मोटी समस्याओं में और मुंह के छालों में राहत देते हैं, बशर्ते इसे बहुत साफ सफाई से बनाया गया।
0: बिल्कुल, सबसे बड़ी बात उन्होंने अंत में कह दी है, क्योंकि हम बहुत देखते हैं कि जहाँ पानी पूरी खिलाया जाता है ना, वहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन जो आपको खिला रहा है उसके हाथ साफ है कि नहीं, बनाने के तरीके साफ है कि नहीं, ये भी आपको जान लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप चटोरेपन में खा तो रहे हैं लेकिन उसके परिणाम जब गलत आते हैं तो हमें पछताना भी पड़ता है।
1: और ये जो अभी मौसम चल रहा है, इन दिनों में मक्खियां बहुत हैं, तो मक्खियां जब खाने पर बैठती हैं तो वहां अपने पैरों पर लिए हुए जो गंदे

0: गंदगी होती है उसे छोड़ जाती हैं, तो ये हमें बहुत हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार हमें अंदाजा नहीं होता वो ऊपर से देखने में साफ सुथरा भोजन लग रहा है,
1: लेकिन हम कहाँ खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किस समय खा रहे हैं, किस मौसम में खा रहे हैं, क्या टाइम है खाने का, ये सभी बातें हमें जान लेना बहुत जरूरी होता है। हमारी शोधा लिखती है कि सेहतमंद भोजन केवल उबली हुई सब्जियां नहीं बल्कि स्वाद और पोषण का बेहतरीन संतुलन है। अपनी डाइट में हरी भरी सब्जियां, ताजे फल, नट्स और साबुत अनाज आप शामिल करें और कभी आप कई गंभीर बीमारियों से दूर रह सकते हैं और खुद को दिन भर ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं। रोजमर्रा के खान पान में छोटे छोटे बदलाव आपकी सेहत को सुधारने में बहुत बड़ा असर डालते हैं। प्लेट में विविधता लाएं, अपनी डाइट में मौसमी फल, सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, प्रोटीन, इसको प्राथमिकता दें। नाश्ते या खाने में पनीर, दालें, अंडे, भीगे हुए चने शामिल करें और मैदे की जगह साबुत अनाज, मैदे से बनी चीजों की बजाय ज्वार, बाजरा, रागी, ओट्स का विकल्प चुनें और सुबह के समय भीगे हुए बादाम, अखरोट खाना ये बहुत जरूरी है, आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। यदि आप अपनी डाइट में कुछ नया और सेहतमंद शामिल कर लेते हैं तो फिर आप हेल्दी हो जाते हैं।
0: इसी तरह एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि घर में शुद्धता से बनाया गया और शुद्ध भाव से बनाया गया भोजन हमेशा सेहतमंद होता है। मौसमी सब्जियां, मौसमी फल खाने में हमेशा शामिल करने चाहिए। बेमौसम का कोई भी फल या सब्जी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ये बात बड़ी अच्छी बताई है उन्होंने, क्योंकि उनको कृत्रिम तरीके से बनाया या पकाया गया है तो वो नुकसान कर सकते हैं। आगे लिखते हैं कि घर में विविधता से बनी हुई दालें, अनाज, चावल, रोटी बनती हैं और शरीर के लिए सारी चीजें बेहतर होती हैं। घर के बने खाने में बहुत सी अच्छी चीजें होती हैं जिनमें मखाना भूनकर खा लेना, चना खा लेना, ये सब भी अच्छी चीजें हैं। बाजार की टिक्की, बाजार के समोसे ये नुकसान करेंगे, लेकिन इन्हीं को अगर घर में बनाया जाए तो उतना नुकसान शायद नहीं होगा।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि घर में आप थोड़ा स्वच्छता के साथ कार्यक्रम और सबसे बहुत ताजा आपको भोजन खाने को मिलता है।
0: एक और बात कि तली हुई चीजें जो हैं बाहर जब हम खाते हैं तो उसी तेल में बार बार उन चीजों को पकाया जा रहा है, कई कई दिन तक उसी तेल में खाना पक रहा है, जबकि घर में भी अगर हम तला हुआ कोई भी व्यंजन बनाते हैं तो ताजा तेल,
1: दोबारा उस तेल का इस्तेमाल करने से बचते हैं, है ना, इस बात का आपको। लेकिन पता है चंचल क्या होता है, हमारी चटोरी जीभ है ना, बाहर ही खाना पसंद करती है और बाहर की उबली हुई चाय जिसे कितनी बार उबाला जाता है, हम खड़े होकर कितने आराम से पीते हैं, जब आपको पता होता है उसके नुकसान कितने हैं। घर में आप अपने हिसाब से चाय को उबाल कर पी सकते हैं ना। एक श्रोता लिखते हैं कि सेहतमंद भोजन वो है जो शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करे और हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और सक्रिय बनाए रखे। संतुलित आहार में अनाज, दालें, हरी सब्जियां, फल, दूध और दुग्ध उत्पाद, सूखे मेवे और पर्याप्त मात्रा में पानी शामिल होना चाहिए। तली भुनी और अधिक मीठी चीजों की बजाय ताजी और घर के बने भोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। नियमित समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और सेहतमंद भोजन न केवल शरीर को बल्कि मन को भी प्रसन्न और सक्रिय रखता है।
0: बिल्कुल, इसी तरह से एक और बहुत अच्छा सुंदर संदेश है, ये हमारे श्रोता ने लिखा है कि सेहतमंद भोजन जो होता है वो हमारी अच्छी सेहत बनाता है। और आगे लिख रही हैं कि फ़ायदा करने वाले जो भी खाने होते हैं उनको आप बना सकते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में खाने को कम टेस्टी नहीं लगेंगे, पहले वो खाना घर पर ही होगा, लेकिन इसमें आप तरीके अपना सकते हैं। यानी कि कोई भी सब्जी बनाने के लिए चीज़ की रोटी बना दें और सैंडविच वगैरह बना लें, इस तरह से पिज़्ज़ा रोटी भी बनती है, घर की जो चीज़ें हैं स्वादिष्ट होती है, तो ये पिज़्ज़ा, बर्गर, ये चीज़ें हम घर में,
1: ये जहाँ हमारा ध्यान इन सब की तरफ जाता है और मुझे लग रहा है कि हमारे मुंह में पानी भी आ गया है।
0: और बच्चे इन चीजों से बड़े आकर्षित होते हैं, लेकिन बहुत सारी मम्मियां बड़ी होशियार होती हैं तो मैदे की जगह आटा इस्तेमाल करती हैं और जो बाजार में मोमोज बनते हैं ना वहाँ बिल्कुल जो बची कुची सब्जियां उनसे लाकर, कई उसमें सड़ी गली भी हो सकती है, उन सब्जियों से वो मोमोज बनाए जाते हैं। तो आप घर में बिल्कुल ताजी सब्जियों से बनाइए तो वो बच्चों को फायदा भी करेंगी।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और जो अभी आप पढ़ रही थी संदेश वो यही कहना चाह रहे थे कि आप किसी होटल में जाकर जब उसका आनंद उठाते हैं तो क्यों ना घर में ही वो उपयोग कर लिए जाए और घर में आप आनंद से खाइए और भरपेट खाइए ना, किसने रोका है आपको।
0: तो भाई अब मुझे भी मत रोकिए, मैं गाना सुनवा रही हूँ और सुन भी रही हूँ, बड़ा अच्छा गीत है।
1: बिल्कुल सुनाइए।

0: तो चंचल, असली प्यार तो वही होता है कि आपको अंत तक सहारा देता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं मुंह में राम और बगल में छुरी जो लेकर चलते हैं ना, तो फिर उसके लिए तो हमें उनके उदाहरण देने पड़ जाते हैं कि देखिए यहाँ पर आकर एक मुहावरा आ जाता है, मुंह में राम और बगल में छुरी।
1: यानी वो सिर्फ अपनेपन का या आपसी प्यार का दिखावा कर रहे होते हैं, जबकि पीठ पीछे वो शत्रुता निभाने वाले लोग होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और ये एक ऐसी प्रसिद्ध लोकोक्ति या कहावत है, इसका मतलब होता है कि बाहर से बहुत सज्जन, मित्रवत या भोला भाला दिखना, लेकिन मन में कपट और मौका मिलते ही नुकसान पहुंचाने की योजना बनाना।
0: बिल्कुल सही कहा। तो हमारे एक श्रोता लिखते भी हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी हिंदी साहित्य का मुहावरा जो हमारी भाषा में खूब प्रयोग किया जाता है। ऊपरी तौर पर मीठी मीठी बातें करना या दोस्ती का ढोंग रखना, लेकिन मन में बैर रखना और नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहना, ये मुहावरा कपटी और पाखंडी लोगों के व्यवहार को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। वैसे आजकल सोशल मीडिया पर यही हो रहा है, एक तरफ का आपके लाइक करते हैं लोग और पीठ पीछे जहर भी उगलते हैं।
1: एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता का कहना है कि ये मुहावरा उन कपटी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सामने बहुत मीठा बोलते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने का हर मौका तलाशते रहते हैं। यहाँ इस मुहावरे से जुड़े कुछ मुख्य पहलू भी दिए गए हैं, कपटी या धोखेबाज होना और

0: उदाहरण उन्होंने देकर समझाया है।
1: वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भाई इसका अर्थ तो हम सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति आपसे ऊपर से मीठी मीठी बातें कर रहा है लेकिन आपके अंदर ही अंदर वो नुकसान पहुंचाने की ताकत भी रखता है, आपके लिए मन में द्वेष रखता है और यही इस मुहावरे का अर्थ है। ऐसे कितने ही लोग हैं जो ऊपर से हमारे साथ मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन मन में हमारे लिए उनके द्वेष होता है।
0: एक अन्य संदेश में बात कही गई है कि ये कहावत समाज में बढ़ते खोखलेपन को दर्शाती है। लोग अपनी असली पहचान और इरादों को छुपाने के लिए धर्म, मीठी भाषा, झूठी हमदर्दी सभी तरह के मुखौटे पहन लेते हैं। जब समाज में दिखावा ही सफलता की चाबी बन जाता है तो लोग अंदर से जहरीले और बाहर से अमृत जैसा दिखने का नाटक करने लगते हैं।
1: बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं चंचल, जिन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं। हाँ। पहचानते हैं तब तक बहुत देर भी हो जाती है कई बार, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी, इस प्रसिद्ध लोकोक्ति को समझाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब सभी जानते हैं, मीठी मीठी बातें करके मित्रवत व्यवहार करना लेकिन मन या दिल में शत्रुता रखते हुए नुकसान पहुंचाना। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं इसलिए उनकी मीठी मीठी बातों से

0: बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं चंचल, जिन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं, और जब
1: हाँ।
0: पहचानते हैं तब तक बहुत देर भी हो जाती है
1: जी।
0: कई बार, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी, इस प्रसिद्ध लोकोक्ति को समझाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब सभी जानते हैं। मीठी मीठी बातें करके मित्रवत व्यवहार करना, लेकिन मन या दिल में शत्रुता रखते हुए नुकसान पहुंचाना, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए उनकी मीठी मीठी बातों से बचना जरा दुनिया के लोगों में है जादू भरा।
1: क्या बात है। और ऐसे बहुत सारे संदेश हमें मिल रहे हैं। एक अन्य संदेश में लिखा है कि कपटी या धोखेबाज होना, यही इस मुहावरे का अर्थ है, लेकिन ये ऐसे लोगों पर, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग की जाती है जो बाहर से मीठा और बड़ा मित्र होने का व्यवहार करते हैं, लेकिन मन में बैर, जलन या नुकसान पहुंचाने की योजना वो रखते हैं। और अंग्रेजी में इस कहावत को क्या कहा जाता है, ये भी इन्होंने हमें लिखकर भेजा है।
0: अच्छा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये मुहावरा उन कपटी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सामने बहुत मीठा बोलते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने का मौका तलाशते रहते हैं। और यहाँ कुछ उन्होंने इसके बारे में बताया भी है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, प्रयोग भी किया, जैसे हम अपने प्रश्न पत्र में होता था ना, हम कॉपी में
1: उदाहरण देकर समझाइए,
0: उदाहरण देके समझाते थे, ठीक उन्होंने वैसे ही उदाहरण भी देते हुए हमें समझाया है। बहुत अच्छी बात है कि आपने इस कहावत के बारे में ज्यादा से ज्यादा अपने विचार हम तक पहुंचाए हैं।
1: तो अब एक गीत सुन लिया जाए और चलते चलते सुनते हैं प्रोग्राम का आखिरी गाना।
0: बिल्कुल।

0: तो हम उम्मीद रखते हैं कि अब जो हमारे श्रोता हैं वो अपना भोजन भी सेहतमंद लेंगे और उनके जो रिश्ते हैं उन्हें भी सेहतमंद बनाएंगे।
1: हाँ, यानी
0: कि डिजिटल युग से जुड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन इसकी सीमा क्या है इसको भी वो समझेंगे।
1: हाँ बिल्कुल, हर एक चीज की जो सीमा रेखा है वो हमें खुद ही तय करनी होती है चंचल। जैसे अभी इस वक्त हमें क्या तय करना है
0: कि हमारा समय क्योंकि समाप्त हो रहा है, हमें लेनी है इजाजत।
1: हाँ, तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी
0: और चंचल वर्मा को इजाजत दीजिए।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पत्रिकर। आज इस बातचीत का दूसरा भाग सुना जाए।
1: है अपना दिल तो आवारा, मगर ये आपकी आवारगी जो फिल्म लाइन में शुरू है, अभिनय की दुनिया में बसर कर रहे हैं, इसमें एक फिल्म आई थी 2020 में, स्टेट ऑफ सीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म की एक बड़ी माकूल फिल्म मानी जाती है, बहुत अच्छी फिल्म ये बनी थी, इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि इससे जुड़े हुए सारे नाम जो है वो विदेश के हैं।
2: हाँ, ये कॉन्टिलो पिक्चर्स ने प्रोड्यूस की थी
1: जी,
2: और इसमें मैथ्यू लिटमोर ये डायरेक्टर थे जो कि हॉलीवुड से थे, रिचर्ड हेंकल ये डीओपी थे, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी कैमरामैन
1: जी,
2: ये भी हॉलीवुड से थे, और एंटोन लियोन ये एसोसिएट डायरेक्टर, ये तीनों की टीम वहां से थी।
1: अच्छा।
2: और उनके साथ इनके कुछ एसोसिएट्स भी हॉलीवुड से आए। हालांकि मैट्रिक्स नाम की एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी शायद वैन डैम की, वो उसके डीओपी भी रह चुके हैं रिचर्ड हेंकल, तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए
1: जी जी।
2: तो अचानक एक दिन मैं नागपुर में ही था उस दौरान, 2019 की बात है शायद, और मुझे कॉल आया कि यार एक ऐसा ऐसा कैरेक्टर है
1: जी,
2: बहुत खूबसूरत डीएसपी का कैरेक्टर है। मैंने बोला यार मैं पुलिस वाले का काम मत बुलाया यार प्लीज। ही सेड कि यार भाई तू सुन तो ले कैरेक्टर क्या है। मैंने ठीक है, उसने मुझे बताया कैरेक्टर, एक्सप्लेन किया, डीएसपी सूर्यवर्धन शुक्ला करके एक कैरेक्टर मुझे दिया गया जो कि राजवर्धन सिन्हा साहब के रियल कैरेक्टर पे जुड़ा हुआ था
1: जी,
2: जो कि 26/11 अटैक हुआ था उस पे।
1: अच्छा।
2: विश्वास नागरे पाटिल सर थे, उन्हीं का भी एक कैरेक्टर था जो दूसरा मेरे साथ में ऑफिसर थे डीएसपी, वो प्ले कर रहे थे। तो ये सब ब्रीफ किया और मुझे अच्छा लगा, ठीक है। मैं नागपुर से मैं जब वापस आया एक दो दिन में, उसके बाद मैं गया उनके प्रोडक्शन हाउस में, मैंने ऑडिशन उनको पहले ही ऑनलाइन ही भेज दिया था
1: जी,
2: दे लाइक इट, दे शॉर्टलिस्टेड, कमर्शियल की जो भी बातें थी वो हुई एंड आई जॉइंड द थिंग। मैं उस दिन शूट करने के लिए एप्पल स्टूडियो जो नायगांव
1: जी
2: जाके वहां पे मैं गया। हालांकि मुझे इतने बड़े प्रोजेक्ट का आइडिया नहीं था, मैंने सोचा कि इट्स वन ऑफ द प्रोजेक्ट वेब सीरीज, लेकिन वहां जाके मुझे पता चला कि ये 26/11 पे बनने वाली एक बहुत ही बड़ी वेब सीरीज है, बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट बजट पे भी, और इसके हॉलीवुड के, मैं आई एम नॉट सेइंग कि हॉलीवुड मेकर्स है तो आई एम क्रेजी अबाउट इट, बट उनका टेकिंग बड़ा अच्छा था।
1: हाँ,
2: उनका ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा।
1: यही सवाल मेरे मन में भी आ रहा था कि हॉलीवुड का अपना एक तरीका है काम करने
2: का। हाँ, उनका एक अलग तरीका है।
1: तो वो फर्क आपने क्या महसूस किया इसमें?
2: फर्क ये था कि उनके लिए यहाँ पे कोई बड़ा एक्टर छोटा एक्टर नहीं था।
1: अच्छा।
2: जैसे मैं 2019 के दौरान अगर उनके साथ शूट करा था तो मेरा कम एक्सपोजर था, वेरैज तीन फेसेस थे हमारे यहाँ पे, अच्छे आर्टिस्ट हैं, अर्जुन बाजवा जी हैं, विवेक दहिया है, अर्जुन बिजलानी है
1: जी,
2: काफी अच्छी बातचीत है उनके साथ भी, वे तीन पोस्टर फेसेस भी थे, एनएसजी कमांडो प्ले कर रहे थे, बट उन्होंने कहीं भी ऐसा कि उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस हमें कम इम्पोर्टेंस ऐसा नहीं दिया, उनके लिए सब सेम थे,
1: सब सेम।
2: तो उनका ट्रीटमेंट वो बताते थे कैसा करना है, वो कन्वे करते थे शॉट के पहले।
1: अच्छा।
2: एंड देन वो ट्रीटमेंट के साथ बैक टू बैक टेक्स बहुत ज्यादा लेते थे, मतलब एक ही सीन हमारा हमने 15-15, 20-20 बार शूट किया बहुत बार
1: जी, जी।
2: लेकिन उनका ये था कि आप करके दिखाओ सर आपको क्या सही लग रहा है। और हालांकि वो मुझ में पहले से है भी, मैं सोचता हूँ कि जैसे मैंने कबीर सिंह की, जैसे मैंने गांधी गोडसे की
1: जी,
2: या फिर मैंने जो भी फिल्में की, अगर वो टेक मुझे कुछ लगा है
1: हाँ।
2: तो मैं डायरेक्टर को जाके बोल के आता हूँ कि सर आई फील इफ आई डू दिस। तो ये एक छोटा सा किस्सा हुआ था संदीप सर के साथ, संदीप रेड्डी सर के साथ
1: जी।
2: तो मैंने बोला कि एक जो सीन है वो मिडवे चालू होता है, हाफ सीन हो चुका है, हाफ सीन चालू हो रहा है।
1: अच्छा।
2: कि एवरीथिंग इज एट स्टेक। वो बोलता है कि एक दिन पहले उसने दारू पी के ऑपरेशन किया है, शराब पी के ऑपरेशन किया है, ये अभी मैं अभी कोर्ट में जाऊंगा, ठीक है, आपको गवाही देनी पड़ेगी, स्टाफ को बोलता है अपने
1: जी,
2: डीन ऑफ द हॉस्पिटल
1: जी।
2: अब मुझे लग रहा था ना वो वहां से जो चालू हो रही है लाइन, कि अब मुझे उस पर प्रेशर भी देना था, एवरीथिंग इज एट स्टेक। अब एवरीथिंग इज एट स्टेक पे वो मैं प्रेशर नहीं दे पा रहा हूं।
1: अच्छा।
2: मैंने सोचा कि एक वर्ड को डालना चाहिए, तो मुझे लगा ब्लडी इज द वर्ड, तो मैंने वो बोल के देखा, ब्लडी एवरीथिंग इज एट स्टेक।
1: अच्छा।
2: जो मुझे यहां पे अभी लगा, तो वहां पे वो फील आया, मैंने बोला ये करता हूं, तो मैंने एसोसिएट डायरेक्टर को बोला, बोले कि नहीं नहीं ब्लडी यूज नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला सर नहीं यूज कर पाएंगे तो सर को एक बार बोल के देखो ना। नहीं नहीं यार वो गुस्सा हो जाएंगे। लाइक ठीक है छोड़ यार। मैंने वो आए डायरेक्शन के टाइम में तो आए।
1: हाँ।
2: मैंने बोला सर एक पॉइंट है,

0: बोले हाँ बोलो। ना ये ऐसा ऐसा बोलने की मेरी इच्छा है अगर आपको सही लगता है। उन्होंने बोल के देखा, एक सही डायरेक्टर जो है वो उसकी फिल्म को बहुत अच्छे से जानता है।
1: जी जी
0: जैसे कैप्टन ऑफ द शिप।
1: बिल्कुल।
0: तो उन्होंने बोल के देखा दो बार, बड़ी बड़ी होती है। बोला हाँ गुड गुड डू इट एंड इट इज देयर इन द फिल्म।
1: यस यस।
0: तो ये एक चीज है जो आर्टिस्ट को बोलनी चाहिए। आर्टिस्ट कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि आपने जाके रख दी तो वैसी रहे। आर्टिस्ट एक कलाकार है, एक खुद सोचने वाला इंसान है
1: और वो भी अपने रोल के बारे में सोच रहा है।
0: सोच रहा है तो अच्छी बात है।
1: जी जी।
0: तो अच्छा मैं इंसिस्ट नहीं करता, मैं एक बार बोल के देखता हूँ।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि उन्हें अच्छा लगा तो रखे, नहीं लगा तो नहीं रखे। मैं उसको ज्यादती तौर पर नहीं लेता हूँ।
1: अभिनेता और निर्देशक के बीच में ये एक संवाद तो बहुत जरूरी है।
0: बहुत जरूरी है।
1: हाँ
0: सेम थिंग राजकुमार संतोषी जी के साथ भी वही हुआ।
1: जी
0: हम लोग गांधी जी बैठे हुए हैं और डीएसपी राणा उनको आके बोलते हैं कि महात्मा जी ये जो आपके प्रार्थना स्थल है वहां पे सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी।
1: अच्छा।
0: और डीएसपी राणा जो है उनका थोड़ा चाहने वाला है तो बार बार इंसिस्ट करता है कि महात्मा जी आप सुनिए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करते करते एक लास्ट में वो फिर से महात्मा जी बोलता है कि महात्मा जी लेकिन वो बोलते हैं बस प्रार्थना स्थल पे किसी की भी चेकिंग नहीं होगी और वो जाने को बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: तो इसमें मुझे लगा कि जब ये पहले इसने इन्फॉर्मेशन दी कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है महात्मा जी, तो महात्मा जी हम चाहते हैं कि आपके इसमें प्रार्थना स्थल पे वो रखा जाए सिक्योरिटी, वो नहीं बोलते हैं। और ये फिर से वो बोलते हैं कि कड़कड़ी सी विनती करते हैं कि, तो उस पर मुझे लगा कि इसमें बापू बोलना चाहिए।
1: हाँ।
0: थोड़ा सा इमोशनल
1: है वो, महात्मा बोल रहा है मगर
0: हाँ, अब जो तक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अभी बहुत ही क्लोजली अरे करना यार काइंड ऑफ, तो लेकिन बापू ऐसा मुझे लगा। अब फिर से मैंने एक वो स्क्रिप्ट डायरेक्टर था उसको बोला, उसने नहीं नहीं प्रोटोकॉल ही हो जाएगा वो। हाँ। थोड़ी मैंने बोला भाई ये तो एक तो फिक्शन है।
1: हाँ।
0: ठीक है ये कोई हुआ है ऐसी बात नहीं है, तो फिक्शन है। और हम लोग उस जोन में जा रहे हैं कि जहां पे ये आदमी इमोशनल होके उनकी बहुत ज्यादा चिंता है इसलिए बोल रहा है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो बापू पूरे पूरा नेशन उनको बापू बोलता था, व्हाई नॉट। उसने नहीं बोल दिया। मैंने राजजी को बोला, सेट पे आए वो जब सीन करना था। हाँ चलो चलो। मैंने बोला राजजी ये, हाँ बोलो। मैंने सर ये ऐसा ऐसा है बापू। कैसे बोलोगे? मैं बोला ये ऐसा ऐसा और फिर मैं ये ऐसा। हाँ बहुत बढ़िया, ही लाइक इट। सो मेरा यही कहना है कि एक आर्टिस्ट के तौर पे हमने उसमें जान डालने की कोशिश करनी चाहिए। वही एक एडिशनल चीज है जो आप दे सकते हो। सो दिस इज व्हाट हाउ इट हैपेंस।
1: क्या बात है।
0: तो स्टेट ऑफ सीज का भी वैसा ही रहा।
1: हाँ, हाँ।
0: कि मैं जैसे ही वहां गया तो वो चीजें सीखने को मिली उन लोगों के थ्रू। वो पूछते थे कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे, तो चीजें होती गई। कोइंसिडेंटली वहां पे जो शिरके नाम से कैरेक्टर था, जो विश्वास जी का कैरेक्टर था, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त विक्रम गायकवाड़ ही प्ले कर रहा था।
1: अच्छा।
0: तो विक्रम मराठी का काफी कैरेक्टर्स करता है,
1: बड़ा नाम है,
0: बड़ा नाम है, शोज करता है। हम लोगों ने साथ में फोर इडियट्स जो की थी, हमने साथ में पहली फिल्म थी।
1: अच्छा।
0: उसने कंटिन्यू किया, उसके बाद उसको मराठी शोज भी मिले, फिल्में मिली। मैं वापस चला गया नागपुर और वापस आया तो चार साल बाद मैंने मेरा सफर हिंदी से चालू किया।
1: जी
0: बोले हम लोग अच्छे दोस्त हैं। ओवरऑल स्टेट ऑफ सीज एक अपने आप में बहुत सीखने लायक और बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट बना।
1: जी
0: हालांकि लॉकडाउन के चलते उसे शायद जहां तक वो जाना चाहिए उतना एक्सपोजर उतने व्यूअर्स नहीं मिले।
1: हाँ।
0: बट आज भी मैं किसी को रिकमेंड करता हूं तो बोलता हूं कि वो जरूर देखिए। आप कुछ 4.5 घंटे का होगा, बहुत ही छोटे छोटे डिटेल्स उसमें दिए गए
1: जी
0: कि कैसे कैसे हुआ होगा। मैं रिसेंट फिल्म मैंने एक मैडॉक की अभी की शूट, जो कि निकम नाम की एक फिल्म आ रही है, उसमें भी मैंने एक कैरेक्टर किया जो कि उसी से रिलेटेड है।
1: अच्छा।
0: वो भी बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर था, उसमें भी डिटेलिंग छोटे छोटे दिए गए।
1: आपने बंबई में फिल्मों और वेब सीरीज के साथ साथ कुछ रंगमंच पर भी काम किया है, तो हम उसकी बात करेंगे, मगर यहाँ एक गुंजाइश एक गीत की है। कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: ये कभी कभी मैं जिंदगी के बारे में जब सोचता हूँ और बड़े शांत कभी जोन में, मैं बड़ा ही निसर्ग प्रेमी इंसान हूँ। मैं हाल ही में गोवा गया था तो मैं वहां पे घंटों बीच पे बैठा करता था अकेले। गया तो फैमिली के साथ था, लेकिन जब भी टाइम मिलता मैं अकेले बीच पे बैठ जाता। और उस वक्त वो गाना मेरे जहन में आता है, दो लफ्जों की है दिल की कहानी।
1: आइए सुनते हैं।
0: जी सर।
2: दो

0: दो लफ्जों की है ये कहानी, हालांकि किसी भी कलाकार की कहानी दो लफ्जों की नहीं रह
1: नहीं
0: जाती
1: रहती।
0: जब एक मुकाम वो हासिल कर लेता है। और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि आपने थिएटर में भी काम किया है,
1: जी
0: तो एक वो दौर था जब बचपन में आपने
1: काम किया
0: कॉलेज के जमाने तक नागपुर में थिएटर किया था, और अब मुंबई में आके यहाँ थिएटर अलग ही है।
1: बहुत
0: मराठी में तो प्रोफेशनल थिएटर बहुत ज्यादा विकसित हो चुका
1: कई
0: है,
1: नहीं।
0: प्रगति के मार्ग पर है। हिंदी का एक अपना मुकाम है थिएटर का, आपका अनुभव कैसा रहा हिंदी में थिएटर करते हुए यहाँ पर?
1: बहुत खूबसूरत, मतलब मराठी, मैं मराठी होने के बावजूद मराठी में मैंने थिएटर यहाँ पे आने के बाद तो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा ग्रुप जो डेवलप हुआ वो हिंदी का हुआ।
0: जी
1: तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था सुनील उपाध्याय,
0: जी जी
1: उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया। रंजीत सर एक अपने आप में, मैंने जैसे कहा कि बहुत सीनियर पर्सनैलिटी है, तो कुंदन रॉय और सुनील उपाध्याय मेरे दोस्त हुआ करते थे, जिन्होंने मुझे बताया कि हम लोग नाटक कर रहे हैं चेखव की दुनिया।
0: अच्छा
1: आंतोन चेखव जो रशियन लेखक थे,
0: बिल्कुल।
1: उन्होंने 700 के करीब कुछ ड्रामास लिखे हैं, और उसमें बहुत सारे जो नाटक है
0: जी
1: वो रंजीत सर ने अनुवादित किए हिंदी में। तो वो सर का नाटक था, तो मुझे बुलाया गया रीडिंग में, और मैंने रीडिंग शुरुआत की रंजीत सर के यहाँ। हम लोग सर्कल बना के बैठते थे, रंजीत सर एक चेयर पर बैठते थे, तो फिर वो एक एक बंदे से जो है पेज का वो
0: पढ़वाते
1: शुरुआत पढ़वाते थे। मैंने एक वो देखा, रंजीत सर के रीडिंग में 1.5 पेज के ऊपर जाना ही नहीं होता है,
0: अच्छा
1: क्योंकि हर एक से एक एक चीज पढ़ने को बोलते हैं, और उसको हर एक लहजे में, हर एक शब्द में, हर एक मूड में करेक्ट करते हैं।
0: अच्छा
1: ही कीप वर्किंग ऑन यू फॉर मेनी टाइम्स।
0: ओके
1: अगर कोई चीज, एक शब्द बोला है, उसमें कोई शब्द अक्षर है, वो
0: जी
1: एक
0: जी
1: छोटा सा, जैसे कहीं नुक्ता लगाना है या कहीं कुछ प्रेशर देके बात करनी है, वो अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो वो बार बार आप पे काम करेंगे। अगर उनको दिखता है कि आप में कैपेबिलिटी है तो ही विल वर्क ऑन यू।
0: जी
1: एक लिमिट के बाद में फिर शायद छोड़ दें कि नहीं हो पा रहा है तो किसी दूसरे को
0: अच्छा
1: दिया जाए।
0: अच्छा
1: तो ये उनके साथ मैंने किया है, ये सीखने को मुझे बहुत कुछ मिला कि
0: हाँ
1: एक एक छोटे छोटे वर्ड पे, एक एक छोटे छोटे अक्षर पे कितना प्रेशर दिया जाना चाहिए, जैसे कभी कम या कभी ज्यादा। तो ये ऐसा नहीं कभी कम या कभी ज्यादा, तो ज्यादा को बोलते हुए आप ज्यादा है,
0: उस पर ज्यादा जोर दिया
1: ज्यादा
0: जाता
1: जोर दिया जाता है, तो तभी वो ज्यादा हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं
0: जी
1: जो
0: जी
1: मैं उनसे सीखा,
0: जी
1: और थिएटर में हम लोगों ने जहां जहां परफॉर्म किया, अपने आप में एक हिंदी जो आप करते हो, हिंदी मराठी बातें एक ही है, ऐसा नहीं,
0: हाँ
1: परफॉर्म ही करता है आर्टिस्ट, लेकिन एक नेशनल लैंग्वेज में जब आप काम करते हो तो आपको

0: सिर्फ रीजनल लोग नहीं देखते, आपको पूरी इंडिया से लोग अलग अलग जगह से देखने आते हैं, उनकी सबकी एक अलग अलग वो होती है।
1: जी, जी।
0: कहीं कोई पंच होता है तो एक पर्टिकुलर जगह से ही आपको एक लाफ्टर मिलता है, कहीं कुछ होता है वो सीखने को मिलता है। जैसे रंजीत सर भी कहते थे कि मराठी में इसे बहुत खूबसूरत वर्ड है प्रयोग।
1: जी, हर नाटक का जो शो है उसे प्रयोग कहा जाता है,
0: एक्सपेरिमेंट,
1: एक्सपेरिमेंट,
0: क्योंकि आपको लगेगा इस बार ये करके देखता हूँ,
1: जी
0: दूसरी बार दूसरा कुछ करके देखो,
1: बिल्कुल,
0: जो कि टेलीविजन में फिल्म्स में पॉसिबल नहीं है।
1: बिल्कुल, इसी से जुड़ा एक सवाल अभी मन में आ रहा था कि अक्सर कलाकार ये कहते हैं कि अभिनय तो हम करते हैं मगर जो मजा नाटक यानी रंगमंच पर अभिनय करने का है वो किसी और मीडियम में नहीं
0: नहीं आएगा। सही बोला आपने, अपना अपना मजा है,
1: हाँ,
0: इसमें भी मजा है, लेकिन जो थिएटर में मजा है,
1: हाँ,
0: लाइव परफॉर्मेंस वो चीज जो है वो आपको एक गूज़बम दे जाती है।
1: जी जी जी, जी। और उसका जो भी रिएक्शन आना है वो सब उसी वक्त
0: तुरंत आना, यू फील सो गुड कि जो मैंने किया उसका किस लेवल, अच्छा एक कलाकार उसके लेवल भी पहचान सकता है कि कहीं पे कम आया, कहीं पे ज्यादा आया,
1: जी
0: कहीं पे बहुत ज्यादा आया।
1: जी,
0: तो ये चीज जो है जो लाइव परफॉर्मेंस है उसमें बहुत बहुत फर्क पड़ता है।
1: हाँ।
0: और मैं एंजॉय करता हूँ डेफिनेटली। और आप 15 दिन महीना भर उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, लंबे लंबे 6-6, 10-10, 15-15 लाइनें डायलॉग्स हैं या फिर पेजेस आप याद कर रहे हो, हालांकि हर एक कैरेक्टर को पूरा का पूरा नाटक ही ध्यान में हो जाता है एक टाइम में।
1: जी।
0: महीने भर की प्रैक्टिस के बाद में वो जो आपका बेबी है जो आपको उधर डिलीवर करने को मिल रहा है वो आपको जो मजा देता है वो अलग ही है, मतलब उसका कहीं भी कंपैरिजन कहीं और किया नहीं जा सकता।
1: बिल्कुल,
0: तो दैट मेक्स अ सेंस। और वो जो एक बार हो गया वो तो फिर।
1: जी जी, अपनी बातों में आपने अपने कुछ लिखने का भी जिक्र किया था कि कुछ लिखा है आपने, और आप राजकुमार संतोषी साहब से जब मिलने गए और वो घर पे नहीं थे तो उनके सेट आउट में आप जो है अपनी कल्पना में डूब गए थे और आप इमेजिन कर रहे थे कि ऐसा सीन होगा तो मैं ये कह रहा था कि लेखक बनने की कोई राह कभी बनी नहीं, या निर्देशक होना आप चाहते थे?
0: मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन के दौरान मैं जब नागपुर में था
1: जी,
0: और वहां पे थोड़ी बहुत एक्सेस पॉसिबल थी क्योंकि छोटा शहर है तो आप कहीं जा सकते थे, तो वहां मैं रामटेक गया। रामटेक में मेरे बहुत अजीज दोस्त थे अमोल खंते
1: जी,
0: उनका एक एडवेंचर विलेज है, वो भी खाली था क्योंकि लोग तो आ नहीं सकते थे
1: जी,
0: तो मैं रिक्वेस्ट करके वहां चला गया। वहां पे खाली इसमें नेचर के साथ मैं बैठा रहता था, एक कॉपी और पेन लिए।
1: अच्छा।
0: और वहां मुझे एक पर्टिकुलर कहानी एक रियल इंसिडेंट से प्रेरित होके लिखने की इच्छा हुई और मैंने वो वहां पे लिखी। 5-6 दिन में वहां पे था तो मैं लिख रहा था दिन रात।
1: अच्छा।
0: फिर मैं वापस आया, नागपुर में भी रुका तो वहां भी मैं वो कहानी को डेवलप करता था। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है अमन कबीर, वो भी नागपुर से, उसके साथ मैंने वो डेवलप की कहानी।
1: अच्छा।
0: और एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जो कैसे प्रेरित करता है, थोड़ा सा डार्क कॉमेडी भी है।
1: अच्छा।
0: और लाइट कॉमेडी है।
1: तो ये कहानी मंच पर आ रही है या पर्दे पर?
0: हम चाहते हैं उसे पर्दे पर लाना।
1: हाँ।
0: हमारी बातचीत भी हुई काफी कुछ लोगों के साथ
1: जी,
0: लेकिन शायद एक फाइनेंसर या एक प्रोड्यूसर की और जरूरत है
1: जी, जी।
0: जो शायद कुछ और समय लगे, बट वी वुड लाइक टू डू दैट। तो वो प्रोजेक्ट एक जरूर है, IPC 324 ये उसका हमने टाइटल दिया था।
1: अच्छा।
0: IPC 324। और वो जरूर बगल में, पर मैंने साथ ही साथ एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की यहाँ पे
1: जी,
0: जो कि YouTube पे अवेलेबल है।
1: हाँ।
0: जिसका नाम है द लास्ट नाइट विथ हर। वो मैंने एक मेरे दोस्त के साथ फिल्म बनाई, 18 मिनट की शॉर्ट फिल्म है
1: जी जी,
0: एक बहुत ही खूबसूरत थॉट के साथ बनाई हुई। और फिर मैंने एक गाना वीडियो एल्बम भी मैंने डायरेक्ट किया जिसका नाम है पिया की दासी।
1: ओह yeah। क्या बात है।
0: तो मैं आपको गाना दूंगा अगर आप यहाँ पे भी कर पाए। सूफी सॉन्ग है
1: जी,
0: और वो रिलीज हुआ है कुछ 9-10 प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग, जैसे सारेगामा या
1: अच्छा
0: जी म्यूजिक टाइप के, तो वहां पे वो रिलीज हुआ है। तो वो हमने किया, वो मेरा एक दोस्त है राजीव वर्मा जिसने लिखा हुआ था, कंपोज भी उसने किया
1: जी जी,
0: बड़े खूबसूरत तरीके से हमने उसको हिल स्टेशन पे शूट भी किया।
1: हालांकि चलिए इसी गीत की झलक हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
0: बिल्कुल सर, थैंक यू। इसका नाम है, शीर्षक है पिया की दासी
1: जी, आइए सुनते हैं।

0: विपुल जी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक सीरीज आई थी, मिसेस सीरियल किलर।
1: जी
0: हम उसके बारे में जानना चाहेंगे, वो कैसे प्रोजेक्ट आप तक आया और कैसा रहा वो सारा अनुभव?
1: वो प्रोजेक्ट भी मुझे ऐसी एक लीडिंग कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू आया,
0: अच्छा
1: मिसेस सीरियल किलर, जिसमें हमारे देश के बहुत ही लीडिंग और बहुत ही सराहे हुए मनोज वाजपेयी साहब कैरेक्टर कर रहे थे, और मुझे उसमें एक सिक्योरिटी इंचार्ज की भूमिका दी गई।
0: अच्छा
1: छोटा सा किरदार था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हर एक, जैसे ऑडिशन भी हमें देना चाहिए, वैसे हर एक छोटा किरदार भी आपको कहीं ना कहीं आगे लीड दे सकता है।
0: जी
1: जब
0: जी
1: तक, जैसे मैंने एक साथ ही, मैं अभी इसकी बात निकली, एक छोटे किरदार से, तो हम लोग रुद्रा नाम की एक सीरीज आई थी, जिसे डायरेक्ट कर रहे थे राजेश मापुस्कर साहब,
0: अच्छा
1: बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे प्रतिभावान दिग्दर्शक हैं।
0: जी
1: रुद्र में लीड थे अजय देवगन साहब, तो वो कैरेक्टर मुझे आया। हालांकि मैंने बोला कि नहीं यार, एक दिन का है, छोटा सा कैरेक्टर नहीं करता हूँ। फिर बहुत बार बात हुई, उन्होंने कहा कि यार, वो डायरेक्टर सर ने बोला कि आपसे ही कराएं, उनको
0: अच्छा
1: अच्छा लगा है, और उनको थोड़ी टावरिंग पर्सनालिटी चाहिए अजय देवगन साहब के सामने। मैंने बोला, अजय देवगन साहब को के सामने कौन टावरिंग दिखेगा? ही सेड, नहीं, आपकी हाइट की वजह से आप वो हो जाओगे।
0: हाँ
1: तो मैंने बोला ठीक है। मैंने सोचा कि वैसे में मैं घर पे बैठने वाला हूँ, क्योंकि उस दिन मेरे पास काम था नहीं,
0: अच्छा
1: तो मैं एटलीस्ट घर पे अगर कोई ऑडिशन दूं, उससे बेटर मैं वहां पे जाके ऑडिशन दे दूं,
0: बिल्कुल
1: मतलब मैं परफॉर्म कर लूं, लोग कहीं ना कहीं तो देखेंगे।
0: बिल्कुल
1: थिंग्स हैपन दैट वे ओनली। आई वेंट देयर, दे लाइक माई वर्क। हालांकि बातचीत हमेशा होती है मेरी, बट शायद उनके जहन में कोई ऐसा करेक्टर आया इन फ्यूचर जो मुझे वो रिकमेंड करते, एटलीस्ट उन्होंने मेरा काम देखा हुआ है।
0: हाँ
1: सेम वे मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैंने किया था इंडियन पुलिस फोर्स, जो कि रोहित शेट्टी सर का था,
0: जी जी जी
1: तो वो एक कैरेक्टर उसमें भी छोटा था, आई वॉज पार्ट ऑफ कोर टीम, बट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन्स बहुत कम थे।
0: अच्छा
1: बट रोहित सर के साथ काम करना, उनका वर्किंग स्टाइल देखना, एक अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जिस तरह से पूरा झोंक देते हैं अपने आप को,
0: जी जी
1: उनकी वो और उनकी पूरी टीम, वो देखने लायक है, वो समझने लायक है, सीखने लायक है, तो वो बड़ा अच्छा लगा। फिर उसी दौरान बरसाते नाम का एक
0: जी
1: प्रोजेक्ट मेरे
0: जी
1: मेरे पास आया, बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता कपूर जी के प्रोडक्शन में।
0: क्या बात।
1: तो हालांकि फादर का कैरेक्टर जब मुझे बोला गया टू अ हीरोइन हु इज इन 20s,
0: अच्छा
1: मैंने बोला यार कुछ साल तो रुक जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो अडॉप्टेड डॉटर होगी आपकी,
0: अच्छा
1: और

0: अभी जैसे मेरा भी बेटा 15 साल का है, तो जो रहेगी आपकी बेटी वही 12-13 साल की एक रहेगी, और ये अडॉप्टेड डॉटर होगी ऐसे दिखाएंगे।
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: कैरेक्टर अच्छा था, जब मैं कैरेक्टर का स्क्रीन प्ले मैंने पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा ब्रीफ क्या है, तो कैरेक्टर अच्छा था। और मैं
1: हाँ
0: हमेशा कैरेक्टर के प्रोफाइल को ज्यादा महत्व देता हूं कि आप जो परफॉर्म करने वाले हो
1: जी जी
0: क्या उसमें कोई गुंजाइश है कि आप कुछ अलग कर पाओ, क्या कोई वेरिएशन आप दे सकते हो,
1: अच्छा
0: दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। इसलिए मैं निगेटिव कैरेक्टर्स को भी बहुत ज्यादा अहमियत देता हूं,
1: हाँ
0: क्योंकि एक पॉजिटिव कैरेक्टर अच्छा अच्छा गुड़ी गुड़ी सब अच्छा करेगा, थोड़ा बहुत कॉमेडी करेगा, लेकिन एक जो निगेटिव कैरेक्टर है वो अच्छा काम भी एक्सप्रेशन भी दे सकता है, गुड़ी गुड़ी सरकास्टिक विलन,
1: कई
0: तो
1: शेड्स हो सकते
0: कई
1: हैं
0: शेड्स हो सकते हैं।
1: जी।
0: सो जितने रस वो दिखा सकता है उतने एक पॉजिटिव इसमें शायद ही आते होंगे, तो मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स करने में बड़ा मजा आता है,
1: अच्छा
0: तो मैंने किए भी हैं कुछ नेगेटिव कैरेक्टर। मैंने कोड रेड नाम की सीरियल की थी जिसमें भाऊ जमींदार का कैरेक्टर किया था,
1: हाँ
0: मैंने सुना था वेरी गुड थिंग, जिसमें वो लोगों को अपने पासे में लेत के, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ था, ऐसा ट्रू
1: जी
0: स्टोरी,
1: जी जी
0: उनको गलत बीज देता है और जब वो खराब हो जाते हैं तो उनकी जमीन हथिया लेता है,
1: ओह
0: इस टाइप का एक वो कैरेक्टर था, लेकिन बड़ा मजा आया वो करते हुए। तो ये सब चीजें ऑन बेसिस, तो बरसाते में मुझे ऐसी लगा कि वो पॉजिटिव ही कैरेक्टर था
1: जी
0: लेकिन उसमें बहुत सारे वेरिएशन थे। तो
1: अच्छा
0: बरसाते मेरा एक ऑलमोस्ट 1 साल वो शो चला। एक वो सेटअप जो है अपने आप में बालाजी टेलीफिल्म्स बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है इंडस्ट्री का,
1: जी
0: तो वो एक देखने को मिला कि मल्टी कैमरा सेटअप, ह्यूज सेट्स और वेरी प्रोफेशनल एंड कट टू कट एटीट्यूड ऑफ द पीपल,
1: अच्छा
0: वो एक अपने आप में सीखने के लिए एक अच्छा ये था। बरसातें बहुत अच्छी मेरी जर्नी रही
1: जी जी
0: दैट
1: जी
0: वे।
1: क्या बात है। कार्यक्रम के इस मोड़ पे हमारे श्रोताओं को कौन सा गीत या कोई गजल आप सुनवाना चाहेंगे?
0: अगेन बीइंग पॉजिटिव ऑन द नोट्स, मैं बहुत ज्यादा वैसा भी नहीं हूं कि बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। जब किसी दिन आपका मूड सही नहीं है तो आप नॉर्मल भी रह सकते हो, उदास भी रह सकते हो, लेकिन ऐसे ही वक्त कुछ ऐसे गाने हैं जो मुझे बड़ा अच्छा फील करा जाते हैं,
1: जी
0: जिसमें से एक स्वदेश का गाना था यूं ही चला चल रही,
1: हाँ, मकरंद
0: वो
1: देशपांडे
0: मकरन जी
1: उसमें,
0: थे उसमें,
1: उन पर
0: हाँ
1: वो फिल्माया गया।
0: शाहरुख भाई ने भी उसमें साथ में उनके किया, और बहुत ही खूबसूरत एक उनकी कारवान में वो चले जा रहे हैं
1: जी जी
0: और
1: जी
0: ये गाना चल रहा है, और अभी बारिश आने ही वाली है,
1: हाँ
0: जून में हम बात कर रहे हैं आज, तो आई एम श्योर कि इन अ वीक्स टाइम वी विल गेट अ गुड रेन,
1: हाँ
0: और इस मौसम में बढ़िया अपनी गाड़ी या बुलेट मतलब जो भी है पॉसिबल आपको, और वो लेके आप चलो और फिर
1: हाँ
0: ये गाना अगर सुनो तो आप स्वदेश में ही पहुंच जाते हो।
1: क्या बात है। चलिए सुनते हैं यही गीत।
0: जी

0: विपुल जी, ये जो लंबा समय आपने इस क्षेत्र में बिताया है, अलग अलग तरह के अनुभव, और हम अभी इस गीत के पहले जो बात कर रहे थे कि एक अभिनेता कई बार मन में सोचता है कि काश मैं इस कहानी का डायरेक्टर होता, ये आपके मन में भी आया होगा, तो अभी क्या आगामी समय में आपके जो है प्रोजेक्ट्स क्या क्या होने वाले हैं, आपने भविष्य में क्या कुछ योजनाएं बनाई होंगी कि मुझे आगे क्या करना है, उसके बारे में जानना चाहेंगे।
1: मैं हमेशा इसी फील्ड से रिलेटेड जुड़ा रहना चाहूंगा
0: जी।
1: तो सबसे ज्यादा रिसेंटली 4 महीने पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की, एक एनजीओ है सेंटर ऑफ साइंस फॉर विलेजेस वर्धा में।
0: अच्छा।
1: जिसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की, आई प्रोड्यूस्ड इट, क्रिएटेड इट एक्चुअली विद फ्रेंड ऑफ माइन हु इज कैमरा। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही कुछ डॉक्यूमेंट्रीज या इन्फॉर्मेटरी फिल्म्स, ऑडियो विजुअल्स मैं एक साइड बनाता रहूँ, एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस, जिसके साथ साथ हम हमारे फिल्म्स को भी फंड कर पाए।
0: अच्छा।
1: हमारे खुद के प्रोडक्शन के अंडर हम, जैसे मैंने आपको बताया IPC 324, एक मेरे दिमाग में बहुत अच्छी स्टोरी है, जो रंजीत सर को भी स्टोरी बहुत पसंद आई
0: जी,
1: बट हालांकि वही फाइनेंस के चलते वो फिलहाल तो बैक बर्नर पे है, बट आई एम श्योर कभी ना कभी फ्रंट बर्नर पे आके हम उसे पकाएंगे। और फिल्म्स मेजरली मैं करना चाहता हूँ, ऐसा अभी चॉइस तो होता नहीं है, लेकिन आई एम स्टिल वेटिंग फॉर गुड कैरेक्टर
0: जी।
1: मैंने वागले के बाद में, अभी वागले की दुनिया के बाद में अभी कोई लंबा कमिटमेंट साइन तो नहीं किया है
0: जी,
1: तो आई एम वेटिंग फॉर इट कि जो लेवल पे मनोज वागले ने डिलीवर किया था उसी लेवल का कोई एक अच्छा किरदार।
0: और एक सवाल हमेशा अभिनेताओं से खास करके पूछा जाता है कि बचपन से हम तरह तरह की कहानियां पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, और कोई ऐसा कैरेक्टर होता है, कोई रोल होता है जो जहन में बस जाता है कि काश मुझे ये करने को मिल जाए, तो वो कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा चरित्र है जो आप निभाना चाहते हैं, अब तक मौका नहीं मिला?
1: ये अभी आजकल इतना एक्सपोजर बढ़ा हुआ है बिकॉज दायरे OTT अपने आप में इतना बड़ा है, इतने सारे चैनल्स आए हैं, तो बहुत अलग है। अगर पहले के इसमें से देखा जाए तो बच्चन साहब की एक फिल्म थी
0: जी,
1: मैं आजाद हूं, वो कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद आता था।
0: अच्छा।
1: क्योंकि एक ऐसा इंसान इस शहर में आता है जिसका कोई लेना देना है नहीं उस शहर से, और बड़ा ही फकीर टाइप का है, और वो उस शहर को बदलने के लिए, उस सिस्टम को बदलने के लिए सबसे लड़ जाता है।
0: ओहो, क्या बात।
1: तो वो एक बड़ा खूबसूरत, और उसका गाना भी उतना ही खूबसूरत था, इतने बाजू इतने सर गिन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से।
0: वाह।
1: तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा गाना उस इसमें था, और फिल्म भी उतनी खूबसूरत थी। तो मैं चाहता हूँ इस टाइप का जो एक चैलेंजिंग किरदार हो, वो करने को कभी मिले तो मजा आए।
0: हमारे श्रोताओं के लिए कौन सा गीत आपके मन में आ रहा है?
1: मेरे ख्याल से ये जो गाना मैंने अभी बताया, ये गाना ही
0: गाना
1: बहुत एप्ट होगा कि हम जब जी जान से खेलते हैं
0: जी
1: जान से लड़ते हैं
0: जी,
1: तो दुश्मन तो मैं बाद में बोलूंगा, दुश्मन नॉट नेसेसरी कि हमेशा दुश्मन ही सामने हो, लेकिन हम अगर जी जान से कोई चीज करते हैं, पैशनेटली कोई चीज करते हैं, तो आपको मजा आता है और वो चीज होती जरूर है मुकम्मल।

0: दुश्मन जरूरी नहीं कि कोई शख्सियत हो,
1: शख्सियत हो,
0: हमारे मन के अंदर जो बुरे विचार हैं,
1: ट्रू,
0: वो भी दुर्भावनाएं जो होती हैं, वो भी हमारी दुश्मन है,
1: ट्रू ट्रू। और ये इन सबको लड़ने के लिए आपका पैशन होता है
0: जी,
1: आपकी फैमिली होती है, जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया हमेशा जब भी पॉसिबल हो, अभी भी मुझे कभी लगता है तो दे आर देयर टू हेल्प मी। आपका खुद का एक परिवार है, आपके दोस्त हैं, ये सब आपको उन सब चीजों के लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं और लिव लाइफ हैप्पीली, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग।
0: क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। विपुल जी, आपका अब तक का जो करियर ग्राफ रहा है
1: जी,
0: इसमें आपने वेब सीरीज की है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कई जगह आप एक्टिव रहे हैं, आपने मंच पर भी अपने आप को आजमाया है, आपने फिल्मों में काम किया है, टीवी सीरियल्स में आप आए हैं। विपुल देशपांडे कहाँ बहुत ज्यादा सहज होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं?
1: बतौर कलाकार विपुल देशपांडे ने हर जगह सहजता से ही काम करना चाहिए
0: जी जी।
1: बट अगर पर्सनल बात की जाए तो थिएटर, ये एक रंगमंच जो है,
0: हाँ,
1: ये किसी भी कलाकार के लिए शायद सबसे करीबी होता है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि वहां पे जो आपके व्यूअर्स का रिस्पॉन्स है आपको तुरंत मिल जाता है।
0: हाँ।
1: और उसे बहुत खूबसूरती से रंजीत साहब कहते थे कि उसे प्रयोग कहा जाता है, उसे शो या प्ले नहीं कहा जाता, प्रयोग, हर एक प्रयोग जो होता है उसमें आप

0: अलग अलग एक्सपेरिमेंटल कर सकते हो कि कहीं पे आपने ये पंच लिया, कहीं पे आपने थोड़ा लंबा पॉज लिया, सो यू नो यू कैन कीप प्लेइंग, आप खेलते हो उसमें.
1: जी,
0: तो वो एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है जो कि आपको आपके प्रेक्षकों से जोड़े रखता है. तो मेरे ख्याल से रंगमंच मेरा सबसे फेवरेट रहेगा, और नो डाउट फिल्म्स, ओटीटी, टेलीविजन, ये इसलिए कि आप एक जगह काम करके बहुत सारे करोड़ों लाखों लोगों के सामने पहुंच सकते हैं, जो कि रंगमंच में पॉसिबल नहीं है.
1: जी, हम जो भी अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, अचीव करते हैं, तो उसके लिए हम किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं.
0: जी,
1: और जिनसे हम प्रेरित होते हैं ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, तो वो जो टर्निंग पॉइंट होता है जहां से जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है, तो हम हमेशा चाहते हैं कि ये कृतज्ञता किसी रूप में व्यक्त की जाए. तो विपुल, आप किसे के प्रति अपने कृतज्ञता व्यक्त करेंगे?
0: ये कृतज्ञता शायद मैं मेरे माता पिता के प्रति ही व्यक्त करना चाहूंगा.
1: हाँ हाँ,
0: भले ही उन्होंने पहले मुझे वो अपॉर्चुनिटीज, उन्हें भी पता नहीं था कि एक्सपोजर नहीं था जो मुझे वो दे पाते, NSDFTI, ये सब चीजें हमें पता नहीं थी.
1: हाँ.
0: लेकिन उसके बाद जब मैंने बोला कि मुझे इस फील्ड में काम करना है, तो मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने मुझे काफी सपोर्ट किया, आज भी करते हैं.
1: जी,
0: एक कलाकार की जिंदगी बड़ी अनसर्टन होती है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि, तो सभी तरह से वो मुझे सपोर्ट करते हैं आज भी. हाँ. और यहाँ पे जैसे इंस्पिरेशन की अगर बात करें, तो डेफिनेटली मैं बचपन से, जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, और मैंने सर को बोला भी था कि बच्चन साहब हमेशा इंस्पिरेशन रहे हैं. उनको देख के, उनकी आवाज, उनका कद काठी, भगवान की दया से कद काठी मैं थोड़ा मैच कर लेता हूँ.
1: जी,
0: बाकी बहुत सारी चीजें उनसे ही सीखी है. मतलब एकलव्य जैसा सफर रहा है.
1: हाँ.
0: जो कि दूर से देख के, ऑब्जर्व करके सीखने वाली बात होती रही है.
1: वाह.
0: वो भले फेस टू फेस और पर्सन टू पर्सन, मतलब
1: जी,
0: ट्रेनिंग ना हुई हो, बट ये ऑब्जर्वेशन वाला, एकलव्य वाला जो है, वो मुझे लगता है मेरा इसमें बहुत रहा है. और मैंने बच्चन साहब को ये बोला भी था.
1: जी,
0: कि आपसे ही सीखते आए हैं बचपन से.
1: सीखने की जो ये प्रक्रिया है, इसमें यहीं से कहीं संघर्ष भी शुरू होता है. तो हम इस पर बात करेंगे, मगर यहाँ इस मोड़ पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का.
0: जब संघर्ष की बात आई है, तो एक मिल्खा सिंह जो थे, मिल्खा जी,
1: हाँ,
0: उनके फिल्म का एक गाना है कि जिंदा है तो प्याला पूरा भर दे.
1: हाँ,
0: ये मुझे बड़ा बेहतरीन गाना लगता है.
1: क्या बात है.
0: जी,
1: चलिए सुनते हैं.

0: इस गीत से पहले विपुल हम बात कर रहे थे कि जीवन में हम कुछ करते हैं और किसी मुकाम तक पहुंचते हैं तो उसमें संघर्ष की अपनी भूमिका होती है
1: जी।
0: इस संघर्ष के बारे में अब तक जितनी बातें आपसे हुई है तो आपके एक अलग सोच रखते हैं संघर्ष के बारे में, और जहां तक फिल्मी दुनिया की बात है, ये तमाम जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है इसमें काम करने वाले लोग सबकी अपनी अलग कहानी होती है और सबका अलग संघर्ष होता है।
1: बिल्कुल,
0: तो वो कौन सा विचार है जो आप इस संघर्ष के बारे में कहना चाहते हैं, वो अलग बात जो है आपके मन में?
1: संघर्ष, जैसे कि शायद पहले भी हमारी बात हुई कि संघर्ष जिंदगी में हमेशा रहेगा। जिंदगी है तो संघर्ष है
0: जी,
1: और अगर संघर्ष नहीं चाहिए तो युड़ाए तो ये तो खैर नहीं होता है, हम लोग करते रहते हैं। और मैं चाहता हूं कि हर किसी इंसान को जिस फील्ड में जाना है उसके लिए शायद कोई गाइडेंस अवेलेबल हो,
0: अच्छा,
1: तो बहुत अच्छी बात होती।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: अभी यहाँ पे ये गाइडेंस ऑलमोस्ट अवेलेबल नहीं है। हालांकि राहत इंदौरी साहब के कुछ शेर है जो मैं हमेशा पसंद करता हूँ कि हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे यहाँ से, कम से कम राह के पत्थर तो हटा देते।
0: ओह
1: तो मैं ये चाह रहा था कि ये चीज एटलीस्ट मेरे बाद में जितने लोग आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में,
0: हाँ,
1: उन्हें एक गाइडेंस के तौर पे, एक ब्रदरली फ्रेंडली गाइडेंस के तौर पे अवेलेबल हो। तो 2018 में स्ट्रगल स्मार्ट नाम से एक छोटा सा स्टार्टअप मैंने चालू किया था,
0: अच्छा,
1: जिसमें एक एक्सपोजर वर्कशॉप मैंने कहा था। कलाकार को कला सिखाना बहुत कम दिनों में पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उसे थोड़ा ब्रशअप कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं, एक्सपोजर दे सकते हैं इंडस्ट्री का
0: जी।
1: जो हमने किया, मैंने ट्राई किया, उसमें से 6 पार्टिसिपेंट्स आए थे, 3 मेल 3 फीमेल, उसमें से 3 पार्टिसिपेंट्स आज फुल फ्लेज ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं बतौर कलाकार।
0: वाह वाह।
1: और उसके बाद भी हमने कुछ ऑनलाइन सेशंस लिए, सिम्बायोसिस कॉलेज के साथ भी मैंने सेशंस लिए 2 साल। उसमें यतिन कारेकर जी, अश्विनी कर्शिकर मैडम, राजेंद्र शिराडकर जी
0: जी,
1: और शंतनु रोड़े जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं डायरेक्टर
0: जी,
1: ऐसे बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया। ये कंटिन्यू करना चाह रहा था, बट देन आई गॉट बिजी विथ कपल ऑफ मोर प्रोजेक्ट्स, वो हो नहीं पाया। बट मैं अभी भी चाहता हूँ कि एक ऐसा मैं कुछ जरिया बनाऊं कि जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से लोग आए और एक मिनिमम फी स्ट्रक्चर में उसको एक्सेस कर पाए। और जो यहाँ पे लोग हैं, जो फॉर एग्जांपल जिनके पास समय है
0: जी,
1: जो गाइड कर सकते हैं, जैसा अगर कोई कलाकार एक्टिंग उस दिन असाइनमेंट नहीं है तो वो फ्री होता है, उसके पास में अगर समय है तो वो आके हमारे साथ समय बिताएं, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो
0: जी, जी, जी,
1: लोगों को उसके बारे में पता चलता रहे।
0: क्या बात,
1: तो ये मेरा सबसे जरूरी है। अदरवाइज तो वहां पे घर पे बैठ के थोड़ा सा डरते ही है कि कौन जाएगा, कैसे जाएगा। तो इस पे भी एक इंदौरी साहब का शेर था कि लोग हर मोड़ पे रुक के संभलते क्यों हैं?
0: अच्छा,
1: अगर इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं?
0: ओह क्या बात,
1: दिस इज वन ऑफ द थिंग। ये हमने रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए और मैं चाहता हूं कि मैं कंटिन्यू करूं। तो स्ट्रगल स्मार्ट मैंने नाम भी इसलिए ऐसा चुना और वो मुझे मिल भी गया, strugglesmart.com, कि आपको स्ट्रगल करना है तो स्मार्टली करो,
0: अच्छा,
1: और उसको दिल से करो, उसको एंजॉय करके करो। संघर्ष कोई गलत बात नहीं है या कुछ नेगेटिव सोच वाली बात नहीं है,
0: हाँ,
1: पॉजिटिव बात है।
0: इसमें कोई फिलहाल जो भारत में किसी कोने में कोई कलाकार रह रहा है और वो चाहता है कि आपसे जुड़े, इस आपके स्ट्रगल स्मार्ट से जुड़े, तो क्या इस वेबसाइट पे ऐसी कोई व्यवस्था है?
1: ये व्यवस्था हमारी, जब मैंने कहा था कि 2018 में चालू किया था, ये 2-3 साल रेगुलर बेसिस पे चलती रही। लोग कॉन्टेक्ट कर सकते थे, हम उनको डिटेल्स भेज के हमारे प्रोग्राम से अलाइन कर सकते थे। जैसा मैंने कहा कि 3-4 साल से मैं कुछ ज्यादा बिजी हो गया बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ, तो फिलहाल strugglesmart.com वेबसाइट मेरी ऑपरेटिव नहीं है, इट इज विथ मी।
0: अच्छा,
1: द डोमेन नेम इज ऑल्सो विथ मी, जो हमारे साथ ही है
0: जी, जी।
1: मैं उसे फिर से एक्टिव करना चाहता हूँ, और तब तक अगर बाई चांस किसी को करना हो तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई डेफिनेटली आई वुड लव टू गाइड देम। विपुल देशपांडे ऑफिशियली मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पे हम डेफिनेटली उनको गाइड कर सकते हैं। और बहुत जल्द मैं चाहूंगा कि स्ट्रगल स्मार्ट भी एक्टिव हो और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइड कर पाऊं, जितना मैं कर सकता हूं। मैं बहुत बड़ा कलाकार तो हूं नहीं, लेकिन जितना मैं कर सकता हूं मेरे ख्याल से वो मेरे लिए
0: निश्चित रूप से। और जितने भी कलाकार हैं जो संघर्षरत हैं और जो आना चाहते हैं, तो

0: उनकी ओर से भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं। और यहां हम कोई गाना सुनते हैं।
1: ये किस्सा भी शायद हमारी बात हुई थी
0: जी
1: कि लोग यहाँ पे आपको कभी कभी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं।
0: हाँ,
1: कि आपको बोलते हैं कि हाँ भी आप आ जाओ, आपको बोला जाता है कि आप कोर टीम के सदस्य हो।
0: हाँ,
1: सपोज टू बी कि आप बहुत अच्छा, आपका कैरेक्टर होगा, लेंथ होगी, तो होता है। लेकिन एक मेरे साथ भी वाकया हुआ है कि मैंने एक बहुत बड़ी वेब सीरीज की
0: जी,
1: जिसमें मुझे कोर टीम का सदस्य बनाया गया और बहुत अच्छा रिस्पेक्ट, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के साथ रखा गया, लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन नहीं थे।
0: हाँ,
1: तो
0: आप मुख्य कलाकारों में तो हैं
1: बिल्कुल,
0: मगर इतने ऐसे सीन नहीं है, डायलॉग्स नहीं है, काम नहीं है, और कोई उस रोल का अपना अलग महत्व नहीं,
1: महत्व नहीं। तो वो बड़ा ही मुझे खलता रहा कि यार मैं, एक लिमिटेड टाइम होता है हर एक के पास।
0: हाँ, हाँ।
1: आज मेरे पास में इस उम्र के यही है 10 साल
0: जी,
1: उसके बाद शायद मैं दूसरे जोन में जाऊंगा। शायद वो सीनियर सिटीजन वाला मैं करूंगा, या 15 साल बाद कुछ और सीन रहेगा।
0: हाँ,
1: तो मैं इस दौरान जितनी चीजें करना चाहता हूँ करना चाहता हूँ कि उसको मैं न्याय दे सकूं। तो दूसरी बार जब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया तो मैंने कहा भाई मुझे 50 दिन मत बुलाओ।

0: भी वाकया हुआ है कि मैंने एक बहुत बड़ी वेब सीरीज की
1: जी
0: जिसमें मुझे कोर टीम का सदस्य बनाया गया और बहुत अच्छा रिस्पेक्ट, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के साथ रखा गया, लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन नहीं थे।
1: हाँ,
0: तो
1: ना आप मुख्य कलाकारों में तो हैं,
0: बिल्कुल
1: मगर इतने ऐसे सीन नहीं है, डायलॉग्स नहीं है, काम नहीं है, और कोई उस रोल का अपना अलग महत्व
0: इम्पोर्टेंस
1: नहीं है।
0: महत्व नहीं है।
1: ओह
0: तो वो बड़ा ही मुझे खलता रहा कि यार मैं एक लिमिटेड टाइम होता है हर एक के पास।
1: हाँ
0: आज मेरे पास में इस उम्र के यही है 10 साल,
1: जी
0: उसके
1: जी
0: बाद शायद मैं दूसरे जोन में जाऊंगा, शायद वो सीनियर सिटीजन वाला मैं करूंगा, या 15 साल बाद कुछ और सीन रहेगा।
1: हाँ
0: तो मैं इस दौरान जितनी चीजें करना चाहता हूँ करना चाहता हूँ कि उसको मैं न्याय दे सकूं। तो दूसरी बार जब उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया तो मैंने कहा भाई मुझे 50 दिन मत बुलाओ, मुझे आप एक ही दिन बुलाओ, बट वो एक दिन में एक सीन ऐसा मेरा होना चाहिए कि जिसमें मैं परफॉर्म कर रहा हूं,
1: लगे कि मैंने काम
0: लगे कि
1: किया।
0: विपुल देशपांडे ने दिया है।
1: जी जी जी
0: तो
1: जी
0: मेरा
1: बिल्कुल
0: सीधा सीधा मानना है कि अगर मैं ताज हूं तो ताज को सर पे सजाए लोग,
1: ओहो,
0: और अगर मैं खाक हूं तो खाक तो उड़ा देनी चाहिए।
1: क्या बात है, क्या बात है,
0: तो बस यही एक चीज थी जो मैं ऐड करना चाह रहा था।
1: क्या बात, क्या बात।
0: बाकी संघर्ष की बात हो रही थी, उसमें दंगल का एक टाइटल ट्रैक है, वो गाना है कि माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे। तो
1: वाह,
0: संघर्ष की शुरुआत माँ के पेट से होती है और वो मरघट तक होती है।
1: क्या बात, बहुत ही खूबसूरत
0: बहुत
1: गाना है।
0: खूबसूरत गाना
1: आइए सुनते हैं।
0: जी।

0: तो जितनी आपकी भविष्य की योजनाएं हैं उनके लिए जो आप करना चाहते हैं आगे, जितने आपके सपने हैं जो अभी पूरे होने बाकी है, उनके लिए हम विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विविध भारती का, आपकी पूरी टीम का, कि मुझ जैसे नाचीज को भी आपने यहाँ पे आने का मौका दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैंने आने के बाद वॉल ऑफ फेम आपका और
0: जी
1: लॉबी ऑफ फेम भी देखा, यहाँ पे कौन नहीं आया है।
0: जी जी
1: मुझे बड़ा ही गर्व हो रहा है कि मैं इसी जगह पे आके बैठा हूँ और एक प्रोग्राम में आपसे बात कर रहा हूँ, रूबरू हो रहा हूँ। थैंक यू सो मच।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभिनेता विपुल देश पांडे से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बांग, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे थे। हम आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.2 MHz पर। शाम के 5 बज रहे हैं और अब युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त शिवाधी। स्वागत करती हूं आप सभी श्रोताओं का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे इस कार्यक्रम का लुत्फ ज़रूर उठा रहे होंगे। साथियों, हमारे आज के इस कार्यक्रम को और रोमांचक बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक और रेडियो दोस्त।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रेडियो साथी।

0: राजकुमार खाती, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्यार भरे कार्यक्रम युवाणी में। साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, और ले चलते हैं हम आपको आज के इस प्रोग्राम की जो विषय है, जो भूमिका है, उसके बारे में आपको पहले हम अवगत कराते हैं। तो शिवादी, आज हम हमारे श्रोताओं के साथ किन विषयों पर, कौन सी जानकारी है जिन पर हम बात करेंगे?
1: बिल्कुल, हम हमारे श्रोताओं के साथ करेंगे चर्चा राजस्थान का लोक संगीत और युवा पीढ़ी पर। उनसे करेंगे बातचीत छोटे छोटे शहरों के युवाओं की बड़ी बड़ी उपलब्धियों पर, और आज उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जिसे सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि हर वर्ग का इंसान जो है आजकल चपेट में आ रहा है, डिजिटल अरेस्ट
0: जी।
1: और साथ में चिराग जल रहे हैं युवा डायरी में आज हमारे खास दोस्तों के लिए, खास भेंट वार्ता राहुल जी से राजकुमार जी की बातचीत,
0: वही जानकारी का विषय होगा। साथियों, सुकन्या समृद्धि योजना और आज के इतिहास के बारे में भी हम जानेंगे, साथ ही हम जानेंगे रोजगार सूचनाएं और होगा मनोरंजन। तो हम शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की एक प्यारे से गीत के साथ।

0: आइए साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना। साथियों, हमारी जो सदियों पहले जो गुजर चुकी हैं पीढ़ियां, उनको हम कैसे जानेंगे, उनको हम कैसे समझेंगे, या जो पीढ़ियां अभी कुछ समय पहले आई थी, हम उनको कैसे जानेंगे, हम हमारे दादाओं को, हमारे पूर्वजों को कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, कैसी उनकी भाषा थी और कैसे उनके विचार थे, कैसा उनके समय में हमारे जो शब्द है, जो संस्कृति थे, वो कैसे लेकर आए थे और आने वाली पीढ़ियां उसको कैसे जानेंगी। तो साथियों, हम आज 19 ईयर वाले जो सॉन्ग सुनते हैं और आज के जो सॉन्ग सुनते हैं, उनमें जो फर्क है, उनसे हम समझते हैं कि जैसे जैसे हम डेवलप हो रहे हैं, वैसे वैसे संगीत की परिभाषा भी बदल रही है। पर साथियों, जो राजस्थान का लोक संगीत है, कहा जाता है कि वो ना पहले बदला था ना आज बदला है। हाँ, उसके तरीके बदले हैं, पर उसमें जो जीवंतता है वो आज भी विद्यमान है और सदियों तक रहेगी। हाँ, पर वो तभी रहेगी जब हमारे युवा साथी उसको जीवंत बनाए रखने में भूमिकाएं निभाना शुरू करेंगे। तो साथियों, हमारा जो राजस्थान का लोक संगीत है, वो हमारी आन बान शान और हमारी मर्यादा का प्रतीक है। वो हमारे जीवन में, या यूं कह ले कि आम लोगों के जीवन की जो भाषा है, उसे उजागर करने वाले होते हैं।
1: बिल्कुल राजकुमार जी, जब भी हम राजस्थान की बातें करते हैं, तो राजस्थान का नाम सुनते ही हमारे मन में विशाल किले, सुनहरे रेगिस्तान, रंग बिरंगी पगड़ियां, पारंपरिक वेशभूषा और मधुर लोकगीतों की तस्वीर उभर आती है। राजस्थान की संस्कृति जितनी समृद्ध है, उसका लोक संगीत उतना ही मधुर, जीवंत और भावपूर्ण है। यह केवल मनोरंजन का माध्यम ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, इतिहास और लोक जीवन का जीवंत दस्तावेज है।
0: सही है साथियों, समय के साथ साथ समाज और तकनीकी दोनों बदल रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी आधुनिक संगीत, हाँ, पॉप संगीत हुआ, रेप संगीत है, डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे में यह चिंता भी हमें सताती है कि कहीं हम हमारी जो लोक परंपराएं हैं, हमारी प्राचीन जो संस्कृति है, हम कहीं उसे पीछे तो नहीं छोड़ दे जा रहे, या हम उससे विमुक्त तो नहीं हो रहे।
1: बिल्कुल राजकुमार जी, अभी आपने जैसे बात कहा कि कहीं हमारे आजकल के युवा हैं, वो पॉप संगीत वगैरह ये बहुत अधिक सुनते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एक बार यदि कोई किसे हमारे राजस्थान गीत के सुनने की लत लग जाए
0: जी,
1: मैं बताऊं कि आपको, आप उभर ही नहीं सकते हैं उस लत से। इतने मधुर, इतने प्यारे प्यारे कलाकार हैं कि एक जो वो गीत है ना, वो लूप पर चलता ही रहता है।

0: वाओ, मतलब क्या आवाज है इनकी। लेकिन हमारी पीढ़ी जो है इनसे कब रूबरू हो पाएगी?
1: देखिए, राजस्थान के लोक संगीत की मैं बात करूं तो दुनिया में मुझे लगता है कि राजस्थान लोक संगीत ही शायद एक ऐसा संगीत है जो विविध भाषाओं में है।
0: बिल्कुल,
1: अगर आप हिंदी में कोई संगीत सुनते हो तो वो आपको केवल हिंदी भाषा में मिलेगा, अगर इंग्लिश में कोई संगीत आप सुन रहे हो तो वो आपको इंग्लिश में मिलेगा, या अदर वो कोई भाषा है तो वो सुनोगे तो आपको वो उसी भाषा में मिलेगा।
0: बिल्कुल,
1: राजस्थानी में अगर आप सुनते हो तो आपको मेवाड़ी, मारवाड़ी,
0: हाड़ोती,
1: शेखावाटी, हाड़ोती, कई सारी भाषाएं, और वो देखिए वहाँ जो संगीत की जो परिभाषाएं हैं, जो संगीत के बोल हैं, वो ऐसे होते हैं जैसे एक बच्चा जन्म लेता है ना माँ के गर्भावस्था में जब वो आता है, और जब वो जन्म लेता है और वो वृद्धावस्था में आकर जब अपनी अंतिम सैया तक वो होता है, या फिर यूं कह ले कि वो परमात्मा के पास चला जाता है, तब तक की जो परिभाषा होती है, जो वो जीवन होता है, उसको वैसे के वैसे जीवंत अपने शब्दों में बखान करते हैं।
0: बिल्कुल, राजस्थान का लोक संगीत अपनी विविधता के कारण ही पूरे देश विशेष में एक विशेष स्थान रखता है। अभी आप बात कर लीजिए केसरिया बालम पधारो मारे देश, केवल एक गीत ही नहीं बल्कि राजस्थान की अतिथि सत्कार की परंपरा का प्रतीक भी है।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: वही हम बात करें घूमर, बन्ना बन्नी, गोरबंद, पनिहारी, मांड और तेजा जी के भजन जैसे गीत आज भी जो है लोगों के दिलों में रास करते हैं।
1: जी आपने सही कहा। अगर देखें तो हम यहाँ का खान पान जो है ना, खान पान से रिलेटेड जो बोल होते हैं, अगर आप उन गानों को भी, अगर उन संगीत को भी अगर आप सुनते हो तो मैं मानता हूँ कि आप राजस्थानी डिशेस बना सकते हो, उन गानों को सुनकर भी आप बना सकते हो।
0: बिल्कुल,
1: उनमें पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होती है उसे भी बताया गया है, आप कैसे वेशभूषा पहनते हो उसके बारे में बताया गया है, हर एक बात यहाँ बोल के माध्यम से बताइए, उसे एक संगीतबद्ध पंक्तियों में पिरो कर और मधुर भाषा के साथ प्रस्तुत किया है।
0: बिल्कुल, ये जो कि हम बात कर रहे हैं संगीत की, तो थोड़ी सी बात कर ले वाद्य यंत्रों की।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे गीत को और मधुर बनाने में।
1: देखिए बिना वाद्यों के तो संगीत अधूरा होता ही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अभी हम बात करें कमायचा, मोरचंग, अलगोचा, गड़दाल, ढोलक, नगाड़ा और सारंगी जैसे कई वाद्य यंत्र हैं जिनकी धुन सुनते ही मन राजस्थान की संस्कृति में खोसा जाता है। इन वाद्य यंत्रों की सबसे बड़ी खूबी है कि इनमें हमारी मिट्टी की खुशबू होती है और लोक जीवन की सादगी झलकती है।
1: जैसा आपने कहा कि केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश जो राजस्थान का गीत है,
0: बिल्कुल
1: आप उस गीत को अगर सुनते हो तो आपको हूबहू लगता है, अगर आपने उसको थोड़ा सा समझा तो वो गीत आपको ऐसे प्रस्तुत हो रहा है या वो ऐसे दिखा रहा है मानो पूरी राजस्थानी जनता मिलकर आपका स्वागत कर रही है।
0: बिल्कुल,
1: आप हमारे अतिथि हो, हम आपका स्वागत कर रहे हैं इन बोल के माध्यम से।
0: बिल्कुल,
1: और बिल्कुल मधुर वाणी के साथ में।
0: जी, जैसा अभी हमने कहा कि कई हमारे युवा पीढ़ी के जो लोग हैं वो थोड़े से पदभ्रमित हैं या हम कहें उन्हें जान नहीं है, पहचान नहीं है इनकी, लेकिन इसी की जगह यदि हम बात करें, एक अच्छी बात यह है कि कई युवा कलाकार राजस्थान के लोक संगीत को नए अंदाज में दुनिया तक पहुंचा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोक गीतों की जो आधुनिक संगीत है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं और युवा इन गीतों को पसंद कर रहे हैं और दुनिया भर में इनकी जो एक नई पहचान देने की कोशिश भी कर रहे हैं।
1: और हाँ, ये बात भी सही है और ये एक खुशी की बात भी है कि अनेक युवा जो हमारे हैं वो लोक गायन, लोक नृत्य और पारंपरिक वाद्य यंत्रों को सीख रहे हैं। विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, सांस्कृतिक संस्थाओं में जो लोक संगीत के जो आयोजन होते हैं, जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उनमें हमारे युवा आज बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। हमारी जो युवतियां हैं वो राजस्थानी वेशभूषा को पहनकर और राजस्थानी गीतों पर जो अपनी थिरकन प्रस्तुत करती है, मानो जो दर्शक है वो सहसा मंत्र मुक्त हो जाते हैं और राजस्थान की संपूर्ण परिवेश को वो उसके माध्यम से समझ जाते हैं।
0: बिल्कुल, हमारी सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है कि हमारा जो राजस्थान के जो ये गीत हैं या हमारा कल्चर है ये प्रिजर्व्ड रहे, और सिर्फ सरकार ही नहीं, सिर्फ विद्यालय ही, महाविद्यालय ही नहीं, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी एक कदम उठाएं और हमारी आने वाली पीढ़ी या इस पीढ़ी को ये बताएं कि हमारा गीत क्या है, हमारा कल्चर क्या है, और हम चाहते हैं यदि कि राजस्थान का लोक संगीत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रहे तो हमें अपने युवा, हमारे बच्चों को ये महत्व देना पड़ेगा कि ये हमारे राजस्थान का लोक संगीत हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, उन्हें परिचय कराना होगा।
1: देखिए, युवाओं की हमारी जो लोक संगीत को बचाने की जो परंपरा है उसमें अगर भूमिका की हम बात करें तो शिवाजी, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो पिताजी हैं वो कुछ समय पहले जवान थे, युवा थे, अब वो वृद्ध हो गए।
0: बिल्कुल,
1: आज हम जवान हैं, हम वृद्ध हो जाएंगे, हमारी जो

0: पीढ़ी आएगी वो जवान रहेगी, वो फिर वो रद्द हो जाएगी, फिर उनके बाद जो पीढ़ी आएगी, यानी कि युवा ही अगर बचा के रखेंगे
1: बिल्कुल
0: तो सब कुछ बचा रहेगा। अगर युवाओं ने हमारी संस्कृति को बचाना छोड़ दिया तो मानव संस्कृति समूल नष्ट हो जाएगी। इसलिए युवाओं को संस्कृति को बचाने के लिए अंत तक प्रयास करना होगा।
1: बिल्कुल, और राजस्थान का लोक संगीत केवल गीत ही नहीं बल्कि ये हमारी पहचान है, हमारी विरासत है, हमारी आत्मा की आवाज है। इसे जीवित रखना केवल कलाकारों की ही जिम्मेदारी थोड़ी है बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि आज का युवा इसे अपनाएगा, सीखेगा, आगे बढ़ाएगा तो हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इस अनमोल धरोहर पर गर्व कर सकेगी। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी साथियों, अपनी संस्कृति से जुड़ना, पीछे लौटना नहीं बल्कि अपनी पहचान को मजबूत बनाना है। आइए हम सब मिलकर राजस्थान के लोक संगीत को नई पीढ़ी की आवाज बनाएं ताकि हमारी अमूल्य विरासत सदैव जीवित रहे।
0: और आइए राजस्थानी भाषा का ये लोकगीत।

0: फिर से स्वागत है साथियों आपका हमारे कार्यक्रम में। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली चर्चा की ओर, छोटे शहरों के युवाओं की बड़ी उपलब्धियां। साथियों, अक्सर यह धारणा रही है कि सफलता केवल बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को ही मिलती है। माना जाता है कि अच्छी शिक्षा, बेहतर सुविधाएं और बड़े अवसर केवल महानगरों में उपलब्ध हैं, लेकिन आज का भारत इस सोच को बदल रहा है। आज छोटे शहरों, कस्बों और गांवों के युवा अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के बल पर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं।
1: जी हाँ साथियों, आज हमारे छोटे देश की छोटे शहरों के जो युवा हैं वो महानगरों की सीमाओं को तोड़कर अद्भुत सफलता हासिल कर रहे हैं। आज वो अपने कार्यों से, अपनी काबिलियत से, अपनी योग्यताओं से एक अच्छे मुकाम को हासिल कर रहे हैं। और जो बड़े शहरों के जो युवा साथी हैं, जो विकसित मानव जिसे उनको कहा जाता है, वो जहाँ बैठे हैं आज उनके समान हमारे छोटे नगरों के जो युवा साथी हैं वो भी बैठे हैं।
0: बिल्कुल, ये आपने सही कहा राजकुमार जी। और हमने ये भी एक बात देखी है कि डिजिटल युग ने हमारे इन युवाओं की जो संघर्ष हैं इनको थोड़ा आसान बना दिया है। डिजिटल युग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें क्या हैं कि थोड़ी आसान बना दिया है हमारे युवाओं को, और ये परस्पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इन्हें अब कहीं जाकर पूछताछ नहीं करनी पड़ती। हमारा मोबाइल फ़ोन या हमारा इंटरनेट हमने खोला और हमें हर इंफॉर्मेशन, हर चीज़ की जानकारी वहीं मिल जाती है।
1: देखिए, पर हमें इसका सदुपयोग करना होता है। अगर हम सदुपयोग करते हैं तो हमारे हाथ में जो छोटा सा चौकोर जो बॉक्स प्लेट दिखती है, अपना जो मोबाइल है, वो साथियों में पूरी दुनिया घुमा देता है। हम गूगल मैप के माध्यम से किसी भी शहर में या कौन सी भी जगह हम जा सकते हैं, हम कोई सी भी जानकारी इससे प्राप्त कर सकते हैं। हम भी आज जो विकसित शहर हैं उनके जो युवा हैं, वहाँ निवास करने वाले युवा हैं, उनकी बराबरी हम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, सफलता का संबंध जो है ना किसी शहर से नहीं होता है। अक्सर हम लोगों ने सुना है और मैंने कहीं ऐसे एग्जांपल भी देखे हैं कि

0: छोटे शहरों के युवा आगे बढ़कर इतने ज्यादा कामयाब हुए हैं कि समाज के लिए भी प्रेरणा बन गए,
1: क्योंकि उनमें संघर्ष करने की ललक होती है।
0: बिल्कुल, आज छोटे शहरों के युवा यूपीएससी, आरएस, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, रक्षा सेवाएं और अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उनमें सफलता भी हासिल कर रहे हैं।
1: और देखिए, कहा जाता है कि वो मेंटली हेल्थ से भी काफी मजबूत होते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कम जो है लागत स्थानीय प्रतिभा की उपलब्धता की बात करें यदि हम, तो अपनी मिट्टी से जुड़कर और उससे जुड़ने के काम करने की जो लगन है, यह हम हमारे छोटे शहरों के युवाओं के अंदर देखते हैं और वो बड़े ही प्यार से, बड़े ही हमारे अपने संस्कारों के साथ जुड़ के अपने जो जीवन को है वो आगे बढ़ाते हैं और बड़े बड़े यूनिकॉर्न स्टार्टअप जैसी चीजें भी उन लोगों ने स्थापित करी हैं इसी लगन के साथ।
1: सही कहा आपने। और छोटे शहरों के जो युवा हैं उनकी उड़ान को मजबूत बनाने के लिए हमारी सरकार जो है वो भी कई सारे काम कर रही है।
0: बिल्कुल, सबसे पहले अगर हम बात करें तो डिजिटल पहुंच, अभी हम बात ही कर रहे थे टेक्नोलॉजी की
1: जी।
0: और अगर हम बात करें वर्क फ्रॉम होम, अभी कई हमारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे युवाओं को हायर करती हैं और उन्हें ये ऑप्शन भी देती हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। उनका पैकेज वही होता है और सबसे अच्छी बात यह है कि उनके अंदर स्किल्स हैं तो वो अपने ही घर पे बैठकर, अपने ही स्टेट में रहकर, अपने ही कस्बे में रहकर, अपने लोगों के साथ रहकर पैसा भी कमा लेते हैं, एमएनसी को फायदा भी दिला देते हैं और अपना खर्चा भी बचा लेते हैं।
1: और देखिए, अपनी एजुकेशन, अपनी काबिलियत और अपनी स्किल के माध्यम से आप जैसे बता रहे हो वर्क फ्रॉम होम भी ले सकते हैं। ये दोस्तों वर्क फ्रॉम होम हमें ऐसे ही नहीं मिलता है, ये इसके लिए हमें एजुकेशनल सिस्टम जो है उससे काफ़ी हद तक जुड़ना होगा, हमें स्किल से भी डेवलप होना पड़ेगा और डिजिटल भी हमें पूर्ण रूप से रहना होगा, तभी ही जाकर हम वर्क फ्रॉम होम ले सकते हैं और हम जो कंपनियों में जाकर काम करते हैं उन युवाओं के बराबर हम बैठ सकते हैं।
0: बिल्कुल, इसमें स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, जैसा अभी आपने कहा तो स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास स्किल्स हैं तो मैं कहती हूँ आप कहीं भी छोटे शहर के युवा ये चीज आपके बीच में नहीं आ पाएगी।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: चलिए साथियों, बढ़ते हैं हम हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम हर बार हमारे साथियों के लिए लेकर आते हैं कई महत्वपूर्ण जानकारियां। उन्हें कई बार हम मोटिवेट करते हैं, कई बार हम उन्हें एक ऐसी बातों के बारे में बताते हैं जिनसे सुन के इन्हें बहुत अच्छा लगता हो। वैसे ही आज हमारे साथी राजकुमार जी लेकर आए हैं एक बातचीत, जिसमें हमने करी है बातचीत राहुल जी से।
2: युवा साथियों, चिराग जल रही युवा डायरी सेगमेंट में हम आपको रोज़ रूबरू करवाते हैं हमारे एक नए युवा साथी के विचारों से। आज के इस युवानी कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं हमारे एक नए युवा साथी के विचारों को। जानेंगे हम उनसे उनकी युवाओं को लेकर क्या सोच है, क्या कहना चाहते हैं वो युवाओं के बारे में। तो आइए हम करते हैं हमारे नए साथी राहुल जी से बातचीत।

0: नमस्कार राहुल जी, कैसे हो आप?
1: जी नमस्कार, मैं एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। साथ ही युवाणी कार्यक्रम सुन रहे हमारे सभी युवा साथियों को मेरा नमस्कार।
0: राहुल जी, हम जानना चाहेंगे कि इस बरसात के मौसम में हमारे युवा साथी जो हैं वो पर्यावरण के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी होती है, प्रकृति के प्रति जो जिम्मेदारी है, उसे किस प्रकार से निभा सकते हैं?
1: देखिए, मैं बताना चाहूँगा, जमीन के नीचे से लेकर आसमान की ऊंचाई तक हर जगह युवाओं की भूमिका होती है। कोई भी कार्य हो युवाओं के बिना अधूरा रहता है। वैसे देखिए, इस बरसात के मौसम में अगर युवाओं की इस प्रकृति के प्रति जो भूमिका है उसकी बात करें तो मैं कहना चाहूँगा कि हमें इस बार दोस्ती की मिसाल देनी होगी। क्यों ना हम एक टोली बनाए और हमारी टोली के हर फ्रेंड के नाम हम एक पौधा लगाए। एक दूसरे के नाम पर हम एक एक पौधा लगाना शुरू करें और सभी लोगों को जागरूक करें कि एक एक पौधा वो भी लगाए। ये हमारी दोस्ती की एक मिसाल होगी और जब वह पौधा बड़ा हो जाएगा और फिर हम उसे देखते हुए कहेंगे कि हमारी दोस्ती की मिसाल आज इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई और हमें हमारी दोस्ती पर गर्व होगा।
0: जी, कितनी अच्छी बात आपने बताई है कि हम हमारी दोस्ती के नाम पर एक पौधा लगाया और उस पौधे को सींचते हुए बड़ा करें और आने वाले समय में वो हमारी दोस्ती की एक मिसाल बनेगा।
1: जी साथ ही वह पर्यावरण को हरा भरा और सुंदर बनाएगा। साथ ही हमारा ये फर्ज भी होता है कि हम सभी को जागरूक करें। हमें स्वच्छता के लिए जागरूक करना होगा। वर्षा का जल भी हमें बचाना होगा। बारिश की एक एक बूंद हमें बचानी होगी। जिन कामों से हमारी पर्यावरण को नुकसान होता है उन्हें रोकना होगा।
0: जी राहुल जी, आपने बहुत ही अच्छी बात हमें बताई है। आगे हम जानना चाहेंगे आपसे कि हमारे युवा साथी जो है उनके रोजगार को लेकर आप क्या कहेंगे?
1: जी देखिए, युवा रोजगार को लेकर मैं कहना चाहूँगा, कोई भी काम हो, काम छोटा बड़ा नहीं होता है। काम से ही हमारी पहचान बनती है। अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो बेरोजगार तो रहेंगे। इस बेरोजगारी को दूर भगाने के लिए कुछ तो करना होगा। अब क्या करना है ये हमें सोचना होगा कि हमें क्या आता है, हम किस काम को कर सकते हैं, कौन से काम में हम परफेक्ट है। अगर हमें कुछ समझ नहीं आता है तो हम परिवार का सहयोग भी ले सकते हैं। हम करने को बहुत सारे हैं। खेती हुई, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, आप सब्जियां भी लगा सकते हैं। ई मित्र हुआ, स्टेशनरी हुई, अगर आपको फास्ट फूड आता है तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप ड्राइविंग जानते हो तो आप खुद बुकिंग भी ले सकते हो। डेयरी फार्म हुआ, किराना शॉप, ऐसे बहुत सारे काम है जिनको आप शुरू करके खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं। अब आ जाती है बात कि हमारे पास पैसा नहीं है, काम कैसे शुरू करें। तो मैं बताना चाहूँगा, युवा रोजगार को लेकर हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है जिनका लाभ लेकर भी हम हमारा खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हमारी जो आर्थिक समस्याएं है उनको दूर कर सकते हैं। पर उन सब के लिए हमें हमारे मन में जो हताशा है उसे मिटाना होगा और हौसला रखते हुए खुद का स्टार्टअप करें। अगर कोई हमारे युवा साथी शिक्षा के क्षेत्र में तैयारी कर रहे है, जब तक सफल नहीं होंगे तब तक रुकेंगे नहीं और निरंतर तैयारी करते रहेंगे। हमेशा हमें सकारात्मक सोच रखनी होगी और सकारात्मक रूप से अपने कार्य को करना होगा। अंत में इतना ही कहूंगा कि अगर आप निरंतर प्रयास करते रहोगे तो सफलता एक न एक दिन मिलेगी जरूर।
0: जी, आपने बहुत ही अच्छी बात हमें बताई है, हमारे युवा साथियों के साथ साझा की, कि अगर हम निरंतर प्रयास करते हैं तो हम एक न एक दिन कामयाब जरूर होते हैं। आपने अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया राहुल जी, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे राहुल जी कि आपका कोई मन पसंदीदा सॉन्ग जो आप सुनना चाहते हैं वो हम आपको हमारी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से सुना सकें, तो आप बताइए कौन सा गीत है जिसे आप सुनना चाहोगे?
1: अगर आप सुनाना चाहे तो मेरी पसंद का एक गीत है, चक दे इंडिया।
0: जी धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे राहुल से राजकुमार खाती की बातचीत। चलिए सुनते हैं हम उनकी पसंद का गीत।

0: आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अरेस्ट यानी कि शिकंजे में कसना। हाँ, जिसे आपने सुना होगा, FIR करने के बाद में पुलिस आकर उठा ले जाती है, अरेस्ट कर लेती है कि आपसे ये काम हो गया, आपने ये गलत किया है तो आपको अरेस्ट किया जाता है, आपने लड़ाई कर ली है तो आपको अरेस्ट किया जाता है, या फिर आपने कानूनन अपराध किए हैं तो हम अरेस्ट करती हैं। ऐसा ही एक और अरेस्ट होता है साथियों, जिसकी कॉल हमें सुनाई देती है कि हेलो नमस्कार, आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है।
1: बिल्कुल, देखिए राजकुमार जी, आजकल ना तकनीकी ने हमारी ज़िंदगी को पहले से कहीं ज़्यादा अधिक आसान बना दिया है। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ऑनलाइन बैंकिंग, UPI, डिजिटल भुगतान, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ों ने हमारे जीवन को तेज और सुविधाजनक तो बना दिया है, लेकिन जहाँ सुविधाएं बढ़ रही हैं
0: जी
1: वहाँ साइबर अपराध का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है। और इन सभी अपराधों में अभी नया, बिल्कुल न्यूली लॉन्च्ड जो सबसे बड़ा अपराध और चिंताजनक अपराध है वो है डिजिटल अरेस्ट। देखिए, डिजिटल अरेस्ट जो है ये सिर्फ युवा ही नहीं, बुजुर्ग, बच्चे, हमारे वर्ग का हर इंसान इसकी चपेट में आ जाता है।

0: ठीक है, तो सबसे पहले तो हम हमारे साथियों को बताएंगे कि डिजिटल अरेस्ट है क्या।
1: जी,
0: तो सबसे पहले हम बता दें कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं होती है। यह सिर्फ ठग के लिए और आपको अपना बैंक खाता जो है पूरा साफ करने के लिए या सिर्फ टेंशन देने के लिए उन लोगों का काम है जो हमारे देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं और आपको आपका सब कुछ छीनने की कोशिश कर रहे हैं।
1: साथियों, फिर बता दे आपको कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होती है, तो आपको ध्यान रखना होगा, सावधान रहे, सतर्क रहे साथियों, और अपने हर एक साथी को, अपने परिवार के सभी लोगों को भी बताएं कि अगर आपको कोई कॉल आती है कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है और आपके केस के फाइनल करने के लिए इतना पे आपको करना पड़ेगा तो आपको अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो साथियों आप उस पर ध्यान ना दें और तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके उसकी सूचना दे।
0: बिल्कुल साथियों, देखिए ऑनलाइन ठगी किसी भी तरीके से हो सकती है, इनके तरीके अलग अलग होते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना है कि कभी भी कोई भी सरकारी एजेंसी, बैंक या कोई भी काम आपके मोबाइल पे आए बैंक ओटीपी कभी नहीं मांगते हैं।
1: जी।
0: तो चाहे कुछ भी हो जाए आपको बैंक ओटीपी अपना कभी भी शेयर नहीं करना है। अच्छा, एक चीज और, ये जो डिजिटल अरेस्ट चल रहा है इसमें जो ठग होता है वो खुद अपने आप को पुलिस अधिकारी, सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स विभाग, कस्टम अधिकारी या किसी भी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर फोन करता है या फिर वीडियो कॉल करता है और आपको डराता है।
1: और साथियों, एआई जनरेशन है जो बहुत कुछ करके दिखा देती है, उस पे बस कुछ नहीं करना है, अपना फोटो अपलोड किया है, बस उसके बाद में वो आपको जो चाहे अधिकारी बना के दिखा देगा और आप डर जाओगे। आपको डरना नहीं है, आप उससे पूछे कि कौन से थाने में आना है, हम तो वही ऑफलाइन आके हमारी जो है अर्थदंड जो हमें दिया जा रहा है वो हम वहां आकर जमा करेंगे और स्लिप प्राप्त करेंगे, तो आप वहां जाइए अपने नजदीकी थाने में और जाकर वहां सूचना दीजिए।
0: बिल्कुल साथियों, कई बार ये जो अपराधी होते हैं ये इस तरह का माहौल बना देते हैं, पीछे ऐसा नकली सा माहौल बना देते हैं जैसे पुलिस स्टेशन है या कोई एक सरकारी एजेंसी है, और फिर वीडियो कॉल करके वे आपको बताते हैं हर चीज की, देखिए हम असली पुलिस वाले हैं या असली वो हैं, और वो डराते हैं आपको और फिर आपसे बैंक ओटीपी या फिर ऐसे कहकर कुछ भी वे अपनी तरफ से कुछ भी गलत सूचना आपको देके और आपको अपने झांसे में लेने की कोशिश करते हैं। परंतु साथियों, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले ध्यान रखिए, जैसे ही आपको ऐसा लगे कि आप फ्रॉड में फंसने वाले हैं उस कॉल को कट कीजिए। हेल्पलाइन नंबर 1930, फिर से बोलूंगी 1930 पर आप संपर्क कीजिए या फिर राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराइए
1: या फिर अपने नजदीकी थाने जाकर आप संपर्क करिए। और साथियों, यही नहीं है कि आप डिजिटल अरेस्ट हो जाओगे, साथियों हो सकता है कि आपको घर बैठे कोई बिजनेस प्रदान किया जाता है या फिर कोई पेंसिल पैकिंग का आपको काम दे दिया गया है कि या फिर आपको कोई बॉक्स पैकिंग का काम दिया जा रहा है और आपसे ऑनलाइन पेमेंट फीस जमा करवा ली जाती है रजिस्ट्रेशन के नाम से और आपके कि भाई इतना माल आपके पास भेजा जा रहा है तो उसके एवज में आपको इतना पे जमा करना पड़ेगा पहले।
0: बिल्कुल।
1: तो साथियों, बिना आंखों देखे और बिना हाथों छुए और बिना संबंधित जगह आपकी उपस्थिति के बिना आपको कुछ भी पे नहीं करना है, चाहे फिर वो कोई भी हो। हो सकता है कि आपके एक संबंधित, आपके परिचित के नाम पे आपको बता दिया जाए कि वो हॉस्पिटल में और इतना पैसा लग रहा है, आप इतना पैसा कर दीजिए। तो साथियों,
0: बिल्कुल
1: आपको इन बातों पर ध्यान नहीं देना है।
0: हाँ, और आप इस चीज को समझिए कि तकनीक ने हमें नई सुविधाएं दी हैं लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। डरकर नहीं, समझदारी से काम लीजिए। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर पैसे नहीं मांगती और ना ही वीडियो कॉल पर किसी की गिरफ्तारी करती है। जागरूक बनिए, सतर्क रहिए और दूसरों को भी जागरूक बनाइए। खासकर हमारे बच्चे और बुजुर्गों को ये समझाइए कि ऐसा कुछ नहीं है, वे घबराएं नहीं, डरे नहीं, अपने आसपास कोई उनके परिवार के सदस्य हैं उन्हें बताएं या डायरेक्ट आप पुलिस स्टेशन जाकर भी ये बात बता सकते हैं और हेल्पलाइन नंबर 1930 हमने आपको बताया ही है, वहां आप शिकायत दर्ज भी कर सकते हैं।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
2: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल

0: प्रेस जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
0: पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: साथियों, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, वो हमारी जनता के लिए वो हर प्रकार से विकास के कार्य से संबंधित योजनाओं को लेकर आती हैं। वैसे ही अगर हम बात करें कन्याओं से जुड़ी हुई एक योजना की, जो है सुकन्या समृद्धि योजना। साथियों, ये हमारी बेटियों के भविष्य के लिए बहुत ही कारगर योजना है, जो उनके भविष्य को सुरक्षित करती है, उनके भविष्य को उज्ज्वल भी बनाती हैं।
2: बिल्कुल साथियों, सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के भविष्य की सुरक्षित करने के लिए, उनकी शिक्षा और शादी के खर्चों में मदद के लिए भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई एक लोकप्रिय छोटी बचत योजना है। यदि इसकी विशेषता और नियम की बात करें, तो यदि हम इसमें बात करें खाता खोलने की पात्रता की, तो यह खाता 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा किसी भी अधिकृत बैंक या डाकघर में खोला जा सकता है।
1: अगर बात करें तो प्रति बालिका केवल एक ही खाता खोला जा सकता है साथियों, और एक परिवार में केवल 2 बालिकाओं के लिए यह सुविधा उपलब्ध है। जुड़वां बच्चियों के मामले में 3 बालिकाओं के लिए भी इसकी अनुमति हमें प्रदान की जाती है।
2: साथियों, निवेश सीमा की बात करें तो इस खाते में प्रति वित्तीय वर्ष न्यूनतम ₹250 और अधिकतम 1.5 लाख तक हम जमा कर सकते हैं। और जमा अवधि की बात करें तो खाता खुलने की तारीख से लेकर 15 वर्ष तक इसमें पैसे जमा हम करते हैं।
1: अगर ब्याज दर की साथियों बात करें तो वर्तमान में इस योजना पर 8.2% वार्षिक ब्याज दर मिल रही है, जिसे सरकार द्वारा समय समय पर संशोधित किया जाता है।
2: बिल्कुल साथियों, और परिवक्तता की बात करें तो खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष पूरे होने पर मैच्योर होती है। और निकासी के नियम, बालिका की आयु 18 वर्ष पूरी होने या उसकी शादी के समय उच्च शिक्षा के खर्चों के लिए जमा राशि का 50% तक निकालने की अनुमति हमें मिलती है।
1: इस योजना में निवेश की गई राशि धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक टैक्स पे होती है।
2: बिल्कुल साथियों,
1: इन योजनाओं की अगर आपको जानकारी है, या फिर आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, या फिर आप अपनी बेटियों को लाभ नहीं दिलवा पाए हैं, तो साथियों आपको जुड़ना होगा इस योजना से। और इस योजना की जानकारी आप अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से भी ले सकते हैं, या फिर आप SSY

0: वेबसाइट के माध्यम से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं, इमित्र कियोस्क पर जाकर भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। और जी हाँ साथियों, जाना होगा, आपको लाभ लेना होगा, क्योंकि सरकार की जो योजनाएं होती है वो हमें प्रदान, जो हमें लाभ प्रदान करने के लिए ही होती हैं, तो क्यों ना हम हमारी सरकार की जो योजना है उसका लाभ लें।
1: बिल्कुल साथियों।

0: साथियों, आइए अब हम चलते हैं आज के इतिहास की ओर, क्योंकि हर दिन होता है अपने आप में खास और हर दिन का होता है अपना एक इतिहास। जी हाँ साथियों, 2023 में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया है।
1: साथियों, आज ही के दिन 1986 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुड्डा का जन्म हुआ था।

0: साथियों, हर युवा को रोजगार की जरूरत होती है, पर रोजगार के लिए आपको पहले बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। अगर आपको सरकारी क्षेत्र में अगर रोजगार करना है या फिर आपको कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, तो साथियों उसके लिए कई पात्रताएं परीक्षाएं होती है जिनको आपको पास करना होगा। तो अभी हाल ही में राजस्थान सीईटी सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, वहीं जो 12th लेवल पे शुरू हो रही है, उसके आवेदन 23 जुलाई तक किए जाएंगे। और साथ ही राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल जो है, उसके आवेदन 2 अगस्त तक किए जाएंगे।
1: चलिए साथियों, घड़ी की सुइयां आप कह रही हैं कि हमें ले लेनी चाहिए आपसे विदा। हम फिर मिलेंगे आपसे इसी समय इसी कार्यक्रम में। दीजिए आपकी रेडियो डोज शिवाधी
0: और आपके रेडियो साथी राजकुमार खाती को इजाजत, और स्वीकार करें हमारा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये झालावाड़ केंद्र है FM 103.2 MHz पर। आइए अब सुनते हैं हमारे शेष रहे कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय कार्यक्रम विवरण में।

श्रोताओं, आपसे थोड़ी देर बाद यानी 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 6:05 का समय रहेगा फिल्म संगीत का।

6:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हिंदी में, फिर होगी जिले की चिट्ठी और प्रादेशिक समाचार राजस्थानी में, उसके बाद सुनवाए जाएंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।

शाम 7 बजे किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। किसान वाणी में आज मंगलवार को आप सुन सकते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम। विषय रहेगा कृषि में पक्षियों का महत्व। बात करने के लिए हमारे साथ होंगी डॉक्टर आंचल शर्मा, आचार्य वन जीव प्रबंधन विभाग राजकीय उद्यानिकी और वानिकी महाविद्यालय झालावाड़ से। तो जिन भी श्रोताओं को कोई भी समस्या है या कोई भी शिकायत है वो आप हमें इस नंबर पर फोन करके अपनी शंकाओं का निवारण पा सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से।

चारा और संतुलित आहार की महत्ता। पेटवार्ता का विषय रहेगा जैविक उर्वरकों का कृषि पर प्रभाव। बात करेंगे डॉक्टर सेवाराम रुडला से। जानकारी की बातों में आप सुनेंगे राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना के बारे में और इसके साथ साथ होंगे मौसम, बाजार भाव, समर्थन और कल के कार्यक्रमों की कुल झलकियों के साथ साथ लोक संगीत। तो सुनना ना भूले शाम 7:30 पर कृषक चौपाल कार्यक्रम।

रात्रि 8:45 पर कार्यक्रम 45 मिनट पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों गजलों और भजनों का कार्यक्रम सबरस। ये थे आज हमारे शेष रहे कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। FM 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी का झालावाड़ केंद्र है। थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन और व्यापार जारी रखने का आह्वान किया है।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: आज नई दिल्ली में श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया और जो कुछ हुआ है उसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान चली गई है और कई भारतीय गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
1: जो दो जहाज जिसपे कल रात हमला हुई है, आज सवेरे हमला हुआ, तो इन दोनों जहाज में 30 हमारे भारतीय नाविक थे। एक जहाज में जिसमें 12 लोग थे उसमें एक नाविक की मौत हुई है, और दूसरे जहाज जिसमें 18 भारतीय नागरिक और या नाविक थे उसमें से 9 लोगों को घोर चोट पहुंचा है उनको, उसमें से 2 काफी गंभीर रूप से घायल भी है। तो ये था ब्यौरा जो कल का या आज सवेरे का जब भी समय में जब हमला हुआ। इसके अलावा कई एक जाने हमारे लोग गई है, और मैं कह सकता हूं कि जितने भी देश हैं दुनिया में उसे सबसे ज्यादा जो कमर्शियल शिपिंग पे जो भी हमला हुआ है वो सबसे ज्यादा नाविकों की, हमारे देश की लोगों की जान गई है।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा दशकों से किए जा रहे शोषण, मौलिक अधिकारों के हनन तथा अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक दमन का परिणाम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन दुर्व्यवहारों और कुकर्मों के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराएगा। अमरीका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं, इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलडमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। दूसरी ओर ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावे को खारिज किया है।

0: भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI युवाओं के कौशल को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकती है। हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम शिखर सम्मेलन में उन्होंने सरकार की अनेक सामाजिक सुरक्षा पहलों पर बल दिया और स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख किया। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि यह अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है। कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता रामचंद्र गौड़ा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उन्हें कर्नाटक में भाजपा का एक मजबूत स्तंभ बताया। उन्होंने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और पार्टी कार्यकर्ताओं की कई पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इंग्लैंड ने भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में बर्मिंघम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 32वें ओवर में 6 विकेट पर 155 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का झालावाड़ केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। शाम के 6:05 हो रहे हैं और अब समय है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आतिफ असलम और अलीशा चुनाव के गाए इस गीत के साथ। फिल्म है अजब प्रेम की गजब कहानी। गीत के लिए बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और संगीत है प्रीतम का।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से। कार्यक्रम में चलिए आगे का गीत आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और अलके याग्निक की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत है अनु मलिक का। फिल्म का नाम है अकेले हम और अकेले तुम।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत और आइए अब सुनवाते हैं आपको फिल्म अजनबी से के गीत। उदित नारायण और कया अग्नि की आवाज़ में गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत से सजाया है

उदित नारायण और अलका याग्निक के गाए इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और फिर होंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

0: साल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
2: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में कहीं भी।
0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राजस्थान विधानसभा गठन के 75 वर्ष के उपलक्ष में कल से अमृत महोत्सव की शुरुआत। साल भर कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होगा। राज्य में शादी, धार्मिक आयोजनों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में अब केवल वैध लाइसेंसधारी हलवाई और कैटरर ही सेवाएं दे सकेंगे। प्रदेश भर की सभी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की सघन स्क्रीनिंग के लिए कल से विशेष अभियान चलाया जाएगा और राज्य के सभी 63,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर हुई अभिभावक कार्यकर्ता बैठक में बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर चर्चा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में कल से अमृत महोत्सव की शुरुआत होगी। उद्घाटन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल होंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। वहीं उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन का समापन सत्र में शिरकत का कार्यक्रम है। उत्सव में राज्य के लोकतांत्रिक विकास, ऐतिहासिक कानूनों, संसदीय परंपराओं और डिजिटल विधानसभा के भविष्य पर मंथन होगा। वहीं वर्तमान और पूर्व विधायकों का समागम रहेगा। अमृत उत्सव के तहत साल भर तक विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसका समापन अगले साल राजस्थान स्थापना दिवस पर होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि समारोह में 6 और उससे अधिक बार रहे पूर्व विधायकों का सम्मान भी किया जाएगा।
3: सन 1952 में पहली बार चुनाव हुए और ये 16वीं विधानसभा है, तो इस 16वीं विधानसभा तक जो भी विधायक अभी हमारे बीच में है, उन सबको इसमें सादर आमंत्रित किया है कि जो 6 बार से अधिक विधायक रहे, ऐसे लगभग 26 लोग हैं जिनका सम्मान भी हम लोग करेंगे और उनके सम्मान के साथ साथ जो आज तक अध्यक्ष रहे जो उनका भी सम्मान समारोह होगा। तो इस तरह कुल मिला के 33 लोगों का उधर सम्मान किया जाएगा।
0: प्रदेश में शादी ब्याह, धार्मिक आयोजनों और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में अब केवल भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

0: FSSAI के वैध लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन वाले हलवाई, कैटरर्स और भोजन सेवा प्रदाता ही अपनी सेवाएं दे सकेंगे। खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से इसके लिए जारी मानक संचालन प्रक्रिया SOP के तहत ये व्यवस्था लागू की गई है। इस प्रक्रिया में आयोजन से पहले कैटरर को सारी जानकारी संबंधित अधिकारी को देनी होगी। SOP के तहत सभी हलवाइयों और खाद्य व्यवसाय संचालकों का सत्यापन भी किया जाएगा। विभाग के अतिरिक्त आयुक्त भगवंत सिंह ने बताया कि सभी मैरिज गार्डन, विवाह स्थलों और होटलों को भी उनके परिसर में लाइसेंसधारी खाद्य संचालकों से ही खाना तैयार करवाना और परोसना सुनिश्चित करना होगा। बड़े आयोजनों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी भोजन की गुणवत्ता, भंडारण और पेयजल व्यवस्था का भी जायजा लेंगे।
1: सामूहिक भोज का कार्यक्रम होता है, विवाह सम्मेलन हो गए और कोई रिलीजियस फंक्शंस होते हैं, तो उसमें क्या है कि काफी मात्रा में खाना बनता है और कई बार शिकायतें भी आती है और कई बार एक्चुअल सिचुएशन भी होती है जहां फूड पॉइजनिंग के केसेस हो जाते हैं। तो इसको रेगुलेट करने के लिए डिपार्टमेंट ने ये ऑर्डर्स जारी करे हैं कि आप जो भी इस तरह के फंक्शंस में खाना बनवाएंगे तो वो रजिस्टर्ड फर्म होनी चाहिए या रजिस्टर्ड हलवाई कैटरर होना चाहिए, क्योंकि रजिस्टर्ड होगा तो उसमें फर्दर उसकी जिम्मेदारी भी हम तय कर पाएंगे। और साथ ही जो हमारा डेजिग्नेटेड ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट में, उसको कार्यक्रम की डिटेल, वो आयोजन स्थल कहाँ पर है, उसका आयोजक का क्या नाम है, उसका मोबाइल नंबर वगैरह, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ रहेगी, तो उससे निश्चित रूप से इस तरह के फूड पॉइजनिंग केसेस को हम मॉनिटर कर पाएंगे। यही हमारे इसके ऑर्डर्स को, इस SOP को जारी करने के पीछे मंशा थी।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज प्रस्तावित कोटपुतली बहरोड जिले के पावटा का दौरा निरस्त हो गया है। बरसात और खराब मौसम के कारण इसे रद्द किया गया है। मुख्यमंत्री का प्रागपुरा नगरपालिका में आयोजित शहरी सेवा शिविर में पहुंचने और लाभार्थियों से संवाद का कार्यक्रम था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से संरक्षण कार्य करवाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इसे उत्खनन स्थलों और विरासत परिसरों के विकास की डैश योजना में शामिल किया है। इसके तहत ऐतिहासिक इमारत का संरक्षण किया जाएगा, साथ ही म्यूजियम, वॉकवे, हिस्ट्री गैलरी, इंटरप्रिटेशन सेंटर और पर्यटकों के लिए अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा डिजिटल तकनीक और ऑडियो विजुअल माध्यम से मेवाड़ के इतिहास को प्रस्तुत किया जाएगा। देश का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टैक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ। भारत मंडपम में हो रहे इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टैक्स अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौतों का भी वस्त्र क्षेत्र को फायदा मिल रहा है।
2: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए, अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए, और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश भर की सभी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य मानकों की सघन स्क्रीनिंग के लिए कल से विशेष अभियान चलाया जाएगा। 5 दिन तक चलने वाले इस अभियान में गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच की जाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने आज जयपुर में बैठक कर VC के माध्यम से सभी चिकित्सा अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर, ANM और CHO के जरिए स्क्रीनिंग का ये काम करवाया जाएगा। श्रीमती राठौड़ ने एक गर्भवती महिला की 4 गुणवत्तापूर्ण ANC जांच अनिवार्य रूप से कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि ज्यादा जोखिम वाली गर्भावस्था के लिए अलग से ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जाएगा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर आज भीलवाड़ा पहुंचे। उन्होंने महात्मा गांधी अस्पताल परिसर का जायजा लिया। इसके बाद श्री खेवसर ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की। मीडिया से बातचीत में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि जयपुर CI टीम ने भीलवाड़ा में हुई प्रसूताओं की मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। उन्होंने कहा कि सरकार मातृ और शिशु स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है।
3: हमारी जयपुर से एक टीम आई, उन्होंने जांच करी, लेकिन हमारे सीनियर लोग ऑल राजस्थान के आए, अब मैं भी आया यहाँ पर, हमने सब चीजों की जांच की है।

0: और मैंने कुछ दस्तावेज की मांग करी है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन और हमने मंगाया है, और बांसवाड़ा में आज जा रहा हूँ।
1: चिकित्सा मंत्री इसके बाद बांसवाड़ा के लिए रवाना हुए। गौरतलब है कि हाल ही में बांसवाड़ा में भी विभिन्न कारणों से कुछ प्रसूताओं की मृत्यु हुई थी। स्थिति का जायजा लेने के लिए चिकित्सा मंत्री अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से ऑस्ट्रेलिया के उच्च स्तरीय राजनयिक पॉल मर्फी ने आज लोकभवन में मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शिक्षा और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देने पर चर्चा की। साथ ही राजस्थान में उच्च शिक्षा, आदिवासी संस्कृति संरक्षण और कृषि में नवाचारों पर भी विशेष रूप से चर्चा की गई। बैठक पर और ब्यौरा न्यूज डेस्क से।
2: राज्यपाल श्री बागड़े की पहल पर राजनयिक श्री मर्फी ने राजस्थान के विश्वविद्यालयों के साथ ऑस्ट्रेलिया के उच्च शैक्षिक कार्यक्रमों के एक्सचेंज की संभावनाओं पर काम करने की सहमति जताई। आने वाले दिनों में राजस्थान के विश्वविद्यालयों के कुलगुरु और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षाविदों तथा कुलपतियों के साथ वीसी के जरिए संवाद और चर्चा की जाएगी। इसके अलावा कम पानी और शुष्क वातावरण में कृषि से जुड़ी पद्धति के बारे में भी राजस्थान को लाभान्वित किया जाएगा। बैठक में राजस्थान की आदिवासी धरोहर संरक्षण पर भी विशेष विचार विमर्श किया गया। न्यूज डेस्क से सलेहा गाजी।
1: प्रदेश के स्कूलों में डिजिटल लर्निंग लैब स्थापित की जाएंगी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में ये जानकारी दी। मुख्य सचिव ने कहा कि इससे विद्यार्थियों को अध्ययन में सुविधा होगी। मुख्य सचिव पीएम श्री विद्यालयों के संस्था प्रधानों की राज्य स्तरीय वेबिनार में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इन लैब से विद्यार्थियों को अध्ययन में सहायता मिलेगी। उन्होंने हर पीएम श्री स्कूल में सुझाव पेटिका लगाने और सफलता की कहानियां साझा करने की बात कही। वेबिनार के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न स्कूलों के नवाचारों और सर्वोत्तम नीतियों को अन्य स्कूलों में भी लागू किया जाएगा।
3: राजस्थान में जो पीएम श्री स्कूल्स के माध्यम से जो एजुकेशन मॉडल्स डेवलप कर रहे हैं, इनमें कई नेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस आज हमारे सामने आए हैं। ये हम भारत सरकार में सामने भी प्रस्तुत करेंगे और इसी क्रम में अन्य स्कूल्स को भी डेवलप करने के लिए सारे प्रयास, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इसको हम लोग इसी क्रम में और भी वेबिनार आयोजित करेंगे, टॉप परफॉर्मर्स को राज्य के सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि वो अपना चैलेंजेस और सक्सेसेस पूरा राज्य में बाकी सब लोग सुन के सीख सकें।
1: प्रदेश

0: भी प्रस्तुत करेंगे और इसी क्रम में अन्य स्कूल्स को भी डेवलप करने के लिए सारे प्रयास और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इसको हम लोग इसी क्रम में और भी वेबिनार आयोजित करेंगे, टॉप परफॉर्मर्स को राज्य के सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि वो अपना चैलेंजेस और सक्सेसेस पूरा राज्य में बाकी सब लोग सुन के सीख सकें।
1: प्रदेश के सभी 63,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर आज अभिभावक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता PAM बैठक आयोजित की गई। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से हर महीने ये बैठक रखी जाती है। समेकित बाल विकास सेवा योजना ICDS के निदेशक वासुदेव मालावत ने बताया कि बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों के माता पिता के साथ स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर चर्चा की गई। मीटिंग में बच्चों के परिवार के पुरुष सदस्यों की सहभागिता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। साथ ही बच्चों की गतिविधियों और पोषण सहित अन्य विषयों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गौ मांस उत्पादक देश है। PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान विधानसभा गठन के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में कल से अमृत महोत्सव की शुरुआत। साल भर कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होगा। राज्य में शादी, धार्मिक आयोजनों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में आप केवल वैध लाइसेंसधारी हलवाई और कैटरर ही सेवाएं दे सकेंगे। प्रदेश भर की सभी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की सघन स्क्रीनिंग के लिए कल से विशेष अभियान चलाया जाएगा और प्रदेश के सभी 63,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर हुई अभिभावक कार्यकर्ता बैठक में बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर चर्चा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से नागौर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख श्याम लाल ने तैयार किया है। जिले में इस बार मॉनसून की शुरुआत देरी से हुई। जुलाई के पहले सप्ताह में बारिश शुरू होने के बावजूद पूरे जिले में समान वर्षा नहीं हुई। कई क्षेत्रों में खरीफ की फसलों को पर्याप्त पानी नहीं मिलने से किसान अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। कृषि विभाग के अनुसार जिले में 8,32,000 हेक्टेयर में खरीफ बुआई का लक्ष्य रखा गया है। इसके मुकाबले अब तक 7,13,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बुआई हो चुकी है। जिले में जुलाई माह के दौरान औसतन 42 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। नागौर की प्रसिद्ध पान मेथी की खेती करने वाले किसानों के लिए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत सोलर ड्रायर पर 40% तक अनुदान देने की योजना शुरू की है। इससे किसान पान मेथी के साथ ही काचरी, टमाटर, मिर्च और अन्य कृषि उत्पादों को स्वच्छ और सुरक्षित तरीके से सुखा सकेंगे। उद्यानिकी विभाग के अनुसार पात्र किसान ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिलने के बाद राज्य सरकार ने इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत लागत का 50% तक अनुदान देने की व्यवस्था की है। उद्यानिकी विभाग के अनुसार किसान विभागीय पोर्टल पर इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से औषधीय खेती को बढ़ावा मिलने और किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है। बीते दिनों पर्यटन विभाग की टीम ने खींवसर क्षेत्र के भूंडेल गांव स्थित लोक देवता वीर हड़बूजी महाराज की जन्मस्थली का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मंदिर परिसर और आसपास में श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, शौचालय, पार्किंग, विश्राम स्थल तथा अन्य सुविधाओं के विकास की संभावनाओं का आकलन किया। स्थानीय लोगों से भी सुझाव लेकर आगे की कार्य योजना तैयार की जा रही है। बीते दिनों बालोतरा के पचपदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा HPCL रिफाइनरी के उद्घाटन और विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम का नागौर में भी सजीव प्रसारण किया गया। जिला मुख्यालय के टाउन हॉल सहित सभी ब्लॉक मुख्यालयों और ग्राम पंचायत में लोगों ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। टाउन हॉल में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विभागों में चयनित 2047 युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। जिले में बीते दिनों राष्ट्रीय सहकार सप्ताह के तहत सहकार

आज संवाद दिवस नागौर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की ओर से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय भदवाणा में चित्रकला क्विज निबंध और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में विद्यालय के 120 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से 1 जुलाई को आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार केंद्रीय विद्यालय मेड़ता सिटी में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षाओं का संचालन शुरू करने की स्वीकृति दे दी गई है। पहले चरण में विद्यालय में 1 से 5वीं तक की कक्षा का संचालन होगा। इसके बाद आवश्यकता के अनुसार आगे की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। बीते दिनों नागौर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत अमरपुरा के गांव गुड़ला में विकसित भारत जीरामजी योजना का शुभारंभ 111 पौधों का रोपण करके किया गया। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन को बढ़ावा देना है। 20वें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पर कृषि महाविद्यालय नागौर में कार्यशाला आयोजित की गई। भारतीय सांख्यिकी के जनक प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में आंकड़ों के महत्व, प्रशासनिक डेटा के प्रभावी उपयोग और नीति निर्माण में उनकी भूमिका पर चर्चा हुई। इस अवसर पर एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट 2026 जिला और ब्लॉक फोल्डर का विमोचन किया गया। देवस्थान विभाग द्वारा चलाई जा रही वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय में लॉटरी निकाली गई। लॉटरी के माध्यम से जिले के पात्र वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया गया। निर्धारित कोटे के अनुसार नेपाल स्थित पशुपतिनाथ की हवाई यात्रा के लिए 146 और विभिन्न तीर्थ स्थलों की रेल यात्रा के लिए 1,193 वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया गया है। इसी के साथ नागौर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: पहलियां आज री खास खबरां राजस्थान विधानसभा गठन रा 75 बरस रे मौके माथे काले सू अमृत महोत्सव री शुरुआत साल भर के खास कार्यक्रमों रो आयोजन वेला राज्य माए शादी धार्मिक आयोजना और सार्वजनिक कार्यक्रम माए अबे केवल वैध लाइसेंस धारी हलवाई और कैटरर ही सेवावां दे सकेला प्रदेश भर री सगली गर्भवती महिलावां रे स्वास्थ्य री सघन स्क्रीनिंग खातिर काले सू खास अभियान चलायो जावेला और प्रदेश रा सगला 63,000 आंगनबाड़ी केंद्रा माथे वी अभिभावक कार्यकर्ता बैठक में टाबरा रे स्वास्थ्य और शिक्षा माथे चर्चा समाचार रे साथे मैं संगीता शर्मा और अब समाचार विगतवार राजस्थान विधानसभा रा 75 बरस पूरा होने रे मौके माथे काले सू अमृत महोत्सव री शुरुआत वेली उद्घाटन जलसे माए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भेड़ा वेला वठी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समापन सत्र माए भेड़ा होवण रो कार्यक्रम है। उत्सव माए राज्य रा लोकतांत्रिक विकास ऐतिहासिक कानूना संसदीय परंपरावां और डिजिटल विधानसभा रे भविष्य माथे मंथन वेला वठी ने मौजूदा और पहली आला विधायकारो समागम रवेला इनरे तहत साल भर ताई खास कार्यक्रमारो आयोजन करियो जावेला। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बतायो के जलसे माए 6 और 932 दफारिया पहली आला विधायकारो सम्मान भी करियो जावेला।
1: सन 1952 में पहली बार चुनाव हुए और ये 16वीं विधानसभा है, तो इस 16वीं विधानसभा तक जो भी विधायक अभी हमारे बीच में है उन सबको इसमें सादर आमंत्रित किया है कि जो 6 बार से अधिक विधायक रहे ऐसे लगभग 26 लोग हैं जिनका सम्मान भी हम लोग करेंगे और उनके सम्मान के साथ साथ जो आज तक अध्यक्ष रहे जो उनका भी सम्मान समारोह होगा, तो इस तरह कुल मिला के 33 लोगों का उसे सम्मान किया जाएगा।
0: प्रदेश माए शादी ब्याह धार्मिक आयोजना और दूजा सार्वजनिक कार्यक्रम माए अबे केवल वैध FSSAI लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन वाला हलवाई कैटरर्स और भोजन सेवा

0: प्रदाता ही आपरी सेवामां दे सकेला। खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण महकमारी कानिसू इंडर खातिर जारी मानक संचालन प्रक्रिया SOP रे तहत आ व्यवस्था लागू करी जी है। इन प्रक्रिया माए आयोजन सू पहलियां कैटरर खानिसू सारी जानकारी जुड़ियोड़ा अहलकारा ने देवनी वेला। SOP रे तहत सगला हलवाइयां और खाद्य व्यवसाय संचालकां रो सत्यापन भी करियो जावेला। महकमारा अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह बतायो कि सगला मैरिज गार्डन विवाह स्थला और होटला ने भी वाणे परिसर माए लाइसेंस धारी खाद्य संचालका सूही खानो तैयार करवाणो और परोसनो पक्को करनो वेला। बड़ा आयोजना माए खाद्य सुरक्षा अहलकार भोजन री गुणवत्ता भंडारण और पेयजल व्यवस्था रो भी जायजो लेवेला।
1: सामूहिक भोज का कार्यक्रम होता है, विवाह सम्मेलन हो गए और कोई रिलीजियस फंक्शंस होते हैं तो उसमें क्या है कि काफी मात्रा में खाना बनता है और कई बार शिकायतें भी आती है और कई बार एक्चुअल सिचुएशन भी होती है जहां फूड पॉइजनिंग के केसेस हो जाते हैं। तो इसको रेगुलेट करने के लिए डिपार्टमेंट ने ये ऑर्डर्स जारी करे हैं कि आप जो भी इस तरीके के फंक्शंस में खाना बनवाएंगे तो वो रजिस्टर्ड फर्म होनी चाहिए या रजिस्टर्ड हलवाई कैटरर होना चाहिए, क्योंकि रजिस्टर्ड होगा तो उसमें फर्दर उसकी जिम्मेदारी भी हम तय कर पाएंगे और साथ ही जो हमारा डेजिग्नेटेड ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट में उसको कार्यक्रम की डिटेल, वो आयोजन स्थल कहाँ पर है, उसका आयोजक का क्या नाम है, उसका मोबाइल नंबर वगैरह, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ रहेगी तो उससे निश्चित रूप से इस तरह के फूड पॉइजनिंग केसेस को हम मॉनिटर कर पाएंगे। यही हमारे इसके ऑर्डर्स को, इस SOP को जारी करने के पीछे मंशा थी।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रो आज प्रस्तावित कोटपुतली बहरोड जिला रा पावटा रो दौरो रद्द वे गयो है। बरसात और खराब मौसम रे कारण इन्हें रद्द करियो गयो है। मुख्यमंत्री रो प्रागपुरा नगर पालिका माए राखीजा शहरी सेवा शिविर माए पहुंचनो और लाभार्थियों सु बंटल रो कार्यक्रम हो। चित्तौड़गढ़ दुर्ग माथे 100 करोड़ रूपया सू 32 री लागत सू संरक्षण काम करवाया जावेला। केंद्र सरकार इन्हें उत्खनन स्थलों और विरासत परिसरों के विकास की डैश योजना माए भेड़ो करियो है। इनरे तहत ऐतिहासिक इमारत रो संरक्षण करियो जावेला। साथ ही म्यूजियम, वॉकवे, हिस्ट्री गैलरी, इंटरप्रिटेशन सेंटर और सैलानिया रे खातिर दूजी सुविधावां विकसित करी जावेली। इनरे अलावा डिजिटल तकनीक और ऑडियो विजुअल रे जरिए मेवाड़ इतिहास ने बतायो जावेला। देश रो सबसे बड़ो वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नवी दिल्ली माए शुरू हुयो। भारत मंडपम माए हो रिया इन कार्यक्रम रो उद्घाटन केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह करियो। खबर नवीसासू बंतल माए श्री सिंह कयो के भारत टेक्स अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुक्यो है और हर बरस इन माए प्रदर्शका और आगंतुकारी तादाद माए बढ़ोतरी वेरी है। वणा कयो के न्यारा न्यारा देशा रे साथे कराया गया मुक्त व्यापार समझौता रो भी वस्त्र खेतर माए फायदो मिल रियो है।
2: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
2: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनवा वाला सभी किसान साथियों, आपका साथी पवन शर्मा
4: और आपकी बीनू बहन को घनो घनो राम राम।
3: राम राम बीनू बहन, घनो घनो राम राम।
4: आपका ताई भी मारो राम राम। और देखो पवन जी, आज मंगलवार को दन छ हाँ। यानी कि सजीव फोन इन कार्यक्रम को दन, और अपना जो किसान भाई बहन छह वह अपन सु बात कर रहे
3: बिल्कुल।
4: आज
3: इंतजार
4: को जो
3: कर रहा होगा अपना किसान साथी के फोन इन कार्यक्रम शुरू हो गए और अपना विशेषज्ञ से अपनी समस्या को समाधान भी प्राप्त कर सके।
4: तो इको विषय बताओ सा आज का कार्यक्रम को।
3: जी बीनू जी, आज को कार्यक्रम जो है अपना खेती में पक्षियों का महत्व के बारे में है। भाई अपने आसपास पर्यावरण में पशु पक्षी बहुत सारे रहे और ये सारा अपना खेती में किसानी में सब में मददगार रहे। बिना पशु के और बिना पक्षियों के अपनी खेती जो है वह संभव भी नहीं है। तो आज को अपना जो विषय है वो यही है कि खेती में पक्षियों को महत्व है।
4: और अपना स्टूडियो का नंबर भी बताओ सा।
3: जी बिल्कुल, स्टूडियो का नंबर भी बताऊंगा, लेकिन मैं जानकारी दे दूं अपना किसान साथियों कि पक्षियों से संबंधित, उनकी रोकथाम से संबंधित, उनसे जो नुकसान हो रहे हैं उनसे संबंधित, वना के खेती में कोई भी अगर परेशानी आ रही है और उनको समाधान भी अगर चाह रहा है तो आज अपने साथ अपना

0: पक्षी का विशेषज्ञ जो है वो डॉक्टर आंचल शर्मा है, जो कि सहायक आचार्य है वन्य जीव प्रबंधन विभाग उद्यानिकी और वानिकी महाविद्यालय झालावाड़ में। तो ये आज अपने साथ स्टूडियो में है, यहाँ से अपन फोन पे जानकारी ले सका, अपनी जो भी समस्या आ रही है उनको समाधान प्राप्त कर सका। तो किसान साथियों, अब मैं आप फोन नंबर बता दूं अपना स्टूडियो का, जैसा कि आप याद ही है, सबसे पहले एसटीडी कोड लगाना है 07432, और उनके बाद अपना डायल करना है अपना स्टूडियो को फोन नंबर 2325933, जो कि आप सब लोग आए याद यही सही। ये नंबर आप मोबाइल से या लैंडलाइन से डायल करके और अपनी समस्या को समाधान प्राप्त कर सको।
1: तो किसान भाया हो आप, यह नंबर आप फोन कर पक्षियों का बारे में, जो कि आपकी कृषि ने, आपकी खेती किसानी ने नुकसान पहुंचा रहा है, या कशा वो फायदो करे छे, या वहां से कोई समस्या छे और कोई जानकारी आप हासिल करवो चाहो, तो वहां का स्टूडियो में फोन कर सको छो।
0: बिल्कुल बिनु जी, जब तक अपना किसान साथी फोन कर रहा है और बात अपनी चालू होवे, उससे पहले अपन आज स्वागत करा अपना आज के विशेषज्ञ डॉक्टर आंचल शर्मा को। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपको स्वागत है। और अपन बात करा कृषि में पक्षियों का महत्व की, क्योंकि दो ही एक दूसरे का पूरक है, बिना कृषि के पक्षी नहीं रह सके और पक्षी के बिना कृषि भी लगभग असंभव है। तो
1: सही कहा आपने।
0: कृषि में पक्षियों को कई महत्व है, इनके बारे में थोड़ा
1: हाँ, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि
0: जी।
1: कृषि में कैसे हमारे जो पक्षी हैं वो सहायक हैं या फिर मददगार हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत में कम से कम 1356 हमारे पक्षियों की प्रजातियाँ हैं, जिनमें से बहुत सारे पक्षी लाभदायक भी हैं और कुछ पक्षी ऐसे हैं जो नुकसान भी करते हैं किसी हद
0: जी
1: तक। तो जो अभी तक हमारी ऐसी भावना थी कि पक्षी सिर्फ एक दाना चुगने वाला जीव है, बल्कि ऐसा नहीं है, वो वास्तव में किसान का एक सच्चा मित्र है, जो कि प्राकृतिक रूप से हमारे बहुत सारे कीटों को, टिड्डियों को, दीमक हो गया, चूहे हो गए, उनको खाकर हमारी खेती को बचाते हैं और हमारा जो उत्पादन है उसमें उसको बढ़ाते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, अपना एक किसान साथी फोन पे जुड़बो जा रहा है, यहाँ से बात करा। हेलो हेलो,
2: हेलो। पक्षी पक्षी में हमारे मित्र कैसे रहते हैं?
0: अरे साहब, सबसे पहले तो आपको नाम बताओ, कहाँ से बोल रहे हो आप?
2: हम रिजौन से, जटलाई के पास रिजौन,
0: बिल्कुल रिजौन से बोल रहे हो। कौन साहब बोल रहे हो, नाम बताओ अपना।
2: कैलाश चंद पाटीदार
0: कैलाश चंद जी पाटीदार जी, बिल्कुल। अब
2: जी।
0: बताओ, आपको पक्षियों से संबंधित कई प्रश्न है।
2: पक्षी पक्षी से मित्रता कैसे रहती है हमारा?
1: अच्छा जी,
0: जी बिल्कुल
1: बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है कि पक्षी हमारे मित्र कैसे हैं।
0: जी
1: तो मैं बताना चाहूंगी, जो भी हमें हमारे फसल को लाभ देने में हमारा साथ दे रहा है या हेल्प कर रहा है, वो सब लाभदायक ही हैं या फिर हमारे दोस्त ही या फिर मित्र ही हैं। ऐसे ही अगर पक्षी की बात करें तो वो आपको बहुत तरीके से आपकी फसल में सहयोग कर रहे हैं, आपके कीटों को खा रहे हैं, टिड्डियों को खत्म कर रहे हैं, दीमक, चूहे, ऐसी ऐसी चीजों को वो नियंत्रित करें, तो एक तरह से आपके वो मित्र ही हुए या सहायक ही हुए।
0: बिल्कुल, मतलब जो अपने कृषि में मददगार है वो सब अपना मित्र कीट है या
1: जी
0: मित्र पक्षी है।
1: जी
0: तो कैलाश चंद जी पाटीदार साहब रिजोन से, आप निश्चित रूप से आपका प्रश्न को जवाब मिले होगा, आपने जो स्टूडियो में फ़ोन किया, इनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक और डॉक्टर साहब किसान साथी जुड़वा वाला है, इनसे बात करें। हेलो,
3: गोपाल
0: हाँ गुप्ता जी बिल्कुल बताओ, आज जो अपना
3: गुप्ता।
0: विषय है ये पे आपको
3: हेलो
0: प्रश्न बताओ
3: हेलो
0: जी।
3: हेलो,
0: हाँ, आ रही है आपकी आवाज़।
3: जिला
0: हाँ
3: राम गोपाल गुप्ता बोल रहा हूँ।
0: हाँ गुप्ता जी,
3: हाँ,
0: प्रश्न बताओ आपको अपना। खेती में पक्षियों से कई कई फायदे हुए, ये जानना आप है। अच्छा, बिल्कुल डॉक्टर साहब, खेती के अंदर पक्षी मददगार भी है और कई बार नुकसान भी करे, तो ये रामगोपाल जी पाटीदार, रामगोपाल जी गुप्ता ये पूछना चाह रहा है कि बचाव के लिए कहीं कहीं उपाय हो सके?
1: जी बिल्कुल, बहुत तरीके से आप बचाव कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ

0: इन्हीं बचावों को ध्यान में रखना है और उपयोग में लेके आना है, जिससे कि हमारे पक्षियों को कोई नुकसान नहीं हो। तो आप अगर पैसा खर्च करना चाहते हैं, थोड़ा लागत वाला है, तो उसके लिए अलग उपाय हैं, और आप चाहते हैं कि घरेलू आपको ज़्यादा कुछ उसमें खर्चा नहीं आए, तो उनके लिए भी कुछ उपाय
1: जी
0: हैं। तो अगर हम देखें तो बायो एकॉस्टिक आज के युग का एक बहुत ही अच्छा नया उपयोगी साधन है, जिसमें कि एक मशीन आती है जिसको हम बायो एकॉस्टिक बोल रहे हैं। उसके अंदर रिकॉर्डेड वॉइस होती है, आवाज़ पहले से रिकॉर्डेड होती हैं।
1: अच्छा
0: अब हम जानते हैं कि कोई भी जानवर दूसरे बड़े जानवर से डरता है, तो अब कोई चिड़िया आपके खेतों में अगर आई है और जो हमारा बायोकॉस्टिक है उसमें पहले से हमारी आवाज़ जो रिकॉर्डेड है वो चील और बाज इस तरीके की चिड़ियाओं की
1: बड़े
0: होती
1: बड़ी
0: है,
1: चिड़िया
0: बड़ी
1: की
0: चिड़ियाओं की
1: जी।
0: होती है, तो जब वो आवाज़ निकालती हैं तो हमारी छोटी चिड़ियाएँ अपने आप डरती हैं और खेतों से दूर रहती हैं।
1: जी
0: तो ये मशीन में स्पीकर लगा हुआ होता है, एक आपकी मशीन होती है जो कि चार्ज होती है आपकी सोलर सिस्टम से, तो आपको उसमें बार बार खर्चा नहीं आता, बैटरी आपकी चार्ज हो जाएगी सोलर ऊर्जा से। और इसमें आप टाइम फिक्स कर सकते हो कि थोड़े थोड़े टाइम बाद, कि आधे घंटे बाद, हो सकता है सुबह के टाइम में चिड़िया ज़्यादा आ रही हैं, शाम के टाइम आ रही हैं, तो उस टाइम पर आप इसको ऑन करके
1: जी
0: रख सकते हैं, टाइम सेट कर सकते हैं, तो आपके ऊपर है। तो ये तो हो गया हमारा बायोकॉस्टिक। ऐसे ही हमारी एक एलपीजी गैस पे चलने वाली गन होती है, जिसको जिसमें कि हमारी इसमें गैस यूज़ हो रही है एलपीजी, और ये एक बंदूक की तरह होती है जो एक तेज़ आवाज़ निकालती है। तो जब फसल पक के तैयार हो जाए उसी टाइम पक्षी अक्सर ही हमारी खेतों में आते हैं या फिर अटैक करते हैं, तो उस टाइम पे हम इस गन का यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ आवाज़ निकालेगी, पक्षियों को नुकसान नहीं करेगी और हमारे पक्षी खेतों से दूर रहेंगे। तो ये तो हो गए जिनमें आपके थोड़ा खर्चा आ रहा है। इसके अलावा हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि जो स्मेल करती हैं या जिनमें
1: जी
0: से तेज़ गंध आती है, तो उसके लिए आप नीम का पेस्ट बना के उसको स्प्रे की फॉर्म में अपने खेतों के आसपास कर सकते हैं। इसके अलावा आप अंडा ले सकते हैं, अंडे में से भी काफ़ी एक तेज़ गंध आती है, उससे भी हमारे जो पक्षी हैं वो खेतों से दूर रहते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमने देखा है हमारे मक्का में अक्सर चिड़ियाओं का अटैक होता है या फिर तोते वगैरह उस पर आ जाते हैं जब वो फसल पक के तैयार होती है।
1: जी
0: तो उसमें आप कर सकते हैं कि जो मक्का में नीचे बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसको रैपिंग टेक्निक बोलते हैं, कि आप अपना जो कॉम्ब है, जो मक्का है,
1: भुट्टा
0: उसको
1: है
0: भुट्टा है,
1: जी
0: उसको उसी उसकी पत्तियों से ही कवर कर दें। तो आप कहेंगे पूरे खेत में तो बड़ा मुश्किल है करना, तो आपको पूरे खेत का नहीं करना है, जो भी बाउंड्री है बाहर का जो कि
1: बाहर
0: दिखने
1: बाहर का
0: वाला,
1: इस समय मतलब कर रहा है
0: हाँ
1: जहां पे चिड़िया के नजर में सबसे पहले आवे वो
0: जी
1: चीज कवर कर देना
0: बिल्कुल पवन
1: जी।
0: जी, बिल्कुल ऐसे ही करना है कि बाहर का हमें कवर करना है, ताकि ना तो चिड़ियाओं को दिखे ना वो उस खेत में आए, क्योंकि एक चिड़िया को देख के दूसरी चिड़िया आएगी, तो इस तरीके से वो जो है वो कंट्रोल कर पाएंगे आप। एक
1: जी
0: ये हो गया। ऐसे ही सूरजमुखी में है कि उसमें भी बहुत चिड़ियाओं का आतंक रहता है, उसमें भी बड़ा नुकसान होता है हमारी दलहनी फसल में। तो उसमें आप जो कई बार हम घरों में शादी ब्याहों में इस्तेमाल करते हैं, प्लेट्स होती हैं उनके अंदर चमकीली परत लगी हुई होती है,
1: जी
0: तो अब वो जो कट प्लेट होती हैं उनको ही हमें सूरजमुखी के फूल को उस प्लेट से कवर करना है। अब वो
1: अच्छा
0: जो
1: अच्छा
0: है दिन के टाइम पे जब चमकेगी तो सारी चिड़िया या पशु पक्षी ऐसी चीज़ों से दूर भागते हैं जो उनकी रिफ्लेक्ट करती है या आंखों में चमक मारती है।
1: अच्छा
0: तो जब ये चमकीली परत उसकी सूरज की रोशनी में चमकेगी तो हमारी चिड़ियाएं उस खेत से दूर रहेंगी और आएंगी नहीं।
1: मतलब प्रकाश से भी दूर
0: हाँ
1: भागेगी
0: बिल्कुल दूर
1: जी।
0: भागेंगे। ऐसे ही रिफ्लेक्टिव रिबन्स होते हैं, जैसे कि हमारी पहले ऑडियो टेप्स आती थी घर में सुनते थे, अब तो कोई नहीं सुनता, सब मोबाइल में गाने सुन लेते हैं। उन टेप्स को उनको हम बाउंड्री लाइन पे लगा सकते हैं, जब हवा चलती है तो उनमें से आवाज़ें आती हैं, उन आवाज़ों को भी सुन के चिड़िया या दूसरे ये जानवर आपके खेतों से दूर रहेंगे या फिर नहीं आएंगे। तो
1: जी
0: कोई भी चुभने वाली चीज़, इनके रैपर्स हो गए, टॉफ़ी के जो कवर होते हैं और चॉकलेट्स के कवर होते हैं, इनका आप उपयोग कर सकते हो, ना तो इसमें आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत
1: बिल्कुल
0: है और
1: और
0: आपका जो
1: आसानी से उपलब्ध भी है। डॉक्टर
0: जी
1: साहब एक
0: बिल्कुल
1: और किसान साथी को फोन आ रहे हो, इनसे बात करें अपन। हेलो
2: हेलो नमस्कार सर।
1: हाँ नमस्कार सर, कहाँ से
2: हाँ
1: बोल
2: मैं
1: रहे हैं?
2: राजेश कुमार बोल रहा हूँ,
1: राजेश
2: रायपुर।
1: कुमार जी?
2: हाँ रायपुर सर।
1: जी रायपुर से। हाँ बिल्कुल राजेश जी, कई प्रश्न है आपको।
2: सर मेरा प्रश्न था कि जैसे मक्के की फसल होती है ना, तो उसमें जो

0: करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं उसको,
1: अच्छा
0: जितने
1: अच्छा
0: हो
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: सके। उपाय क्या क्या, मतलब क्या क्या उपाय
1: बहुत बढ़िया प्रश्न है और कई किसान साथियों ने लगा भी रखी है। तो तोता जो नुकसान करे डॉक्टर साहब, उनसे बचवा के कौन कौन सा उपाय है?
2: जी हाँ, जैसे कि मैं बता ही रही थी कि उसमें जैसे कि राजेश जी ने पूछा, मक्के की फसल में हम रैपिंग कर सकते हैं, जिसमें कि हम जो हमारा भुट्टा था उसको हमने उसी के पत्तों से
1: ढक
2: कवर
1: करके
2: ढक करके
1: जी
2: कवर कर दिया। उसके अलावा हम ऐसी स्क्रीन क्रॉप बोलते हैं जिसको हम सेकेंडरी क्रॉप भी लगाने बोल दिया, स्क्रीन क्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि हमारी जो मेन क्रॉप है मक्के की, अगर हमारी मेन क्रॉप है तो उसकी एवज
1: सेकेंडरी
2: में हम
1: क्रॉप
2: सेकेंडरी जी
1: द्वितीयक फसल
2: ज्वार
1: लगा करके
2: वगैरह
1: अपन।
2: साइड में कहीं छोटे उसमें एरिया में लगा दिया, तो हमारा जो मेन फसल है वो हमारे अटैक से बच
1: वो बच
2: जाएगा।
1: जाएगी और वो पक्षी जो है वो दूसरी फसल पे चल
2: जी जी
1: जाएगा।
2: जी बिल्कुल। तो इस तरीके से हम स्क्रीन कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा जो लेज़र बीम वगैरह होती है, जिसमें कि हमारी लेज़र ये लाइट निकलती है और एक तेज़ ध्वनि तरंगे निकलती हैं, तो उससे भी हमारी जो चिड़ियाएं हैं वो हमारे खेतों में नहीं आएंगी। उन इन सभी के उपयोग से ना तो हमारी चिड़िया या प्रकृति को नुकसान होगा और हम अपने खेतों का भी बचाव कर पाएंगे।
1: बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, क्योंकि पक्षी जो अपना मित्र है और पर्यावरण का हिस्सा है, इन्हें नुकसान भी नहीं होना चाहिए और अपनी फसल भी बची रहे, साथ ही साथ लागत भी कम हो, अपना किसान साथी बहुत ही आसानी से अपनी फसलें बचा ले। और जब लागत कम हो गई या बिल्कुल अपना अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से अपना जो फ़ायदा है, मुनाफा है, किसान साथी वो भी ले पाएगा। अब डॉक्टर साहब थोड़ा सा विराम के लिए रुकूंगा अपन, कुछ सुना कुछ संदेश।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: भारत में जल संकट के कारण 60% से अधिक लड़कियां हर महीने औसत 2 दिन स्कूल नहीं जा पाती, जबकि राजस्थान में अनुपस्थिति 5 दिन तक होती है, जो अक्सर लड़कों की तुलना में 2 से 10 गुना अधिक होती है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
7: किसान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है किसान वाणी कार्यक्रम में, और सजीव फोन इन कार्यक्रम चल रहे है। और आज को जो विषय है वो है कृषि में पक्षियों को महत्व, तो और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आंचल शर्मा जी। तो आप वहाँ से बातचीत कर रहे था क मित्र पक्षी कशा मदद कर रहे, एक साथ ही साथ कशा कशा पक्षी मित्र कहलाओ छ, या भी बताओ सा डॉक्टर साहब।
8: जी बिल्कुल, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मोर है, मैना है, बुलबुल है, गौरैया हो गई, उल्लू, बाज, ड्रोंगो, जो कि अक्सर देखा होगा आपने, काला सा होता है और पीछे जो उसकी टेल होती है, पूंछ होती है, वो बायफर्केटेड होती है, 2 हिस्सों में बटी हुई होती है। अबाबील हो गया हमारा, बगुला हो गया, हूपे हो गया जिसके सर पे एक ताज के जैसा होता है, कबूतर हो गए, सभी पक्षी हमें किसी ना किसी तरह से सहायता ही करते हैं या हमें लाभ पहुंचाने की मदद करते हैं।
9: जी डॉक्टर साहब, एक और के इस किसान साथी अपना फोन से जुड़ पूछा रहा है, तो इनसे बात करा। हेलो हेलो
10: हेलो
9: हेलो, हाँ साहब, नाम बताओ अपना।
10: योगेश जांगड़े, भीमेतरा, छत्तीसगढ़ से।
9: छत्तीसगढ़ से, नाम बताओ अपना।
10: योगेश जांगड़े।
9: योगेश जांगड़े, हाँ योगेश जांगड़े साहब, आज को विषय जो है अपना कृषि में पक्षियों का महत्व, इस पर आपको कोई प्रश्न है तो आप बताओ।
10: जी हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कुछ फायदे भी है कुछ नुकसान भी है, तो नुकसान से बचने के लिए हम मतलब

0: अब एक सामान्य उपाय क्या कर सकते हैं कि जिससे हमें आर्थिक क्षति कम हो?
1: आर्थिक क्षति भी नहीं हो और अपने फसल भी बच जाए।
0: जी
1: जी जी बिल्कुल, तो नुकसान से बचवा के लिए उपाय जान बुझा रहे हो आप, बिल्कुल।
2: जी इसमें देखिए, आप घर में जैसे कि मैंने घरेलू उपाय आपको बताए कि आप नीम का केक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको पानी में मिला सकते हैं और कम से कम 20 ml, ये 200 ग्राम नीम का केक लेके 1 लीटर पानी में मिला के इसका सॉल्यूशन आप
1: निमोली को
2: पानी
1: पानी भी
2: में,
1: ले सके अपना किसान साथी।
2: हाँ, उसको पानी में उबाल लें और इसका पानी में घोल बना के उनका स्प्रे कर सकते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब,
2: और
1: अपने किसान साथी एक और प्रयोग करें, अपना देशी प्रयोग जो है, फसल के अंदर डिब्बा बांध दे
2: जी
1: और
2: बिल्कुल,
1: वो टीन जो रहे डिब्बा उन्हें
2: हाँ
1: भी लगातार बजाता रहे समय समय पे, उनसे भी अपना किसान साथी जो है वो
2: जी जी जी
1: फसलें बचा
2: बिल्कुल।
1: ले।
2: कुछ जगह ऐसे गुजरात में भी देखा गया है
1: जी
2: कि कुछ लोग अपने खेतों में घंटियां लगा देते हैं
1: हाँ
2: और
1: हाँ
2: उनको एक धागे से बांध के, रस्सी से बांध के, अपने पास की वहां से बैठे बैठे उन्होंने
1: बिल्कुल,
2: हिलाया
1: एक ही जगह से चार
2: एक ही
1: पांच
2: जगह
1: एक
2: से।
1: साथ।
2: ऐसे ही हमारे पुराने ट्रेडिशनल जो तरीके थे उनमें बीजुका होती है, जिसमें कि हम पुतला बना के या फिर इंसान के जैसा ही लगा के खेत
1: जी
2: में खड़ा कर देते हैं, तो उससे भी चिड़ियाओं को लगता है कि कोई ना कोई खड़ा है और हमें फसलों से दूर रहना
1: बिल्कुल,
2: है।
1: अपना किसान साथी तो कहीं करे कि दो डंडियां लेके बांस की खपच्चियां लगा के और
2: जी
1: उन्हें पुतला के रूप में खड़ी करके और ऊपर कोई भी पुरानी टी शर्ट या शर्ट टांग दे तो
2: जी जी
1: ऐसा
2: जी
1: लगे पक्षी आए कि कोई खड़ा है।
2: जी किसान ही शायद खेत में खड़ा है।
1: जी
2: ऐसे ही कभी किसी बड़ी पक्षी या कोई मरा हुआ मिल गया तो उसको भी खेत में ऐसे ही बैम्बू या किसी डंडी पे लगा के टांगा जा सकता है, तो चिड़िया को यही लगेगा कि कोई चील या फिर कोई बाज खेत में बैठा हुआ है, तो वो उस डर से भी हमारे खेत में नहीं आएंगी। तो
1: मतलब
2: ये
1: अपना से
2: कुछ,
1: बड़ा जानवर से डर के और फिर
2: हाँ
1: वो
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: फसल पे अटैक नहीं
2: फसल पे
1: करेंगे।
2: अटैक नहीं
1: जी
2: करते।
1: बिल्कुल,
2: तो घर में पुरानी साड़ियाँ हो गई या कुछ इस तरीके से कपड़े हो गए तो उनकी भी बाड़ बनाई जा सकती है, जैसे कि आपके मक्का वगैरह में जिनको आप बचा सकते हो उस बाड़ से, तो वो रंग बिरंगी होती हैं, तो वैसे ही चिड़िया ऐसी चीज़ों से दूर रहेंगी।
3: तो डॉक्टर साहब, कीट नियंत्रण का अलावा जो पक्षी मित्र हो जो वह कशक्शा रूप में मदद करे जी किसान भाई
2: जी
3: बहना की।
2: हाँ बिल्कुल, जैसे कि हम कीट के अलावा, कीट तो जैसे ही हमारा किसान खेतों में बुवाई शुरू करता है, जैसे ही हल चलाना
1: कीट
2: शुरू
1: प्रकोप
2: करता है,
1: से आने
2: तब
1: लगता है।
2: से उनका कीटों को पकड़ने का काम शुरू हो जाता है। वहाँ जितनी भी प्रकार की लटे होती हैं हमारी मिट्टी में, उनको कम से कम 75% तक हमारे जो चिड़िया पक्षी हैं वो तभी उनको मैनेज कर लेते हैं या फिर कंट्रोल कर
1: खा
2: लेते हैं।
1: लेते हैं।
2: ये तो हमारा डायरेक्ट एक इफेक्ट हो गया कि वो
1: जी
2: कैसे कीटों को खा रहे हैं, वो तो
1: बिल्कुल।
2: खेत से ही शुरू हो गया। इसके अलावा जो हमारे पक्षी होते हैं वो जो हमारे बीज होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, कई बार वो अपनी चोंच में ले जाते हैं, कई बार अपने पंजों के साथ उनके चले गए, तो ऐसे दूसरी दूसरी जगह भी उनका सीड डिस्पर्सल होता है या बीज प्रसार हो जाता है। इसके अलावा परागण में सहायता, जैसे कि हमारी बहुत सारी चिड़िया होती हैं, छोटी वाली चिड़िया आपने देखी होंगी, वो पराग पे फीड करती हैं, तो इस तरीके से पॉलिनेशन का भी काम होता है कि एक फूल पे बैठ के वो दूसरे फूल पे बैठ रही हैं, तो उससे भी हमारा ट्रांसफर होता है और पॉलिनेशन होता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो हमारा पर्यावरण है उसमें भी एक संतुलित उसको भी बनाए रखते हैं। ये जितनी जैव विविधता हमारी चिड़ियों की वजह से रहती है तो हमारा पर्यावरण में एक संतुलन, इकोसिस्टम एक संतुलन बना रहता है।
1: बिल्कुल।
2: हमारी कुछ चिड़ियाएं होती हैं जैसे कि वाटर बर्ड्स जिनको हम बोलते हैं, जो कि पानी के आसपास या पानी में रहती हैं, ये बर्ड्स भी बहुत लाभदायक होती हैं। इनका एक्सक्रीटा होता है जिसको हम मल बोल रहे हैं,
1: जी
2: जो कि आम भाषा
1: अपशिष्ट।
2: में, हाँ बिल्कुल,
1: जी
2: तो जो बीट होती है वो बहुत ही लाभदायक होती है उस, क्योंकि वो जो बीट है उसकी उसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा
1: बहुत ज्यादा,
2: होती है। अगर उस
1: और ये
2: बीट
1: अपने
2: को,
1: कृषि के लिए आवश्यक है।
2: हाँ,
1: बिल्कुल।
2: अगर हम उस बीट को उस एरिया से लेके अपने खेतों में अगर डालते हैं तो हमारा एक ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह काम करेगा, मतलब हमें एडिशनली अलग से हमें
1: नाइट्रोजन की
2: एनपीके,
1: आवश्यकता पूरी हो
2: हाँ
1: जाएगी। जी
2: जी, अलग से हमें एनपीके नहीं डालना पड़ेगा, बल्कि वो ही हमारे उसमें उपयोग में आ सकता है।
1: जी
2: तो एक ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। उसके अलावा जहाँ पे भी आपको ये चिड़िया दिखेंगी वो अलग ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारा पर्यावरण एकदम साफ सुथरा, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण की गुणवत्ता को भी दर्शाती हैं। जहाँ पे अगर पर्यावरण में प्रदूषण ज़्यादा है तो वहाँ पे हमारी चिड़ियाओं का आना जाना कम हो जाएगा।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैव विविधता में, पर्यावरण की विविधता में।

0: पक्षियों को बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। अपन इनके बारे में और बात करेंगे, लेकिन एक और किसान साथी जुड़ गया है, इनसे बात करें। हेलो हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ साहब, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: गांव खोद से बोल रहा हूँ।
0: कौन से गांव से?
1: खोद गांव से।
0: खोद गांव से, हाँ, नाम बताओ अपनो।
1: कल्याण।
0: कल्याण जी, बिल्कुल। हाँ। कल्याण जी, प्रश्न बताओ अपनो, कहीं पूछ विचार रहे हो? अरे भाई, अपन तो बात कर रहे हैं पक्षियों की, है नहीं? लेकिन ये भी वो पशु है जो अपना खेती में नुकसान पहुंचा रहा है, तो बिल्कुल आप इनकी जानकारी दे रहा है।
2: हाँ जी, बिल्कुल। तो नील गाय के लिए आप जो उपाय कर सकते हैं घरेलू, उसमें ये है कि आप अपने खेतों के आसपास खाई टाइप नुमा कम से कम 5 फीट की गहरी खाई खोदें, और तभी वो है कि उसको क्रॉस करके, उसको पार करके वो नहीं आएगी। और जो हमारी जंगली झाड़ियाँ होती हैं उसको कम से कम 5-7 फीट ऊंची लगाएं अपने खेतों मेड़ पे, ताकि जो
0: एक
2: है
0: रुकावट बनी रहे।
2: हाँ, एक रुकावट बनी रहे और जो हमारी नील गाय हैं वो थोड़ा दूर रहें। और इसके अलावा जो बहुत ही कारगर जो चीज़ है वो है आपकी झटका मशीन, जो कि मतलब हमें, क्योंकि पशुओं को नुकसान भी नहीं पहुंचाना है, सारे पशु हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुरक्षित हैं, जैसे कि हम सुरक्षित हैं
0: है,
2: वैसे ही
0: महत्वपूर्ण भी है
2: और सुरक्षित भी हैं, तो हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, बल्कि उनका भी हमें अपनी तरह ही संरक्षण और ध्यान रखना है। तो झटका मशीन जो आप इस्तेमाल करेंगे, बैटरी ऑपरेटेड हो, और उससे सिर्फ उसको एक
0: हल्का सा झटका
2: लगे, जैसे कि मशीन से पता चल रहा है, उसको नुकसान नहीं होगा, तो आप उसको भी उपयोग में ले सकते हैं।
0: मतलब पशु भग भी जाए और नुकसान भी नहीं हो।
2: हाँ, बिल्कुल,
0: ताकि अपनी फसल जो है वो
2: सुरक्षित रहे, है।
0: तो जी, बिल्कुल कल्याण जी, आपने माँ के स्टूडियो में फोन करो, इनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, अपन बात कर रहा था पक्षियों का पर्यावरण में जैव विविधता में योगदान पे
2: जी।
0: तो जैव विविधता जो है, जिसमें अपन देख रहे हैं कि कई सारा बीज को प्रसारण केवल पक्षियों की वजह से ही दूर दूर तक हो जावे, जहाँ नहीं मिलना चाहिए वहाँ भी वो बीज पहुँच जावे, और वो उनके अंदर पक्षियों को महत्वपूर्ण रोल है।
2: जी जी जी,
0: ये पक्षी एक बीज, एक प्रकार का बीज है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचावे में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। अगर ये पक्षी नहीं हो तो अपने पर्यावरण पर उनको कहीं प्रभाव पड़ेगा।
2: जी बिल्कुल, जैसे कि सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक हैं, एक दूसरे पे आधारित हैं, तो वैसे ही हम समझ सकते हैं कि अभी तक जो हमने सुना कि ये जो कीट हैं उनको कंट्रोल हमारे पक्षी ही कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि पक्षी ही अगर नहीं होंगे पर्यावरण में, तो हमारे कीटों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। अब कीटों की संख्या बढ़ेगी तो हमारे जो कीटनाशक हैं आप उनका उपयोग करेंगे,
0: बहुत ज़्यादा मात्रा में
2: उपयोग करेंगे। अब कीटनाशक उपयोग होंगे तो आपका खर्चा भी उतना ही बढ़ेगा, उसके साथ साथ कीटनाशक उपयोग होंगे तो फिर आपके जो पर्यावरण है उसमें प्रदूषण भी वैसे ही बढ़ेगा, कि पानी में प्रदूषण हुआ, आपके एयर में पॉल्यूशन हुआ,
0: उसमें फसल में रसायन की मात्रा भी बढ़ जाएगी।
2: हाँ जी बिल्कुल, साथ में जो हमारे सीड्स वगैरह हैं उनमें भी वो पेस्टिसाइड का इफेक्ट दिखेगा, और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी वो भी हानिकारक है। अब जब पेस्टिसाइड इस मात्रा में, मतलब अगर हम यूज़ कर रहे हैं कीटनाशक को, तो वो कभी ख़त्म नहीं होता, बायो एक्यूमुलेंट है, बढ़ता रहता है और जमा होता रहता है। तो ये देखा गया है कि जितने भी हमारे पुरानी केस स्टडीज़ हुई हैं, तो बहुत सारे जो हमारी बर्ड्स, जैसे कि भरतपुर में केस हुआ था कि जो साइबेरियन क्रेन है, या फिर दूसरी जगह मोर, मध्य प्रदेश में बहुत सारे मोरों की एकदम डेथ हो गई थी, तो जब उनकी बायोप्सी की गई तो पता चला कि उनके जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो उनका सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अंदर इन कीटनाशक की मात्रा मिली है। ठीक है, तो ये उनकी जो मृत्यु का मेन कारण था वो हमारे कीटनाशक ही थे, जो कि हम उपयोग तो फसल बचाने के लिए कर रहे हैं, बल्कि वो किसी के लिए उनका नुकसानदायक रहे और उनकी मृत्यु का कारण बने। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें कीटनाशक उपयोग कम से कम करना है, और पक्षियों के बिना हमारा जो वातावरण है वो सुरक्षित या संभव नहीं है।
0: बिल्कुल, तो किसान साथी अपना ध्यान रखेगा कि रसायन को इस्तेमाल अपन कम से कम करें, ताकि अपनी फसल में भी उनकी मात्रा नहीं आवे, या आवे तो बहुत कम मात्रा में आवे, और साथ ही उनको उपयोग करवा वाला जो पक्षी है वो भी सुरक्षित रह सके। डॉक्टर साहब, एक और किसान साथी

0: फोन कर रहा है। हेलो
1: हेलो, आप
0: हेलो, हाँ साहब नाम बताओ अपनो। हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: आकाश। हाँ हेलो आकाश, कौन
0: हाँ
1: बोला? और सर,
0: हाँ नाम बताओ अपनो।
1: मैं शंभूलाल देवरा सर, किशनपुरा
0: शंभू लाल
1: रेलवे के
0: जी,
1: पास।
0: जी बिल्कुल, प्रश्न बताओ अपनो, कहीं पूछ पूछा रहे आप।
1: सर, मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहता हूँ कि यार, अपने यह पक्षी तोता है ना,
0: हाँ
1: ये सोयाबीन थोड़ी दोबारा बोई सर, जो अंकुरण ज्यादा निखा रहे,
0: अच्छा
1: अंकुरण
0: अच्छा
1: ज्यादा नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो सोयाबीन में अंकुरण से पहले तोता जो है वो नुकसान कर रहा है
1: जी,
0: खा करके, तो रोकथाम के लिए।
1: इसमें आप लोग रिबन का उपयोग कर सकते हैं जो कि आवाज़ निकालते हैं। आप कलेक्टिव चमकीले अपने डंडियों पे लगा के पेपर्स लगा सकते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत सारा उपाय आपने बताया पक्षियों हैं रोक करके या भगा करके अपनी फसलें सुरक्षित करवा का, और वना का उपयोग करके निश्चित रूप से अपना किसान साथी फसलें बचा सकेगा और पक्षियाँ थोड़ा सा अपने फसल से दूर रख के सुरक्षित रख करके अपनी फसल को उत्पादन ले सकेगा। आप कार्यक्रम में पधारे, आपने इतनी बढ़िया बढ़िया जानकारी दी, इनके लिए आप में बहुत बहुत धन्यवाद। और
1: धन्यवाद
0: किसान
1: सर।
0: साथियों, इनके साथ ही अपनों कार्यक्रम को समय भी समाप्त हो जा रही है, तो बीनू बहन आज्ञा ला,
1: हाँ बिल्कुल,
0: राम राम।
1: राम राम साहब।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। आकाशवाणी का ये झालावाड़ केंद्र है FM 103.2 MHz पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम कृषक चौपाल।

0: कृषक चौपाल कार्यक्रम में एक बार फिर आपकी बीनू बेन और आपका भाई
1: पवन शर्मा को
0: गणो राम राम। तो किसान भाइयों, मैं एक बार फिर उपस्थित था आपका सामने कृषक चौपाल कार्यक्रम किसाना को कार्यक्रम ले। और देखो यू जो कार्यक्रम छ इम आज में काय काय ले आया चाह आपके लिए, तो पवन जी बताओ सा।
1: बिल्कुल बीनू जी, सबसे पहले तो अपन चर्चा करेंगा पशुओं के लिए हरा चारा और संतुलित आहार की महत्ता के बारे में, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं जो पशुओं के लिए बहुत ज़रूरी है। हरो चारो जो कि अभी शुरुआत होगी है, अपना जो खेत पड़ा था जहाँ पे खाली पड़ा था वे अब हरो चारो में दिखबा लगी और अपना किसान साथी का पशु जो है वे चरबा लग गया है। तो और साथ ही साथ संतुलित आहार की महत्ता पर भी अपन चर्चा करेंगे और जैविक उर्वरक को कृषि पे जो प्रभाव पड़े उनके बारे में भी अपन जानकारी देगा डॉक्टर सेवाराम जी रूंडला साहब, और जो कि मृदा वैज्ञानिक है राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना के बारे में भी अपन जानकारी लांगा, और साथ ही सुनांगा एक बढ़िया सो लोक भजन।
0: वाह साहब, बहुत बढ़िया जानकारी और चर्चा को विषय चा आपको, और किसान भाई या सबको फायदो जरूर ले होगा। अब बात करा सबसे पहले पशुओं का हरा चारा की।
1: हाँ।
0: तो हरा चारो और संतुलित आहार की

0: अगर आपन बात करना चाह तो यो अपना जो किसान भाई बहन छ पशु पालक छ वहाँ का स्वास्थ्य के लिए, वहाँ का शारीरिक विकास के लिए, जो पशु वो पाल रहा छ वहाँ की प्रजनन क्षमता और विकसित हो, अच्छो दूध देवे, अच्छो मांस को उत्पादन हो, इसके लिए हरा चारो और संतुलित आहार बहुत ही अत्यंत आवश्यक
1: बिल्कुल
0: है।
1: बीनू जी, दो ही चीजें हैं जो अपना पशुएं स्वस्थ रह सके, हष्ट पुष्ट रख सके, और अगर पोषण बढ़िया मिलेगो तो अपनों जो पशुओं से उत्पादन है वो भी बढ़िया मिलेगो। तो पशुएं स्वस्थ रखबा के लिए, उत्पादन अच्छो प्राप्त करबा के लिए, और जब अपन बेचा वाणी है पशुएं तो उनकी अच्छी कीमत प्राप्त करबा के लिए जरूरी है कि उनको पालन पोषण अपन बहुत अच्छी तरीका से करा, वणी हरो चारो समय समय पे उपलब्ध करावा, साथ ही साथ संतुलित आहार भी उपलब्ध करावा ताकि किसी चीज़ की कोई कमी पशु के आहार में नहीं रहे। और इनके लिए अपना किसान साथी जाना ही है कि कौन सा पशु है, कौन सा आहार देना है। बाजार में भी कई प्रकार का पशु आहार मिले, अलग अलग पशुओं के लिए अलग अलग पशु आहार मिले। खास तौर से अपने यहाँ जो गाय और भैंस पाली जावे उनके लिए, भैंसा के लिए अलग पशु आहार उपलब्ध है। तो किसान साथी ध्यान रखना चाहिए कि अपन बदल बदल के ऐसा पशु आहार उपलब्ध करावा अपना पशु हैं जिनसे उनकी आवश्यकता है कि सभी तत्व बढ़िया मिलता रहे, संपूर्ण पोषण मिले और अपना पशु जो है वो स्वस्थ रहे।
0: और हरा चारा की जैसा कि आपने बात करी तो
1: हाँ
0: इसमें देखो विटामिन हो चे और खनिज लवण की प्रचुर मात्रा हो चे
1: हाँ
0: जो कि पशुओं ने रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करे चे
1: बिल्कुल
0: और बेहतर पाचन भी करे चे, यानी कि रसीलो और मुलायम हो चे जो हरो चारो रहो चे, तो जो पशु रहो चे वो बहुत चाव का साथ ही न खावे चे और
1: बीनू जी,
0: आसानी से
1: हरो
0: पच जाओ
1: चारो
0: चे।
1: जो है वो तो बिल्कुल ताजा चीज है, और ताजा चीज पशुओं के लिए बहुत फायदेमंद है। और अभी तो अपन देख रहे हैं कि बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध भी है। तो मौसम ऐसा है कि अगर किसान साथी पशुएं चराबा के लिए ले भी जावे नहीं तो वो पशु खुद अपना पेट भर के आ जावे, तो बहुत आसानी से उपलब्ध है और अपना किसान साथी इनको उपयोग करके पशु को पालन पोषण कर सके।
0: बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई, तो उम्मीद करा चाह आपना जो किसान भाई बहन छे वो वहाँ का पशु छे गाय भैंस बकरी जो भी वो पाल रहा छे वहाँ की अच्छी प्रजनन क्षमता होवे तो अच्छो पाचन होवे और वहाँ अच्छा पोषक तत्व प्राप्त होवे, उसको संबंधित संतुलित आहार वहाँ देवगा और वहाँ का पशुओं को इसको अच्छो विकास भी
1: बिल्कुल
0: होगा।
1: बिनो जी, और अब जो जानकारी अपन देवे चाह रहे हैं, हाँ अपना किसान साथी हैं जैविक उर्वरक के बारे में। वैसा तो अपना किसान साथी जाने ही है कि जैविक उर्वरक कहीं हुए, लेकिन कृषि में इनको कहीं कहीं प्रभाव पड़ रहे हो, अपने खेती पे कहीं इनको प्रभाव पड़ रहे हो, इनके बारे में आज जानकारी दे रहा है डॉक्टर सेवाराम जी रुमला साहब जो कि मृदा वैज्ञानिक है। तो यहाँ से की गई बातचीत अपन सुना और सुनावा अपना किसान साथी आया।
2: जलवायु और ऊर्जा, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है मानव द्वारा किया गया जीवाश्म ईंधन का उपयोग, जैसे कोयला, तेल और गैस। सबसे ज्यादा प्रभाव कोयला डालता है और गैस व तेल भी बहुत ग्रीनहाउस गैसेस छोड़ते हैं। हालांकि अब विकासशील देशों का योगदान बढ़ रहा है, लेकिन अमीर देशों ने पहले कदम उठाने में देरी की है। आबादी के बढ़ने और आर्थिक विकास से ऊर्जा की मांग बढ़ती है। सौर, पवन, समुद्र, जैव और भूताप जैसे स्वच्छ ऊर्जा के बिना जलवायु लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ एक रोचक तथ्य है, कई देश 2030 तक जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का दुगना से भी अधिक उत्पादन करने की योजना बना रहे हैं, जो पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य से अधिक है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
0: आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सेवाराम रूनला, मृदा वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र, और आज का हमारा विषय है जैविक उर्वरकों का कृषि पर प्रभाव। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे किसान वाणी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। राम राम सर।
3: राम राम सर, नमस्कार।
0: जैसा कि आज का विषय है जैविक उर्वरकों का कृषि पर प्रभाव, तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैविक उर्वरक क्या होते हैं, किसे कहते हैं जैविक उर्वरक?
3: सभी को पुनः एक बार नमस्कार। और अभी वर्तमान में देखते हैं कि डीएपी और यूरिया और रासायनिक उर्वरकों की काफी किल्लत हो रही है, तो इस संदर्भ में बहुत अच्छा टॉपिक है जैविक उर्वरक और खाद करते हैं जिनमें जीवांश की की मात्रा ज्यादा से ज्यादा पाई जाती है।

0: और जिनको स्थानीय उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से तैयार किया जाता है, जैविक खादें या जैव उर्वरक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर बात करते हैं तो अभी वर्तमान में जैविक उर्वरकों में जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है उनमें आपका राइजोबियम कल्चर आता है, फिर एजोट आता है, एजोस्पिरिल्म आता है, और बीजी आता है ब्लूग्रीन एल्गी, एक एजोल आता है। तो इस तरीके से ये नाइट्रोजन के लिए जाने जाते हैं। और नैनो यूरिया आ रहा है जिसमें नाइट्रोजन पाई जाती है, और इफको के माध्यम से तैयार किया जाता है, सहकारी समिति किसानों की, और किसानों को उपलब्ध कराए। इसी तरीके से फॉस्फोरस की बात करते हैं तो पीएसबी कल्चर आता है, फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया आता है, जिसके माध्यम से जो मृदा में अप्राप्य अवस्था के अंदर फॉस्फोरस पड़ा है उसको प्राप्य अवस्था में बदल के पौधों को उपलब्ध कराते हैं। साथ ही नैनो डीएपी आ रहा है जिसके अंदर नैनो डीएपी में नैनो उपलब्ध कराता है। इसी तरीके से पोटास आता है, नैनो पोटास आता है, और साथ में जो जैव उर्वरक है उनकी बात करते हैं तो पोटास मोबिलाइजर आता है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, छोटे पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक तत्वों में, जिसमें जिंक का भी आता है, इसी तरीके से आयरन का आता है, जो अप्राप्य अवस्था के अंदर उपलब्ध होता है उसको प्राप्य अवस्था में बदलते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे जैविक उर्वरकों का उपयोग हमारे किसान भाई बहन कहते हैं करते हैं, तो ये पहले से भी चले आ रहा है, और इसके अलावा अभी वर्तमान में जैविक उर्वरक जैसा कि आपने बताया नाम ये सब हैं, तो क्या इनको घर पे भी बना सकते हैं किसान भाई बहन?
0: वैसे एक्चुअल में जो जैविक उर्वरक और जैविक खादें, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। जैविक उर्वरकों को अधिकतर कंपनीज या अब किसी संस्थान के द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिनमें कुछ ऐसे कल्चर आते हैं जिनको एक फिक्स टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। वो किसान नहीं कर पाएंगे क्योंकि किसानों के पास सुविधा नहीं होती, क्योंकि जब टेम्परेचर होते ही वो सूक्ष्म जीव है वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो इनको जैविक उर्वरक को ही हैं तो वो किसान अपने स्तर पर नहीं बना पाता है, लेकिन इनके जो सब्स्टिट्यूट है, जो अलग प्रकार के जो कल्चर है, जैसे मान लो जीवामृत आता है एक, तो उसको किसान खुद बना सकता है। उस ट्राइकोडर्मा को किसान खुद अपने स्तर पे लार्ज स्केल पे उसका संवर्धन कर सकता है। इसी तरीके से मेटराइजम आता है, इसी तरीके से और भी जो इस तरीके से किसानों के लिए जो उपयोगी है अधिकतर चीजें, उनमें से कुछ चीजें किसान बना पाता है, कुछ चीजें संस्थान के द्वारा तैयार की जाती है। बल्कि जो अपने जैविक खाद है या जैविक अपन जीवांश खादे बोलते हैं, जिनमें जैसे गोबर का खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी वास है, वर्मी वास एक जैविक या होता है, वो किसान खुद बना सकता है अपने स्तर पे
1: तो इसे
0: उसके।
1: किसान कैसे बनाए, इस बारे में कुछ बताइए।
0: बिल्कुल, जैसे अगर बात करें वेस्ट डिकम्पोजर आता है एक, तो वेस्ट डिकम्पोजर क्या करता है, अप्राप्य अवस्था के अंदर जो चीजें पड़ी रहती है प्लस जो अवशेष रहते हैं उनको सड़ा के मिट्टी में मिलाते हैं। जैसे 180 लीटर पानी ले किसी भी पात्र के अंदर, या प्लास्टिक का या सीमेंट का टैंक है, उसमें लगभग 20 रुपए की एक वेस्ट डिकम्पोजर की एक कल्चर आती है। उस कल्चर को पानी में घोल के डाल दे, साथ ही लगभग 1 से 1.5 किलो जगरी लेनी है, गुड़ वगैरह या मीठा कोई भी चीज जो वेस्ट है, साथ ही आधा 1 किलो चापड़ ले लें, और सिंपल सा उसको अच्छी तरीके से घड़ी की दिशा में घुमाना है सुबह सुबह 2-3 दिन तक, गर्मी के अंदर, और सर्दियों में 5-6 दिन लगते हैं। और वो कल्चर, उस कल्चर को किसान मल्टीप्लाई कर सकता है। फिर जैसे किसान दही जमाने के लिए या परिवार जमाते हैं तो दूध वो गर्म करते हैं, ठंडा करके फिर जामुन डालते हैं, तो इसी तरीके से उस वेस्ट डिकम्पोजर को लंबे समय तक किसान अपनी खेती किसानी के अंदर वहां वो साइकिल के रूप में बना सकता है और उसको यूज कर सकता है। बल्कि या जो जैसे जिनमें जैसे कल्चर है, तो कल्चर के लिए एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए और फिक्स एक ठंडा चाहिए बनाने के लिए। अगर नहीं कर पाते तो उसके अंदर छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं जो खत्म हो जाते हैं, तो जब बन जाए और उपयोग करने के लिए तो वो उसको फिर किसान जैसे बोलते मात्रा में, तो उसको किसान बीजोपचार से या भूमि उपचार के माध्यम से उपयोग कर सकता है। इसी तरीके से जैसे ट्रैक्टर आता है, वो तरह आता है और एक सॉलिड फॉर्म में एक पाउडर रूप में आता है, किसान उसको भी मल्टीप्लाई कर सकता है। जैसे 1 किलो ट्राइकोडर्मा लिया, उसको 100 किलो वर्मी कंपोस्ट या गोबर में सड़े में डालें, छायादार स्थान पर रखें, नमी मेंटेन करें, फिर उसको मल्टीप्लाई हो जाता है धीरे धीरे, फिर उसमें से 2 फिर 50।

0: लोगों को मिला है, इस तरीके से चलता रहता है। लेकिन जो स्पेशल जैसे पीएसवी कल्चर है, जो डॉक्टर है, राइजोबियम कल्चर है, इनको एक फिक्स संस्थान या इंस्टीट्यूट के माध्यम से बनाए जाते हैं, क्योंकि इनके लिए काफी स्टैंडर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं। वो किसान अपने स्तर पर नहीं कर पाता है, क्योंकि किसान के पास एक लिमिटेड रिसोर्स और सुविधाएं पाई जाती है।
1: जी, आपने सही कहा। कुछ बातें किसानों को ध्यान रखनी होगी, क्योंकि सावधानियां तो रखनी होगी अगर वो बनाते हैं जैविक उर्वरक भी। तो
0: बिल्कुल
1: इसके साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जैविक उर्वरकों का उपयोग हमारे किसान भाई बहन करते हैं तो उन्हें क्या फायदे होंगे, क्या लाभ होंगे, ताकि
0: बिल्कुल।
1: वो भविष्य में जाके अच्छा उत्पादन ले सके।
0: फायदे की बात अपन करें, लाभ की बात करें, तो बहुत सारे फायदे हैं। एक सिंपल सा उदाहरण मैं कोट करता हूँ। जिस तरीके से अपन अपना खाना दाना अपन लेते हैं मानव शरीर या पशुओं के लिए, तो अगर अपन अगर रहेंगे तो अपने शरीर में विभिन्न प्रकार कमजोरियां दिखाई देगी। अगर अपन संतुलित भोजन, सब्जी है, अचार है, पापड़ है, दही है, दूध है, छाछ है, तो इस तरीके से ये एक अपने को एक मल्टी सोर्स पोषक तत्व मिलते हैं अलग अलग स्रोतों से। सेम उसी तरीके से धरती की बात करते हैं या धरती माँ के पोषण की बात करते हैं, तो जीवांश खादों से, जैव उर्वरकों से, जो उसमें अलाभकारी चीजें पड़ी है, उन अलाभकारी चीजों को जैविक स्रोतों के जो घटक है उनके माध्यम से काउंटर किया जाता है। तो उसमें एक तो किसान को सीधा सीधा फायदा ये कि कृषिगत लागत जो बढ़ रही है, उस बढ़ती हुई कृषि लागत में वो आसानी से खेती किसानी कर सकता है, क्योंकि वो स्थानीय उपलब्ध चीजें हैं। किसान अपने स्थानीय उपलब्ध चीजों को अगर ज्यादा उपयोग करता है तो लागत कम होगी। कई बार भारत में जो चीजें हैं या बाजार में जो निर्भरता है ना, उस निर्भरता को कम करने का तरीका सीधा सी ये कि स्थानीय उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से अपने आदान उपलब्ध कराएं, बनाएं उनको और खेत में यूज करें। दूसरा, मिट्टी का स्वास्थ्य बहुत लंबे समय तक बनाए रहेगा अच्छा, क्योंकि अभी देखते हैं कि हाड़ौती क्षेत्र में बहुत ही एक विकट समस्या है कि यहाँ पर कीटनाशकों का बहुत ज्यादा लोड है, पीड़क नाशकों का बहुत ज्यादा लोड है मिट्टी के ऊपर, और खरपतवार नाशकों का काफी लोड है। तो किसानों को इस लोड को कम करते हुए अपने मिट्टी के स्वास्थ्य को लंबे समय तक सुचारू कैसे बनाए रखें, इस पे काम करना चाहिए। और ये काम हो पाएगा जब अपन जैविक उर्वरक और जीवांश खादे अगर डालेंगे, क्योंकि बिना जीवांश खादों के उस जहर को काउंटर अपन कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जितने भी डीएपी आधारित या कीटनाशक आधारित खेती अपन कर रहे हैं, तो उस खेती का सीधा सीधा जो नुकसान ये है कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, मिट्टी को नुकसान हो रहा है, उससे उत्पादित अनाज के अंदर जहर आ रहा है, उसको खाने वाला आदमी बीमार हो रहा है। तो दो तीन चीजें हैं। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट लाभ है कि आप अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, दूसरा मिट्टी के स्वास्थ्य को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं, तीसरा मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और जीवों के स्वास्थ्य को आप बचा सकते हैं। क्योंकि बिना जीवन या बिना जीवों के प्रकृति के अंदर संतुलन करना बिल्कुल भी अपन सोच भी नहीं पाए, कल्पना से बाहर है। तो खेती किसानी में अगर जीवांश खादों का, जैविक उर्वरक का उपयोग करते हैं, तो इसका सीधा जो लाभ है वो उपभोक्ताओं को होगा, साथ ही अपन इस धरती माँ को बचा सकते हैं। क्योंकि आगामी पीढ़ियों को अपन अच्छी स्वस्थ मिट्टी ही दे के जा सकते हैं, क्योंकि अपन पैसे या नोटों की बोरी भर के नहीं दे सकते। क्योंकि आने वाले समय में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा तो वो स्वस्थ मिट्टी, क्योंकि जहां पर स्वस्थ मिट्टी है वहां पर जनता स्वस्थ रहेगी, वहां का जो पैसा है वो बचेगा, अच्छे कार्यों में लगेगा। अभी हो कि जो हर घर के अंदर, हर दूसरे घर में, हर परिवार के अंदर कोई ना कोई पेशेंट है, कोई ना कोई बीमार आदमी है, और इसका संबंध अगर देखते हैं, इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या सीधा संबंध या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध देखते हैं, तो वो खान पान की चीजों से। खान पान की चीजें अधिकतर खेत खलिहान से आती है, तो अपने को खेती किसानी में स्थानीय उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए।
1: आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे किसान भाई बहन जैविक जैविक उर्वरकों का उपयोग कृषि में करते हैं तो फसल की तो उत्पादकता बढ़ेगी, साथ साथ उनके स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और मिट्टी का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा, और इसके साथ ही पोषक तत्वों की उपलब्धता भी बढ़ेगी। तो लागत का क्या रहता है सर इसमें?
0: लागत अभी देखते हैं, जैसे बाजार आधारित अगर खेती करेंगे अपन, जैसे मान लो एक बार आप उसी ट्राइकोडर्मा से आप लगभग 2-5 हजार रुपए का ट्राइकोडर्मा घर पे बना सकते हैं आराम से। अगर आप रासायनिक उर्वरक की बात करते हैं, तो अभी डीएपी का जो है कट्टा, जो अभी किसानों को 15 रुपए मिल रहा है, जबकि उसकी असली कीमत 3 हजार है, क्योंकि सरकार

0: तो अनुदान उनको नहीं सोचते कि अपना जेब से पैसा कितना गया है, जबकि जेब से पैसा 1500 रुपये किसान का गया है, 1500 रुपये सरकार का गया है। तो सरकार की अपन जैसे किसानों की है या जो जनता जनार्दन जो भी है, पूरा पैसा तो जा ही रहा है ना उसका, देसी कंपनियां जो बना रही है, बाहर से इम्पोर्ट होता है आया है। तो लागत की बात करते हैं तो लागत बहुत ज्यादा बढ़ती है अगर आप बाहर का या बाजार आधारित खेती के ऊपर ज्यादा निर्भर होते हैं। तो किसानों को संतुलित मात्रा में 17 आवश्यक पोषक तत्व है उनको देते हुए खेती किसानी करें, लागत भी कम होगी, किसान का मुनाफा भी बढ़ेगा।
1: और पर्यावरण संरक्षण भी होगा।
0: बिल्कुल, पर्यावरण एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करते हैं किसी देश की, और वो आज अगर उसकी पहचान है तो पर्यावरण देश कम से कम प्रदूषित करता है या पर्यावरण को जो बचाता है उस देश का नाम ऊंचाई के ऊपर लिया जाता है। अभी बीच में सरकार बोल भी रही कि जीरो करेंगे अपन CO2 का, इनका होती है और ज्यादा अपने ग्रीन हाउस लेकिन उससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। अगर आप स्थानीय उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से खेती करते हैं तो आपका खेती किसानी के अंदर पर्यावरण के अंदर मृदा का प्रदूषण, जल प्रदूषण, इन सबसे बच सकते हैं अपन।
1: जैसा कि आपने बताया सरकारी तंत्र की बात करी, तो क्या सरकारी सहायता भी मिलती है यदि किसान जैविक उर्वरकों का इस्तेमाल करता है?
0: बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी टोटल जो सरकार ने एक ट्रांसपेरेंसी बना रखी है और ऑनलाइन सिस्टम है पूरा, अगर किसान इनका फायदा, किसान पोर्टल आता है उसके माध्यम से, साथ ही एक पोर्टल सरकार का है उसके माध्यम से किसान सुविधा है, एक किसान साथी पोर्टल भारत सरकार का है और एक दूसरा पोर्टल है किसान सुविधा ऐप के माध्यम से, आप ऑनलाइन माध्यम से जाके उस सुविधा का फायदा ले सकते हैं। ई मित्र के माध्यम से आप अपनी जमाबंदी, आधार, नकल जो भी है, नक्शा, सारी चीजें ले जाके इनके ऑनलाइन आप फायदे ले सकते हैं, और सरकार किसानों के खातों में DBT के माध्यम से इनका अनुदान उपलब्ध कराती है।
1: डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी स्वास्थ्य हमारे किसान भाई बहनों के लिए और सभी श्रोताओं के लिए, इतनी अच्छी सारगर्भित जानकारी आज किसान भाई बहनों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।
0: धन्यवाद आप सभी को, और पुनः एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ आकाशवाणी को कि आपने मेरे को मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत।
2: तो किसान साथियों, अभी आप जैविक उर्वरकों पर का कृषि पर प्रभाव, इस विषय पर डॉक्टर सेवाराम रूंडला जो कि मृदा वैज्ञानिक है, यहाँ से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे, और भेंट कर रही थी श्रीमती बीनू शर्मा।

0: और विनोद जी, अब कार्यक्रम में जानकारी की बात में राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना के बारे में आज जानकारी दांगा अपना किसान साथियां हैं। तो राजस्थान में कृषि यंत्र अनुदान योजना जो सरकार की योजना चल रही है, इनके अंतर्गत अपना किसान साथी जो है, जिनके पास जमीन है, जिनके नाम पे जमीन है, वे किसान साथी कृषि यंत्र पे अनुदान प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि जो पात्रता है उनके लिए किसान हो वो जरूरी है, यानी कि उनके पास जमीन हो वो जरूरी है। साथ ही साथ इनमें जो योजना को लाभ है वो लागत को, यानी कि कृषि यंत्र की लागत को 40 से 50% तक अनुदान सरकार के द्वारा दिया जावे, तो किसान साथी इनको लाभ ले सके। साथ ही साथ जो दस्तावेज है उनकी अगर अपन बात करें और पात्रता की बात करें कि कौन कौन सी चीज़ों पर अपना अनुदान मिल सके, तो कृषि में काम आवा वाला कोई सा भी यंत्र पे अपन अनुदान ले सका। साथ ही साथ जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में लगवा वाला यंत्र पे भी अपन अनुदान ले सका। तो आवश्यक दस्तावेज जो है आवेदन के लिए, वो आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, भूमि की जमाबंदी है, और जो अगर आप कोई विशेष कैटेगरी में SC ST या अन्य कैटेगरी में अगर आवेदन करवा चाहो तो उनको प्रमाण पत्र अपने पास हो वो जरूरी है। साथ ही साथ जो पंजीकृत अधिकृत उपभोक्ता विक्रेता है या निर्माता है कृषि यंत्र का, वहाँ से ही अपना यंत्र लेना पड़ेगा।
1: और इकी जो आवेदन प्रक्रिया छ वह आप ऑनलाइन ई मित्र का माध्यम से कर सको छो। अब देखो यह योजना छ इको जो मुख्य उद्देश्य छ ना वो यो छ कि आप लोग जो किसान भाई बहन खेती कर रहे चनो वह आपकी लागत कम हो और समय की बचत भी हो और साथ ही साथ उन्नत खेती आप लोग कर सको, उनकी तरह प्रोत्साहित हो सको। तो राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना किसान भाइयों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी है।
0: बिल्कुल, किसान साथी इनको उपयोग कर सके। और विनोद जी, अब कार्यक्रम के अंत में चलते चलते थोड़ा सा मनोरंजन तो कर ही ला, आओ सुना एक बढ़िया सा लोक भजन।

0: और बुनो जी, लोक भजन के साथ ही अपना कार्यक्रम को समय भी समाप्त हो जा रही है, तो अपना किसान साथी से आज्ञा ला।
1: बिल्कुल,
0: राम
1: फिर
0: राम
1: मिलेंगे नई जानकारी, नई चर्चा और नया विषय के साथ। तब तक के लिए
0: राम
1: राम राम।
0: राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषक चौपाल। आकाशवाणी का ये झालावाड़ केंद्र है FM 103.2 MHz पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
1: सूरत हो खुदाया मेरी, शेयरिंग बॉक्स ये रहा, जिंदगी शम्मा की। अरे रेजर तो इसमें है ही नहीं, फिर दाढ़ी कैसे बनाऊंगा? रेहाना, अरे ओ भाई रेहाना, ओफो न जाने इस घर को क्या होता जा रहा है। अभी तक तो सिर्फ रेजर गायब था और अब बेगम भी गुम हो गई।
2: तौबा है, अच्छी खासी मैं घर में हूँ, फिर भी यूं चीख रहे हैं जैसे कि मैं लंदन में हूँ। क्या बात है, क्यों सदा लगाई थी?
1: इसमें वो रेजर नहीं है,
2: उसे तो मैंने फेंक दिया।
1: फेंक दिया? लेकिन क्यों?
2: वो भी कोई रेजर था, बिल्कुल पुराने फैशन का।
1: क्या मतलब?
2: अजी वैसा रेजर तो बाबा आदम के जमाने के लोग इस्तेमाल करते थे।
1: ये तुम क्या कह रही हो? अरे भाई मैं कल ही तो खरीद कर लाया था और आज तुमने फेंक दिया।
2: जनाब आज का जमाना तरक्की का है, दुनिया की हर शय बदल रही है।
1: जी
2: जी हाँ, लोग पुराने को छोड़कर नए को अपना रहे हैं, लेकिन एक आप है कि वही कदर के वक्त के फैशन से चिपके हुए हैं।
1: तकरीर तो काबिले तारीफ है आपकी, लेकिन ये बताइए मेरी दाढ़ी का आप क्या होगा?
2: वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ये लो, बिल्कुल नए किस्म का शानदार रेजर। मेरे भाईजान इसी तरह का रेजर इस्तेमाल करते हैं, तुम भी करो ना, तब तक मैं चाय बना कर लाती हूँ।
1: नए किस्म का मेरे भाईजान इस्तेमाल करते हैं। चल भाई राशिद, अब इसी से दाढ़ी खुरस डाल, वरना कहीं बेगम साहिबा ने इसे भी पुराने फैशन का करार दे दिया तो फिर बिना दाढ़ी बनाए ही ऑफिस जाना पड़ेगा।
3: आदमी है दुआ बन के
1: तमन्ना। चाय तैयार हो गई हो तो ले आओ।
2: कहो कैसा था रेजर, शेप ठीक से बनी कि नहीं?
1: हाँ ठीक बनी। कम्बक ने गाल को जगह जगह से काट कर पानीपत का मैदान बना दिया। ये देखो
2: नया था ना, इसलिए धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो फिर देखने से कमाल। ये लो
1: लो
2: चाय पी लो।
1: अरे ये कब कहाँ से आ गया?
2: कल नया स्टील का सेट खरीदा है, अच्छा है ना?
1: लेकिन
2: बिल्कुल ऐसा ही मैंने फूफी जान के घर में देखा था, बहुत खूबसूरत लगा तो मैंने भी ले लिया।
1: लेकिन इसकी क्या जरूरत थी, वो चीनी मिट्टी वाला सेट तो अभी ठीक ठाक था।
2: अच्छा छोड़िए भी, वो जमाने गए जब लोग मिट्टी के बर्तनों में खाते पीते थे।
1: अब तुमसे तो वो बहस करे जिसके पास फालतू दिमाग हो।
2: इसमें बहस कैसी, वो मिट्टी के कप निगोड़े हुड़क चिल्लू जैसे मुझे एक आंख भी ना भाते थे। जुमे को खाला जाना ही थी, मैंने उन्हें उसी कप में चाय दी तो वो हंसकर बोली, क्यों रेहाना ये टी सेट क्या मुहर जोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में निकला था? उफ क्या बताएं, मारे शर्म के मैं तो पानी पानी हो गई।
1: और इसीलिए तुमने उन्हें फौरन नादान में फेंक दिया।
2: तो और क्या करती, एक बार तो ना कट गई, अब क्या दूसरे मेहमानों के आगे भी अपनी बची खुची नाक कटवाऊं?
1: जी नहीं कतई नहीं, मैं कुतुब मीनार की तरह अपनी नाक ऊंची रखी है, भले मैं कंगाल हो जाऊं। हां
2: तुम तो नाहक परेशान हो रहे हो, ये सेट मैंने पैसों से थोड़े ही खरीदा है।
1: तो फिर क्या आसमान से टपका है या आपकी वो खालाजान खरीद के दे गई है?
2: हटो भी, अल्लाह न करे हम लोग किसी के भरोसे जिंदगी गुजारे। ये सेट तो मैंने अपनी चार पुरानी फैशन की साड़ियों और वो तुम्हारी दो पैंटे थी ना उनके बदले में लिया है।
1: क्या मतलब,

0: जहां तक मुझे याद है ना तो तुम्हारे पास कोई पुराने फैशन की फालतू साड़ी थी और ना मेरे पास पैंट। फिर तुमने किन कपड़ों के बदले में ये सेट खरीद डाला?
1: तौबा तौबा, वो चारों साड़ियाँ कहीं पहनने लायक भी नहीं रह गई थी।
0: क्यों, क्या हो गया था उनमें?
1: अरे चारों साड़ियों के प्रिंट आउट ऑफ डेट हो चुके थे। उस दिन पार्टी में चाचा जान की लड़की नजमा को देखा था ना?
0: हाँ, देखा
1: था। कितनी खूबसूरत डिजाइन थी उसकी साड़ी की, उसके आगे तो मेरी साड़ी ऐसे लग रही थी जैसे
0: मखमल के आगे टाट। क्यों?
1: हाय तुम कितने अच्छे हो, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली।
0: लेकिन मेरी अच्छी बेगम, मेरी अच्छी बेगम, भाई मेरी पैंटों ने क्या कसूर किया था जो तुमने उन्हें टी शर्ट पर भेंट चढ़ा दिया?
1: अरे वो 24 इंच की मोरी वाली पतलून में थी की गरारा, अब तो कोई बेल बॉटम भी नहीं पहनता। मैं तो कब से मौके की तलाश में थी कि कब मौका आए और उन्हें कब घर से बाहर निकालूं।
0: बहुत खूब, भाई खाला जान ने टी शर्ट का मजाक उड़ाया और तुम्हें मौका मिल गया पतलूनों को घर से निकाल फेंकने का। भाई बहुत अच्छे, कल आपके कोई चचीजान मेरा मजाक उड़ाए तो मुझे भी पुराना कहकर घर से निकाल देना और कोई नया सोहन ले आना घर में।
1: क्या उल्टी सीधी बातें मुंह से निकाल रहे हो, जरा सोचो इन बेकार और पुराने फैशन के कपड़ों से कम एक काम की चीज तो घर में आ गई।
0: काम की चीज? वाह, जितनी कीमत की बुलबुल नहीं उससे ज्यादा की उसकी उड़वाई।
1: ओफो, एक तो इतनी किफायत से मैं घर चला रही हूँ, उस पर तारीफें करने के बजाय खामखा नाराज होते हैं।
0: वाह वाह वाह, क्या कहने हैं किफायत शुआरी के। देखो रेहाना, तुम्हारी ये किफायत किसी दिन मेरे हाथ में कटोरा थमा देगी। हाँ
1: ओफो, खुदा जाने तुम कब समझोगे।
0: मैं सब समझता हूँ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये बताओ पैंट तो तुमने उस बर्तन बेचने वाले को पहना दी, अब मैं ऑफिस पहन कर क्या जाऊँ, तुम्हारी साड़ी या तुम्हारा पेटीकोट?
1: नहीं नहीं, अभी इसका फैशन मर्दों तक नहीं पहुँचा है। वैसे आने वाले दिनों में हो सकता है कि मर्द साड़ी बांधने लगे, फिलहाल ये लो इसे पहन कर जाओ ऑफिस।
0: ये?
1: हाँ
0: ये पहन कर जाऊँ?
1: हाँ पहन कर देखो, मजा आ जाएगा।
0: ये सूती पैर पहन कर ऑफिस जाऊँ?
1: ये सूती नहीं है, इसे कहते हैं अमेरिकन जीन्स।
0: इसे घोड़े की जीन भी कहते हो तो अपनी बला से, मैं यह नहीं पहनूंगा।
1: क्यों नहीं पहनोगे? पता है मार्केट में से कितनी शॉर्टेज चल रही है, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाई हूँ। मेरे भाई जान तो इसके चक्कर में पड़ोसी देश तक जाते हैं। और
0: वो
1: एक
0: इसके चक्कर में पड़ोसी देश जाते हैं चांद पर, तो मुझे क्या, तुम उन्हीं को यह सारंगे का गुलाब पहनाना, समझी?
1: आखिर इसमें बुराई क्या है?
0: एक हो तो बताऊं, भला ये भी कोई पैंट है? चिपकी चिपकी चूड़ीदार पजामे जैसी, सिलाई तो यूं लगी है जैसे चींटियां रेंग रही हो, और तो और जगह जगह से रंग भी उतर चुका है।
1: जवाब नहीं तुम्हारा, अजी यही तो इन पैंटों की खासियत है।
0: यानी रंग उतरना?
1: जी हाँ, इसे ही तो कहते हैं फेडेड जीन्स। जैसे जैसे इसका रंग उतरता है वैसे वैसे इसकी कीमत बढ़ती है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: और कहीं अगर ये मोहरी के पास से फटकर झालर की तरह हो जाए तो समझो इसकी कीमत दुगनी।
0: हद खत्म हो गई पागलपन की, नया फैशन की बवाले जान।
1: बस ज्यादा सोचो नहीं, अब फटाफट तैयार हो जाओ। पहन लिया? अरे वाह, क्या स्मार्ट लग रहे हो, क्या फिटिंग है, आज तो ऑफिस में तुम ही तुम नजर आओगे।
0: बस पहने दो, इस मार क्या खाक लग रहा हूँ। अरे सारस लग रहा हूँ सारस, वो कमबख्त टांगों से जो कितने चिपकी हुई है, हवा तक पास होने का नाम नहीं।
1: अब ज्यादा दरकनूसी बातें मत करो, लो लंच बॉक्स लो।
0: लंच इस बालिश भर के डिब्बे में?
1: हाँ आज से इसी में लंच ले जाओगे तुम।
0: क्यों, मेरा वो चार कटोरों वाला बड़ा सा कटोरदान क्या हुआ?
1: कुछ तो अगर से काम लो, भला इस पैंट के साथ वो घंटाघर मार का कटोरदान मैच करेगा?
0: और लीजिए, अब साला ये फैशन खाने पीने में भी शामिल हो गया। लगता है तुम्हारा ये नया फैशन मुझे भूखा मार डालेगा। भला इस डिब्बे में कितना खाना आया होगा?
1: अच्छा खासा खाना आता है इसमें, मेरे मायके में सारे लोग इसी में खाना ले जाते हैं और फिर दोपहर में वैसे भी खाना कम खाना चाहिए।
0: क्यों?
1: टोन निकल आती है, स्मार्टनेस खत्म हो जाती है और आदमी बेडौल हो जाता है।
0: बस बस बोर मत करो, मेरे जूते कहाँ हैं?
1: ये रहे।
0: ये क्या है?
1: जूते हैं और क्या है।
0: लेकिन मुझे तो ये उगलदार नजर आ रहे हैं, मेरे वो अपने पुराने जूते क्या हुए?
1: अजी मिट्टी डालो उन पुराने मेजर पुमा जूतों पर, इन्हें पहनो, इन्हें कहते हैं लॉन्ग बूट।
0: लॉन्ग बूट?
1: जींस पर यही पहने जाते हैं।
0: सुनो रेहाना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कोई सड़क पर तारकोल फैलाने नहीं जा रहा जिसमें मुझे इन घुटनों तक ऊंचे ऊंचे जूतों की जरूरत पड़ेगी, समझी? मेरे तो वही पुराने जूते लाओ।
1: वही पुराने पुराने की रेट, 100 दफा कहा है कि नए फैशन के लिहाज से रहा।
0: अच्छा बस बस, नया फैशन, नया फैशन, लाल जूते, साले नए फैशन की तो ऐसी की तैसी।

0: या खुदा इस नए फैशन की बला से अरे दुश्मन को।
1: उठो उठो उठो उठो, कोई बात नहीं, पहनोगे आदत पड़ जाएगी ना, सब ठीक हो जाएगा।
0: अरे आदत क्या बन जाएगी, पैर टूट गया।
1: प्लीज उठो उठो।

0: तुमने मुझे बुलाया डियर।
1: यस डार्लिंग, कम ऑन। हाँ हाँ आ जाओ, देखो ये है तुम्हारा घर।
0: हाउ स्वीट।
2: क्या कहा? किसका घर? कैसा घर? आखिर ये चुड़ैल है कौन?
0: शट अप, मैं चुड़ैल नहीं, मेरा नाम लैला है। क्यों डियर?
2: अरे चल हट कल मुही, बड़ी आइडिया और डार्लिंग वाली।
0: ओ डियर, तुम तो कहते थे मुझे यहाँ बड़ा आराम मिलेगा, मैं रानी बनकर रहूंगी। ओ माय गॉड, लेकिन यहाँ तो, यहाँ से चलो डियर, यहाँ मेरा दम घुटता है।
2: अरे मैं तेरी जान ले लूंगी कमीनी, शर्म नहीं आती तुझे? पराए मत को डियर कहते। ए जी, तुम बोलते क्यों नहीं? ये डिकोरी कौन है?
1: अरे भाई ये लैला है। लैला,
2: तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है?
1: मेरा ताल्लुक? मेरा ताल्लुक तो वही है जो शीरी का फरहाद से और सोनी का महिमाल से था। मैं इसका मजनू हूँ।
0: क्या आ गया समझ में? इतनी देर से ऐसे डांट रही थी जैसे घर की नौकरानी न होकर मालकिन हो।
2: क्या कहा? मैं नौकरानी हूँ? चल कल मुझे, मैं अभी तुझे मजा सिखाती हूँ।
1: अरे अरे अरे क्या कर रही हो रहना? बस बहुत हो चुका, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भाई लैला मेरी बीवी है और तुम उस पर हाथ उठा रही हो।
2: क्या कहा? ये तुम्हारी बीवी है?
1: जी हाँ, ये मेरी नई शरीके हयात है।
2: या खुदा, ये सब सुनने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती?
1: लो, अब इसमें होने की क्या बात है? बस तुम तो खुश होना चाहिए कि मैंने अपनी सभी पुरानी चीजों को अपने से अलग कर दिया है।
2: ये तुम क्या कह रहे हो?
1: ठीक कह रहा हूँ, बताओ आपके आज का जमाना तरक्की का है, लोग बदल रहे हैं, पुरानी चीजों को छोड़कर नए को अपना रहे हैं। इसीलिए मैं भी नया फैशन टीवी भी ले आया।
2: और पुराना, मैं क्या जानती थी कि नए के चक्कर में मेरी दुनिया ही तबाह हो जाएगी। देखो जी, इसे फौरन घर के बाहर करो, वरना मैं,
1: वरना क्या,
2: मैं जान दे दूंगी, खुदकुशी कर लूंगी।
1: ओके, लेकिन खुदकुशी भी नए फैशन की होनी चाहिए।
2: ठीक है, तो तुम राज प्रकृति के साथ, मैं जा रही हूँ।
1: हाँ हाँ जाओ, शौक से जाओ।
2: क्या मतलब?
0: मतलब मैं समझाती हूँ, ये रही मेरी नकली बालों की विग और ये मैंने उतारा चश्मा।
2: लता तुम शैतान कहेंगी।
0: हाँ भाभी मैं।
2: कम्बख्त ने ऐसा रूप धरा कि मैं पहचान भी ना पाई। खामखा मुझे रुला दिया।
1: खामखा नहीं रहा ना, इस पल भर की रुलाई ने तुम्हें जिंदगी भर के रोने से बचा लिया। अगर हम लोग ये नाटक ना खेलते तो तुम्हारे सिर से नए फैशन का भूत उतरना मुश्किल था।
2: चलो हटो, तुम बड़े बहू।
0: अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ।
2: कहाँ चलती हो? बैठो ना, चाय लेकर आती हूँ।
1: चाय?
2: हाँ चाय, आपको कोई एतराज है?
1: एतराज बिल्कुल है।
2: अच्छा मैं भी तो सुनो, आखिर क्या?
1: वो ये कि हम लोग चाय पुराने फैशन के टी शर्ट में पियेंगे।
2: हाँ बाबा, वही पुराना टी शर्ट लाऊंगी, मुझे नहीं रखनी कोई नए फैशन की चीज घर में। क्यों लगा?
0: यस।

बाज आए ऐसे फैशन से। नाज़रीन का लिखा ये प्रहसन अभी आपने सुना। निर्देशक जयदेव शर्मा कमल। लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: वो लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो हैं विवेक रंजन श्रीवास्तव।
1: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य की स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
0: सुनिए

0: आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं
4: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये झालावाड़ केंद्र है FM 103.2 MHz पर। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं और अब हमारा समय है आपको फिल्म संगीत सुनवाने का। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: आतिफ असलम के गाए इस गीत के साथ ही आज का सबरस का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये झालावाड़ केंद्र है और थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: मुख्य समाचार। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
2: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां की सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण कई दुखद मौतें हुई हैं।
1: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
2: अंक्लॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों जैसे लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंक्लॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
1: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय

0: संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
1: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौतों के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
2: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और ये समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
3: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो, जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
0: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची

0: 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉयमाल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
1: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी। पीठ ने राज्य

0: पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
1: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी।
2: पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
3: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
4: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline and public responsibility. The title The Voice of Justice is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint and institutional trust.
3: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 561 अंक लुढ़क कर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसल कर 24,052 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96.20 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
3: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर आउट हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही ऐसी स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: FM 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी का झालावाड़ केंद्र है।
7: रात्रि के 9 बज रहे हैं और अब आप सुनेंगे गैर

अभी आप सुन रहे थे पंकज उदास की गाई ये गजल। कार्यक्रम के अंतिम गीत आइए सुनते हैं फाल्गुनी फाटक की आवाज में।

फाल्गुनी पाठक के गाए इस गीत के साथ ही आज का सबरस का एक कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र

बोल रहे हैं एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:30 हो रहे हैं। हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।